0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुण थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
5: Bale bale bale.
4: Bale bale bale.

0: रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urdatir.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Ye border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urdatir chal raha hai from October 9th at cinemas near you.

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने इक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
2: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
1: Overseas released by Z Studios.
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Haji 1674 AM.

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Ye border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Chal dosto, main hoon thoda apna Pritharpal, te tusi sun rahe ho Radio Hanji 1674 AM.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
2: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग Very Be Toyota, the smart choice.

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
6: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
7: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
5: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
8: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
5: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinemas 2nd October.
8: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा
5: Overseas released by Z Studios.
9: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो। दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: और जो हुकम मेरी सरकार।
5: वो आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
8: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
9: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
7: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
10: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
7: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
10: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा।
7: Overseas release by Z Studios.
11: हाँ जी हाँ जी,

0: जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। और पर ये जुर्म नहीं है, ये एक इत्तफाक है कि भीम सिंह चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सिडनी में शोमैन के नाम से जाने जाते जितने भी इवेंट होते हैं, और वो बात बाद में करेंगे। पर भीम जी, सबसे पहले वेलकम सर, क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सो मच गौतम जी, इज अमेजिंग यू नो वी टॉकिंग टुगेदर टुडे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बात करने के लिए रेडियो। हाँ जी, आए धंधा ठीक चल रहा है?
1: सब बढ़िया है। देखो धंधा, अगर आदमी की नीयत अच्छी हो ना, तो धंधा हमेशा अच्छा चलता है।
0: अरे सही बात है, क्या बात है। तो भीम जी, जैसे वैसे तो सिडनी में बहुत से लोग जानते होंगे, हर एक जितने बड़े इवेंट होते हैं पीछे, राहत फतेह अली खान, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, और फिर अभी खान साहब का जो इवेंट होने जा रहा है, पहले भी जितने भी हुए उनमें भीम सिंह चौहान एक नाम मशहूर होता है। भीम जी, मैं बाकी लोग तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर या एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते होंगे, मुझे भीम सिंह चौहान की एक और साइड पता है, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बातें करने के लिए आज उस साइड को आज
1: ओके
0: निकाल कर लाया जाए। डांस वगैरह नहीं हो सकेगा, एटलीस्ट बाकी फन तो हो सकता है, गाने वगैरह। आई थॉट के भीम सिंह चौहान कोई फिल्मों में, बॉलीवुड में वेटरन एक्टर का पहले किरदार निभा कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिर हैं। Could it be a truth?
1: ये सच होता तो अच्छी बात होती, unfortunately नहीं है, सच ही है।
0: नहीं, ये सच नहीं है। पर खान साहब का इवेंट करवाने जा रहे हो, सो कैसे, मतलब बड़े इवेंट, काफी बड़े इवेंट, राहत फतेह अली खान, अभिजीत, शान, और ये अभी ये बिग इवेंट्स होते हैं, ये बिग इवेंट्स, बिग लायबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी,
1: यस,
0: बिग रिस्क
1: 100%
0: एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की ये मार्केट नहीं है ना, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर नेटिव्स ऐसे कलाकारों को नहीं जाते।
1: हाँ।
0: एक कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: कम्युनिटी बिजनेस आपके साथ आएगा।
1: इट इज कम्युनिटी बिजनेस।
0: कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे ए से लेकर जी तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना?
1: देखो इट्स वेरी हार्ड, यू नो, कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। अगर हम नेशनल प्रमोटर बनते हैं तो वी हैव टू हैव अ रिसर्च अबाउट आर्टिस्ट, अनलेस इज आर्टिस्ट ओनली वेन नॉन, लाइक इफ द सोनू जी हैं, राहत साहब हैं, मान साहब हैं, शान हैं, इनका कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि प्लीज कॉल अस, यू नो, गिव अस अ स्टेज, यू नो, देन थोड़ा उसका रिसर्च करते हैं, देन वी टॉक टू देम एज वेल, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है, कम्युनिटी इवेंट्स आल्सो देयर एज वेल, लाइक सम पंजाबी सिंगर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, यू नो, एंड वी हैव नॉर्थ इंडियन एज वेल, व्हिच इज मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, आई वुड से एज वेल, तो दैट्स डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। देन वी डोंट टारगेट द साउथ इंडियन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर देयर एज वेल, सो बट दे आल्सो डू देयर ओन इवेंट्स, यू नो,
0: तेलुगु इवेंट,
1: तेलुगु इवेंट्स,
0: मलयालम,
1: सो दे डू वेरी वेल, दे डू वेरी वेल, सो सारे रिसर्च करने के बाद देन जस्ट वी वर्क आउट वेदर इट इज फिजिबल फॉर अस फाइनेंशियली और नॉट, एंड देन वी नेगोशिएट विद द आर्टिस्ट एज वेल, लुक दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो, पीएनएल बोलते हैं, एंड दिस आप यहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं देख लीजिए आप, एंड वी ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव यू, बट दिस वुड बी आवर प्राइस, अफोर्डेबल, एंड मोस्ट ऑफ देम दे से यस,
0: आ जाते
1: हैं।
0: Talk about your history, background के बारे में। इंडिया में आप राजस्थान से?
1: हाँ जी, मैं इंडिया से, मैं राजस्थान से हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शहर है
0: उदयपुर।
1: उदयपुर
0: झीलों का शहर,
1: उसे बोलते झीलों की नगर, सिटी ऑफ लेक्स।
0: कितनी झीलें हैं वहां पर?
1: अनगिनत अनगिनत, हर एक 25 30 40 किलोमीटर एक लेक मिलेगी।
0: अरे वाह, खूबसूरत लोग है, बड़े रॉयल सिटी,
1: रॉयल सिटी, वेरी ग्रीन।
0: सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर?
1: यस यस।
0: अरे वाह,
1: सो मेरा सौभाग्य कि मैं इतनी खूबसूरत सिटी से आया हूँ।
0: क्या बात है,
1: और यू नो तो इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। ऑफ कोर्स लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों में मेमोरीज है जिनके साथ वो लोग काफी अच्छे थे। थिएटर से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा,
0: अच्छा,
1: टेलीविजन से जुड़ा, सो सारी ये मेमोरीज, यू नो, इन द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी है, वहां से भी मैं काफी।
0: हाँ, राइट, तो वहीं से इस इंडस्ट्री में फिर आना हुआ ऐसे थोड़ा इवेंट इंडस्ट्री?
1: नो नो नो, आई थिंक इट्स बोर्न, मैं पैदा ऐसे ही हुआ, बचपन से ही कुछ करती था, घर पे हो या कहीं भी हो, यू नो, कुछ मस्ती करता।
0: पारिवारिक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इवेंट इंडस्ट्री?
1: नहीं कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं एक ही बंदा हूँ। बोलता है यही मस्तियाँ करता रहता है, यू नो, उसी को स्टेज पसंद है, ये पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पसंद है, यू नो, वो मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कोई भी नहीं आज भी घर में।
0: What was your age when you started organizing events? First event?
1: I attend children theater in Udaipur when I was 9 years old.
0: Kya baat hai?
1: And did children theater with a few, you know, people from Udaipur and a few pass out from National School of Drama.
0: Acting ka keela kaat ke?
1: Acting hi karta tha main. Itna mature nahi tha ki main kuch direction karun ya kuch other... सेक्शन ऑफ द थिएटर में जाऊं। तो जैसे बड़ा होता रहा, थिएटर बराबर करता, पढ़ता भी अच्छा, पढ़ने भी अच्छा था।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए कोई बोलता नहीं था कि ये नाटकबाजी क्या करता है।
0: हाउ डिड यू चूज इट? मतलब अपने आप स्कूल में कि
1: अपने आप
0: करना
1: है? नहीं, अपने आप को, स्कूल के फंक्शन होते थे वो करते थे, फिर वो चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया जो कि वहाँ चलता था, तो वो ज्वाइन किया, फिर बड़े हुए। जब तक 16 साल का पहुंचा था, मैंने कहा आई वांट टू डू माय सेल्फ,
0: आई
1: वांट टू डू इट डायरेक्ट प्ले।
0: अच्छा,
1: तो जिस चिल्ड्रन थिएटर में मैं
0: चाइल्ड आर्टिस्ट
1: काम करता था, काम तो क्या करता है, जिसका जुड़ा हुआ था, उनको मैंने बोला आई वांट टू डू, बोले तो छोटा सा है क्या करेगा।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ सर, जो मैंने जिनसे सीखा था, मैंने कहा आपसे सीखा है और मेरे दिमाग में कोई दो तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आई वांट टू डू इट। बोले नहीं, छोटा सा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वी वोंट लेट यू नो, वी हैव आवर रेपुटेशन एंड दिस, ऑफ कोर्स सही बात है, मैं छोटा था, उनकी भी रेपुटेशन थी, उनकी संस्था का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम उसके साथ,
0: क्योंकि जो प्ले होते हैं वो वन गो होते हैं,
1: रीटेक
0: का कोई चांस नहीं है।
1: देन आई स्टार्टेड, ओके, नो, आई स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूशन।
0: अच्छा,
1: चिल्ड्रन थिएटर ऑफ उदयपुर।
0: अरे वाह।
1: एंड आई गेट सो मेनी पीपल, आई वाज यंगेस्ट पर्सन वाज होल्डिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन।
0: क्या बात है।
1: एंड आई स्टार्टेड and I did back to back 3-4 play.
0: Achha.
1: And that was wonderful. Achha, successful. It wasn't professional, it was amateur theater.
0: But done well. Aapko ek play ka experience
1: ho gaya. Then I start having all these grants from government of Rajasthan,
0: right.
1: You know,
0: kyunki wahan par promote karte hain.
1: Yeah, promote karte hain. Then my journey started and then I never looked back. And padhai bhi kar rahe the, theater bhi kar rahe the. And then yeah, just carry on since then. I never stop until today.
0: फिर वहां से नाटक वगैरह जो आप बोल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री, वो कैसे लिंक हुआ फिर? थोड़ा और
1: लिंक बनते गए।
0: अच्छा, उदयपुर में रहते
1: हुए सबसे बड़ी बात है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: मैं वही पूछने लगा, मैं कहा वो कई बार होता है ना, टीनेज लड़का घर से भाग कर
1: नहीं
0: बागी होकर मुंबई चला गया, पहली ट्रेन पकड़ के,
1: वो घर से नहीं भागा, तो सारा लिंक उदयपुर में ही बने। उदयपुर में अपना ऑल इंडिया रेडियो भी था, वहां से जुड़ा, युवाणी के उनके कार्यक्रम हुआ थे, तो उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा, मुझे सब्जेक्ट देते थे तो सब्जेक्ट में मैं बोलता था, इट वॉज वंडरफुल, एंड थिएटर भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो वॉज अ फुल ऑफ।
0: And you have done ये जो stage hosting है, more than 300
1: yes shows. Yes, yeah, उसका वो अच्छी बात है। आवाज़ ओनली का 18 साल का था मैं उस वक्त, तो वहाँ एक वेस्ट जोन कल्चर सेंटर खुला था,
0: राइट,
1: जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो दे वर लुकिंग फॉर यू नो सो लॉट ऑफ पीपल एंड आई वाज वन ऑफ देम, आई वाज यंगेस्ट पर्सन देयर, सो दे हैड ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, देन दे गिव मी ए 40 आर्टिस्ट।
0: अच्छा,
1: अराउंड
0: किस लिए?
1: वेस्ट जोन टू परफॉर्म अराउंड राजस्थान, इट्स तहसील, इट्स ढाणी, इट्स सिटी में हमें परफॉर्म करना।
0: सब्जेक्ट क्या होते थे?
1: सब्जेक्ट अपने अपने
0: सोशल इश्यूज,
1: जो ना सोशल इश्यू नहीं, अपना जो लोक संस्कृति है, जो लोक स्वरूप है,
0: राइट,
1: उसका बीड़ा, उस क्या बोलूंगा, उसको प्रिजर्व करना था हमें, क्योंकि वो लुप्त हो रहा है ना आजकल, हमारी लोक संस्कृति लुप्त हो रही है,
0: right.
1: हम क्या थे क्या नहीं थे, इस लंगा बंधु से आप देखो नाम सुना हो कि कैसे बालम पधारो हमारा देश, जो गाते हैं लोग उनको लंगा से बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वो भी बेचारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, क्योंकि
0: थोड़ा सा बताइए राजस्थानी कल्चर के बारे में।
1: तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर क्या करता था कि उसके जोन है,
0: आई नो, तो नॉर्थ जोन हमारे पटियाला में है,
1: आप कटारा, तो हमारे जोन में आया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव।
0: अरे वाह।
1: सो मेरे पास ये चारों स्टेट के आर्टिस्ट थे, and was hosting the show. And we have one more person we call program officer above me, who can taking care of all of them. You know, तो उनको ले जाते हर राजस्थान के हर तहसील में, हर ढाणी में, हर शहर में, उन सबको ले जाके बताते दिस इज आवर कल्चर एंड वेस्ट जोन कल्चर. एंड उनको हर एक शहर में जाते हैं.
0: अच्छा.
1: And it was amazing, amazing. Achha. You know, baki Rajasthani culture to aap jante hain, is a very colorful. Jaise Punjab mein apne kitne singers hote hain,
0: of course,
1: jo you know, usse Rajasthan ke andar bhi langas bandhu hain,
0: langas hain.
1: And they are more classical, natural. I think they learn themselves, or maybe unka jo apna gharana hota hai usse apne aap seekhte hain wo log. And jyada log padhe likhe nahi hote wo log.
0: Acha.
1: To isliye wo bechare tourism pe hi निर्भर करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो या तो घर के बाहर बजा रहे हैं या किसी महल के बाहर बजा रहे हैं. आई वोंट से दिस इज अ बेगिंग, विद दिस अपनी कला को सेल,
0: इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं,
1: एक तो सारंगी है.
0: सारंगी.
1: हाँ, सारंगी से यानी होती है वो टटर करते खड़ताल.
0: खड़ताल.
1: हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. प्लस
0: आपने म्यूजिक में जाने की कोशिश की थी?
1: नहीं, मैम, आई कांट सिंग.
0: मैं गाने गवाना चाहता था आपसे.
1: नहीं नहीं, ऐसे तो कैजुअल गाने गाते हैं, ऐसी बात नहीं. लेकिन नहीं नहीं, मैं ये क्या एक भगवान की देन होती है.
0: हर कोई गॉड गिफ्ट होते हैं.
1: गॉड गिफ्ट होती है, उसी के साथ बोन होता है वो. हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास वो चीज होती है, उसको तराश हम सकते हैं. ठीक है.
0: वर्क करना पड़ता है
1: तराश हम सकते हैं. लेकिन अगर मुझे अगर संगीत सीखना, अगर मुझे गिटार सीखना, फॉर एग्जांपल, आई कांट, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेन नहीं है. यू नो, वो जो एक आई थिंक भगवान देता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान देता है, वो ब्रेन नहीं है. और ब्रेन होती है
0: आपका, ब्रेन चलता उधर ही है, एक्टिंग में चलता है आपका, इवेंट में चलता है.
1: इवेंट भी चलता है मेरा, ये यू नो.
0: मैं आपको थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में लेकर जाना चाहता हूँ. आपने सुना है ये गाना? आपने क्या सुना है? आप ही का गाना है. साथ साथ गुनगुना सकते हो.

0: बॉलीवुड में इस थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, डू यू थिंक, के राजस्थानी कल्चर को, जो राजस्थानी कल्चर की आती है बात, यू नो इट इन एंड आउट, राजस्थान में तो खूब ट्रैवल किया आपने.
1: हाँ देखिए, फिल्मी में तो क्या थोड़ा कॉस्मेटिक देना पड़ता है उनको, थोड़ा सा यू नो जो 100% जो होता है राजस्थान में वो तो बताते नहीं फिल्म में, थोड़ा सा
0: पंजाब की बात है, वही बल्ले बल्ले पाजी, वही साग, वही मक्की दी, बस वही बातें होती रहती हैं
1: बस.
0: और राजस्थान के बारे में भी वही सारंगी बजा रहे हैं, बाहर राजस्थान में एंट्री हो रही है और वो रेतीला इलाका है और बस यही राजस्थान,
1: बस यही राजस्थान बताते हैं. बाकी तो राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान इस वजह बहुत रंगीला है, इसलिए बोलते रंगीलो राजस्थान, मारो पधारो मारे देश.
0: और बड़ा क्योंकि बड़ी स्टेट है, अगर नॉर्थ वाली साइड देखेंगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ वो साथ थोड़ा पंजाबी टच है, मिड में आएंगे एक थोड़ा वो मेवाड़ी टच है, और साउथ में थोड़ा सा जाएंगे गुजराती टच है, तो राजस्थान में भी एक वेरिएशन देखने को मिलता है.
1: अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर इज नॉट पंजाबी टच.
0: हाँ नहीं, ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह हो सकता है,
1: गंगानगर इज लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी, दे है राजस्थान लेकिन पंजाब से बॉर्डर से है तो पंजाबी कल्चर वहाँ ज्यादा आपको मिलेगा, यानी हनुमानगढ़ इस बार तो वो है. बाकी सब तरफ जो आप बोल रहे हो वो मारवाड़ी आता है, या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
0: सेंट्रल राजस्थान जो है.
1: हाँ ये मारवाड़ी का इलाका है.
0: डू यू गो ऑफन राजस्थान?
1: मैं हाँ एवरी ईयर और एवरी टू ईयर्स में निकल.
0: फैमिली वहीं पर? अभी
1: मेरे दो ब्रदर वहीं हैं, बाकी सारे बच्चे यहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं वो ना. तो या
0: दैट्स सर. तो ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ फिर?
1: देखिए मैं न्यूजीलैंड से अराउंड 14 इयर्स एगो.
0: आप पहले न्यूजीलैंड गए?
1: हाँ न्यूजीलैंड था, आई देयर फॉर 17 इयर्स.
0: अच्छा, और न्यूजीलैंड में किस सिलसिले में? स्टूडेंट?
1: नो स्टूडेंट वही, अगर वही बात है इवेंट्स की वजह से.
0: हाँ.
1: तो आई वॉज डूइंग द इवेंट्स इन उदयपुर एंड मुझे अपॉर्चुनिटी आई न्यूजीलैंड की.
0: अच्छा.
1: कि वुड यू लाइक टू डू सम थिएटर वर्कशॉप, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप देयर. अरे
0: वाह.
1: यार
0: एंड यू वर अबाउट व्हाट एज?
1: 19 साल का था. 19 ईयर्स.
0: ठीक है.
1: यार ये कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, जानता भी नहीं हूँ कुछ नहीं. और अच्छा अंग्रेजी आती है सबको, आती थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूरा अंग्रेजी, पूरा इंग्लिश देश है ना. मैंने कहा यार वहाँ पता नहीं कैसे लोग बोलते होंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उनको वो समझ में आएगा नहीं आएगा मेरा इंडियन एक्सेंट, यू नो. तो हम तो हॉल को भी हॉल बोलते हैं, भले कौन सा भी हॉल हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन से एक ही निकलता है. ये गड़बड़ हो जाएगा. अभी भी हम तक अभी भी अपने वी हैव इंडियन एक्सेंट, यू नो, वी डोंट डिनाइट एंड दिस
0: इंडियनिज्म तो नहीं निकल सकता.
1: तो इज रियलिटी एंड यू नो. सो तो हिम्मत करके चला गया.
0: अच्छा.
1: एंड फिर वहाँ वर्कशॉप वगैरह की मैंने वहाँ के, और
0: न्यूजीलैंड में.
1: हाँ, ये
0: कौन सी कंट्री में रुक, सॉरी कौन सी सिटी में रुक?
1: वेलिंगटन
0: में.
1: तो मैंने वहाँ वर्कशॉप की दो तीन, और दो प्ले मैंने डायरेक्ट किए वहाँ.
0: एंड यू वर देयर फॉर अबाउट
1: थ्री मंथ्स देयर, एंड मैंने वो दो प्ले डायरेक्ट किए एंड दे वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, मुझे निकलना था, तो मैं वापस आ गया. अच्छा. लेकिन मेरे शो चलते रहे वहाँ
0: न्यूजीलैंड.
1: और हाँ, परफॉर्म बाय बच्चों, कुछ चिल्ड्रन थिएटर था तो चिल्ड्रन थिएटर ही किया मैं, तो आई वाज स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन थिएटर. तो वो शो चलते रहे, प्रोफेशनल चलते रहे, लोग टिकट लेके आते.
0: अरे वाह.
1: हाँ, तो बड़ा सक्सेस चला गया. तो देखो व्हाई नॉट बीम, यू कैन कम बैक. तो बाय द टाइम मैं 20 साल का हो गया था तब तक.
0: अच्छा.
1: यू नो, तो एक डेढ़ साल पहले की बात की, 20 साल का हो गया तब तक मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मैं कर रहा था.
0: अच्छा.
1: डिप्लोमा तो कर रहा था. मैंने कहा ये फिनिश हो जाए, उसके बाद आऊंगा. ये मई जून में मेरे एग्जाम्स हैं. नहीं, वी नीड यू बिफोर.
0: अच्छा.
1: और वहाँ डिले हो गया यार, ये दो साल से मैं कर रहा हूँ, यू नो, ये करूँ वो करूँ. तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाई तो वापस अगर ये मौका नहीं मिलेगा.
0: राइट.
1: तो आई वेंट बैक, तो डिप्लोमा छोड़ दिया एग्जाम के 3-4 वीक पहले.
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था.
1: हाँ, ये न्यूजीलैंड फंडेड,
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
1: फंडेड थी. और जो वहाँ एक सिरका थिएटर है, जो कि नथिंग टू डू विद इंडियंस, सिरका थिएटर इज गोरों का थिएटर है, लोकल न्यूजीलैंडर्स थिएटर.
0: अरे.
1: सो उनकी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में मेरा प्ले उन्होंने
0: इंग्लिश प्ले था वो.
1: हाँ, इंग्लिश में सारा.
0: वहीं के बच्चों को आपने ट्रेन किया?
1: हाँ, और लेकिन मैंने क्या डिजाइन किया, मैंने उसको इंडियन स्वरूप दिया.
0: अच्छा.
1: पूरे को.
0: ओके
1: जो डिजाइन किया या कोरियोग्राफ किया था मैंने उसको
0: इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल
1: सब इंडियन थे कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब इंडियन ओनली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हमने
0: क्या बात है
1: तो आई वाज इंडियन प्ले इन इंग्लिश
0: क्या बात है
1: बट
0: बाय इंग्लिश किड्स
1: बाय इंग्लिश किड्स एंड सम इंडियन मिक्स
0: अच्छा
1: ऐसा करके किया था तो बड़ा अच्छा लगा उनको फिर वो करते रहे वो सारा काम मेरा 9 months में खत्म हो गया मेरे पास 11 महीने और थे मैं क्या करूंगा यार यहाँ यू नो मुझे खर्चा पानी देना पड़ेगा जेब से मतलब नहीं ना एक्सपेंसिव कंट्री है यू नो आई वांट टू गो बैक
0: अच्छा
1: तो बोला कि यार भाई जस्ट स्टे हियर मैं क्या कैसे स्टे हो सकता हूँ क्योंकि ना घर के अंदर कोई पीआर किसने अप्लाई किया कोई जानते नहीं कैसे रहते हैं ना घर में कोई था नहीं जो एब्रॉड गया हो
0: ऑफ कोर्स
1: तो उसको सारी ये ना जो पीआर होता
0: है
1: पता हो पता इनको नॉलेज ही था
0: और ये क्या कौन से साल की बात होगी
1: 1995
0: मिड 90s अरे वाह
1: तो मुझे पता
0: तो वैसे ही बड़े मुश्किल कुछ लोगों को ही पता होगा न्यूजीलैंड भी कोई कंट्री है
1: तो ये जो पीआर शिप वगैरह होती है इसके सॉरी पीआर वगैरह होती है तो मुझे पता नहीं था और
0: अच्छा।
1: नहीं कि मैं स्टूपिड था हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं उसकी जानकारी नहीं
0: क्योंकि आप तो काम करने आ रहे
1: काम करने आ रहे थे कभी जानकारी लिए और ना कभी ये था कभी सोचा था कि कहीं हम कभी जाके रहे तो आई थिंक मेरी जो मंजिल थी ना मुझे यहाँ बुला रही थी शायद कहते हैं कि वो
0: बार बार नॉक हो रहा था
1: फिर आई वॉज क्वालिफाइड उन्होंने बोला कि हाँ उन सब क्वालिफिकेशन तो पता ही नहीं थी वाई नो कि अप्लाई फॉर पीआर ऐसे हाउ आई कैन अप्लाई फॉर पीआर कोई इंडियन किसी इंडियन को नहीं जानता था उस वक्त में
0: अच्छा
1: सारा मेरे ही पल्टन न्यूजीलैंडर थी सारी तो फिर गया अप्लाई फिर एक दो लोगों से मिलाया उन्होंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द पीआर के पीआर के बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉरएवर
0: राइट
1: How I got the PR.
0: और आपने घर पे बताया कि अब मैं permanent resident हो गया
1: और जो plan ही नहीं था wasn't a plan at all
0: वो
1: देखो किस्मत बुलाती ना आपको ठीक है
0: दाना पानी बोलते हैं
1: हाँ दाना पानी लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी
0: of course
1: हाँ तो उसके पीछे काफी बहुत मेहनत की मैंने उसके लिए और of course
0: तो उसके बाद थिएटर चलता रहा न्यूजीलैंड में ही
1: कुछ थिएटर था फिर वही जब हम एब्रॉड हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं होती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो जो थिएटर्स कमाई होती है वाज़न इनफ
0: अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर के लिए तो नहीं होता
1: फिर आई स्टार्टेड फिर मैं कहा क्या करूं सारी क्वालिफिकेशन तो हो गई आई वाज यंग ओनली 21 बाय देन तो चलो ऐसा करता हूं आईटी करता हूं सो आईटी काफी चल रहा था जस्ट स्टार्टेड यू नो तो मैं फिर आईटी में मैंने डिग्री ली
0: ओके
1: तीन साल के होते हैं मुझे मैंने 2 साल में कर ली क्योंकि मुझे अपनी इंडियन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एक क्रेडिट मिल गया था एक साल बच गया था
0: राइट राइट
1: तो बेसिक सब्जेक्ट के मिल गया बस बेसिक टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं मिले थे क्रेडिट मिल गया तो मैंने 2 साल में हो गया देन आई स्टार्ट जॉब इन आईटी
0: ओके
1: फॉर वाइल वहाँ फिर मैं सिडनी भी आया था एक प्रोजेक्ट करने उसके बाद
0: अच्छा
1: फिर लेकिन आई एम आर्टिस्ट
0: कीड़ा तो वही है
1: कोडिंग करने में मजे नहीं आ रहा मेरे को ना लोगों से मिलने का हो रहा है लेकिन मैं बैठा मैं कहा यार मजे नहीं आ रहा है यार कोडिंग करो ये करो बोला ये फिक्स करो वो करो यू नो मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या करें तो मैंने वो सर वो जॉब भी छोड़ दी
0: ओके
1: मेरा बैडमिंटन खेलता था वो भी छूट गया था उस वजह से तो मैंने जॉब भी छोड़ दी लोगों से मिलना नहीं होता था आप एक कमरे में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हो
0: सिडनी किस वजह से आए थे
1: सिडनी एक्चुअली मेरी बेटी थी उसको डॉक्टर बनना था
0: थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी 21 साल के बाद
1: ओके
0: न्यूजीलैंड में
1: नहीं मैं वाइफ इंडिया से थी उदयपुर
0: अच्छा
1: तो मेरी शादी बहुत
0: जल्दी अच्छा
1: व्हेन आई वाज 21
0: मुझे लगा था कि राजस्थान से बाल विवाह किया होगा
1: समझ लो बाल विवाह समझ लो
0: बालिका वधू
1: अच्छा फिर वहां से

0: बिजनेस में चल रहे हैं, साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर के द जर्नी वाज इजी? न्यूजीलैंड में थे तो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर कंट्री, या इट वाज अ डिफरेंट और ऑल टुगेदर?
1: नहीं नहीं, आई वुड से इजी शुरू शुरू में तो नहीं बोलूंगा, मतलब आए थे एक बार, वी वर वेल एस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड, 17 इयर्स वी वर लिविंग, वी हैव बिल्ट आवर ओन होम, यू नो, बच्चे सब वहीं पढ़ रहे थे, सब कुछ था, बिजनेस वाज रनिंग वेल, एंड वी प्रोड्यूस, एज आई सेड, आई प्रोड्यूस 3 मूवीज देयर एज वेल.
0: अच्छा, व्हाइल देयर. वो इंग्लिश मूवीज थी?
1: हां, इंग्लिश मूवीज थी, नथिंग टू डू इंडियंस एट ऑल.
0: एंड दे वर शॉर्ट मूवीज?
1: नो नो, देयर वाज टू डॉक्यूमेंट्रीज, 90 मिनट्स ईच.
0: अभी YouTube पर है किसी प्लेटफॉर्म?
1: नहीं नहीं, वो हमने राइट्स किसी और को दे रखे हैं.
0: अच्छा, आप दिखा भी नहीं सकते किसी को?
1: दिखा नहीं सकते, हम राइट्स किसी दे, बेच देते हैं, तो अभी वो एक्सपायर होने वाले राइट्स, देन वी विल गेट बैक. तो वो है, तो एक और एक फीचर मूवी थी एज वेल.
0: अच्छा,
1: उसको ए स्मॉल लाइफ.
0: इट वाज अबाउट
1: अबाउट ए चाइल्ड वेटिंग फॉर हर, सॉरी, हिज फादर.
0: अरे वाह.
1: एंड ही नेवर कम बैक.
0: ओह,
1: सो इट्स वेटिंग फॉर यू.
0: क्या बात है, बड़े ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है. कहीं आपने फिल्म बता दी, कहीं बॉलीवुड वाले सुन ले तो उन्होंने बना दी है इसके ऊपर.
1: तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है जिंदगी में.
0: तो ऑस्ट्रेलिया आकर के कभी फिर इधर डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर फिल्म मेकिंग, देखिए
1: दे ऑल अबाउट पैशन, यू नो, अब जब पैशन के साथ अगर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, देन यू हैव टू
0: एक चीज छोड़नी पड़ती.
1: तो फिर मैंने चला कि छोड़ दिया फिल्म का, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ मनी देयर, यू नो, नाउ डेज यू से ओटीटी देयर, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स देयर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल स्ट्रगल अगेन. अनलेस आप पूछे भीम जी, रेडियो हाजी को फिल्म बनानी है, आई एम हैप्पी टू मेक इट, बिकॉज रेडियो हाजी है ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है, रेडियो हाजी कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज ओन मूवी. फॉर मी, producing and directing myself and putting in the market, no will come.
0: Right. वो थोड़ी एक limitation है.
1: तो limitation है.
0: तो बात कर रहे थे सिडनी में, फिर आए तो आप?
1: बस सिडनी में आए हम लोग, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, कुछ हिकअप्स आए बिजनेस में, वी लर्न लॉट्स, एंड हमने ऐसा बिजनेस किया जो कभी हमने किया ही नहीं.
0: अच्छा,
1: कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आई वॉज वेरी गुड इन पी आर शिप, तो मैं कहा कर लेंगे. लेकिन बहुत सारी चीजें जो पीछे होती ना, पर्दे के पीछे, उसको नजरअंदाज कर दिया. ये मेरी गलती हुई, मानता हूँ मैं.
0: तो इनिशियली आपको घाटे वाले?
1: इनिशियली मैं घाटा हुआ कि वो बिजनेस जो हम नहीं करते थे ना, वो किया. तो अगर करना था, तो अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिसनर्स हैं, उनको प्लीज, वॉट एवर यू डू, प्लीज डू ए फुल रिसर्च, लर्न अबाउट दैट बिजनेस फर्स्ट, एंड देन यू जंप इन.
0: ठीक है,
1: हमने सोचा कि हमने बिजनेस किया हुआ, हम ये भी कर लेंगे.
0: हाँ.
1: लेकिन नहीं,
0: सारे बिजनेस एक जैसे,
1: सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते. तो इसमें लॉस वॉस करके हम घर बैठ गए, फिर क्या करें. मैंने कहा वही करो जो आता, उसको हम बोलते हैं हिंदी में, जिसका काम उसी को साजे. तो फिर हमने, I went back to my supermarket and liquor store back.
0: अच्छा.
1: And since then I never looked back.
0: Okay. तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इवेंट सबसे पहले आपका था?
1: सबसे पहले मैंने किया था सुखिंदर सिंह.
0: ओके.
1: हाँ.
0: अच्छा.
1: तो उसके अंदर मेरे पार्टनर, उसमें मेरे पार्टनर्स भी थे, I won't say I did myself only, but I was one.
0: पर आपने वो स्टार्ट पहले इवेंट.
1: I was one of the partner as well.
0: Okay.
1: And but सारी मार्केटिंग वगैरह है इसमें, काफी मैंने एफर्ट्स डाले थे स्पॉन्सरशिप में, मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे, एंड आई पुट सम माय फंड एज वेल इन देयर.
0: तो अच्छा गया इवेंट सिडनी?
1: हां, दैट वाज गुड, इवेंट वाज गुड, फैंटास्टिक,
0: यू नो. और ये कब की बात है?
1: ये 2023.
0: राइट.
1: माय फर्स्ट इवेंट आई डिड इन एसोसिएशन विद अदर पार्टनर्स
0: के साथ. उसके बाद फिर
1: आरिफ लोहर किया, एंड उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य किया, एंड देन फिर खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, 2024 इन जून, आई थिंक 29th ऑफ जून 2024.
0: अच्छा,
1: वी डिड एज वेल, इट वाज अ फैंटास्टिक हाउसफुल शो.
0: क्या बात है.
1: एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड this time, 2 months ago, myself, national promoter of Rahat Fateh Ali Khan.
0: Kya baat hai, are wah.
1: And I have my friend Arun Sharma, you know, joined me as well, and he is a fantastic man. And we execute very well.
0: Abhi business, event, family life, how do you manage? Kaise, kisko kitna time, prefer kisko karte ho ke zyada time idhar?
1: Main sabko deta hu barabar time. Business ko bhi deta hu ki bread and butter hai. इवेंट्स भी है, उसमें भी बढ़ रहा था, ऐसी बात
0: ज्यादा टाइम,

0: ले जाता है,
1: लेकिन ज्यादा टाइम लेता है। तो यू कैन एक्चुअली इवेंट में एक चीज बताऊंगा कि या तो आप फुल टाइम कर रहे हो, यू बिकम ब्रेड बेटर। अगर आप में अगर आपके पास दूसरे बिजनेस है, इफ यू डूइंग दिस वन, बहुत टाइम देना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप इफ यू डूइंग ओनली फॉर द मनी, देन फॉर
0: मत करो,
1: मत करो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जितना टाइम देते हो उतना पैसा नहीं मिलता है, बट जैसे आप ये आपका सेटिस्फेक्शन है कि यू फील बेटर, यू फील गुड, यू फील आपको खुशी होती है इस चीज को करने में, देन यू डू इट।
0: विजन क्या है भीम जी, अभी नेक्स्ट क्या करना, कुछ ऐसा कोई ड्रीम, कोई इवेंट या कुछ ऐसा, और यू हैव डन इट ऑल?
1: टू बी ऑनेस्ट, इंसान को होप छोड़नी चाहिए। अगर मैं सोचूंगा यहाँ सब कुछ हो गया है, यू नो, तो फिर मेरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। आपको सीखना हमेशा है, यू नो, हर चीज हर वक्त कुछ न कुछ आपको सीखना है।
0: right.
1: तो सीखना छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को, किसी भी उम्र हो, कि यार मैंने इतने सारे इवेंट कर लिए, आई नो एवरीथिंग, नो, यू विल मेक द मिस्टेक, स्टिल यू मेक द मिस्टेक। तो सीखना है, आगे भी सीखते हैं, सीखता रहूंगा। और यू नहीं कहूंगा कि मेरा ये बस ही हो गया, अच्छे को एक आर्टिस्ट आएगा और कैरी ऑन, यू नो, अभी दो चार प्रोजेक्ट आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, वी आर टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग विद आर्टिस्ट एंड ट्राइंग टू डू फ्यू मोर, यू नो, अ टूर अराउंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, एंड वी टारगेटिंग एक्चुअली इन सिंगापुर, जकार्ता एंड बैंकॉक एज वेल।
0: अरे वाह,
1: या सो दैट्स हाउ बात चल रही है, कितनी सक्सेस होती है वो पता नहीं, बट इन जनरल भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, दोस्तों की शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही है, मेरे सारे बॉक्स टिक कर लिए हमने।
0: अरे वाह,
1: यू नो,
0: क्या बात है।
1: देखो पैसा, मैं नहीं कहूंगा बहुत पैसा है कमाया, ऐसा भी नहीं, पैसा तो आप
0: उतना जितनी सेटिस्फेक्शन हो जाए
1: उतना है। शरीफ भाई के सारे बॉक्स से आज जाना है, कपिल भाई से मिलने, चाय पीने, फट से निकल गए, यू नो, छुट्टी लेके बॉस को बोलना नहीं पड़ता है, 5 मिनट में आ रहा हूँ,
0: करेक्ट,
1: यू नो,
0: करेक्ट।
1: सो
0: उस लेवल पर,
1: उस लेवल पे सबके आशीर्वाद से, और भगवान का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
0: मेरा थीम ये चीजें इसलिए मैंने मेंशन की थी कि फैमिली लाइफ, एक सोशल लाइफ भी होती है, इनफैक्ट फोर्थ है, इवेंट्स है, बिजनेस है, तो इनमें से कब टाइम निकलता है व्हेन यू फील के अभी भीम एक अपना जोन में है, एक मी टाइम में है, तो वो कब निकालते हो या नहीं पॉसिबल होता है?
1: नहीं, मैं निकाल देता हूँ फैमिली के साथ, तो ऑफ कोर्स जब भी मौका मिले, जितना समय हो अपनी फैमिली के साथ निकालें आप, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को जाना है एक दिन,
0: करेक्ट।
1: और मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए कि हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, बट इतने बड़े हो गए कि दे कैन लीव देमसेल्फ,
0: करेक्ट,
1: अभी सभी साथ रहते हैं घर पे, सो इट्स फाइन, बट उनके साथ जितना आप समय बिता सकें बिताएं, और स्पेशली जो इनके जो भी लिसनर हैं, जिनके यंग किड्स हैं, डोंट इग्नोर देम,
0: ओके,
1: मैं उनको सजेस्ट करूं,
0: लाइफ लेसन है,
1: जितना टाइम उनसे साथ बिता सकते हो आप बिता लो, जैसे 10-12 साल के हो जाएंगे वो अपने कमरे में चले जाएंगे, आप बस वेट करते जाओगे कब अपने कमरे से बाहर निकले, मैं हेलो करें, हमारे साथ बैठ के खाना।
0: फैमिली बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ऐसा आपको लगता है कि हो जाता है इस कंट्री में?
1: होता है, उनका बच्चों का फॉल्ट नहीं है,
0: कल्चर ही ऐसा,
1: कल्चर ऐसा है, इवन दो बैक इन इंडिया में ऐसे ही होगा, यू नो, तो अपने जितना छोटे हैं तब तक कहना मानेंगे, जैसे 12-13 साल के होंगे फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके फोन आ जाते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं, सो ऐसा नहीं कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपको, वो उनकी जिंदगी अलग हो जाती है,
0: करेक्ट।
1: तो आपको लगता है यार बच्चा हमें टाइम ही दे रहा है, बच्चा टाइम नहीं, बच्चे का कल्चर अलग है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता को आपको समझना होगा कि इज गोइंग डिफरेंट स्टेज नाउ, यू नो, कल्चर डिफरेंस एज वेल, हम उसको बनाएंगे ना, हम तो और पंजाबी लुंडा है तो पंजाबी रहेगा, ये नहीं है, पंजाबी कल्चर सिखाई है उसे, आपने सारे अदब सिखाई है उसको, जिसमें हम सिखाते ना पंजाबी, तो एग्जाम्पल दिया है, तो हमारे जो राजस्थानी अदब है या भारतीय संस्कृति के जो अदब हैं उनको वो सिखाओ, उनको कैरी ऑन करते रहेंगे। जैसे मेरे बच्चे हैं, दे बोर्न इन न्यूजीलैंड, बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं विदाउट एक्सेंट,
0: अरे वाह,
1: रीड राइट नहीं कर सकते हैं,
0: इंडियन जैसे
1: बोलते हो, तो सब बोलते सर आर यू फ्रॉम
0: इवेंट्स में कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है कि पापा आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो या ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट, ऐसे कोई फीडबैक उनकी होती है कि ये बढ़िया रहा पापा?
1: आई थिंक बढ़िया रहा, अच्छा, दे आर हैप्पी बिकॉज़ आई एम हैप्पी,
0: बट डू यू टेक देयर फीडबैक एज सीरियस फीडबैक, और आपको लगता है?
1: कभी-कभी लेते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं कि पापा वहाँ ये हो गया था, ऐसे करना चाहिए थे आपको, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, देखो हम भी जोश में बोल जाते हैं, ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करना आपको, वहाँ वैसा करना चाहिए, तो दे गिव यू लिटिल बिट एडवाइस एज वेल, तो इन या
0: राइट। क्या सुनना क्या पसंद करते हो, फेवरेट पास टाइम?
1: मैं किशोर कुमार के
0: अरे
1: गीत सुनता हूँ,
0: क्या बात,
1: और कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ,
0: वो कभी कभी आज क्यों नहीं?
1: अब वो
0: कोई सा भी किशोर कुमार का जो आपको लगता है बेस्ट सॉन्ग, मतलब मूवीज वगैरह देखे ना आप, टाइम लग जाता है?
1: हाँ, नहीं, मूवी देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ।
0: आई गेस मेरे पास एक सॉन्ग है आपके लिए, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, बट आपको फिर आगे उसको गाना पड़ेगा। आई थिंक आपको वो गाना पता भी है शायद।

0: से सुरूर तो नहीं है लेकिन गाने की आदत है.
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है. अभी जैसे घूमने वगैरह के फेवरेट डेस्टिनेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ घूमने जाना है वहां जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लोगों की डेस्टिनेशन है, वो आप छोड़ करके आ.
0: सबसे अच्छी बात है कि हम न्यूजीलैंड में पूरा न्यूजीलैंड घूम चुके हैं हम लोग.
1: अच्छा,
0: वाइल वी देयर सो ट्रैवल वेरी
1: वेल, जब आ रहे थे
0: ट्रैवल वेरी वेल सो इट इज गुड. अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता है. एंड अभी यूरोप मैं कभी गया नहीं और यूरोप जाना बहुत पहले से जा रहा था, जाना चाहता था, लेकिन जब भी हम यूरोप का सोचते हैं चलो इंडिया चल लेते हैं तो सब हम तो लोग इंडिया निकल जाते हैं बच्चों के साथ. अब यूरोप का हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली यूरोप के अंदर में आई वुड लाइक टू गो जर्मन इटली एंड इटली एंड या इन यूके
1: स्पेशली का. फिर इतना जब घूम लिए सिडनी का व्हाट डू यू थिंक के कैसा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिटी?
0: ओह इट्स अमेजिंग सिटी, मुझे इतना मजा आता है यहाँ रहने में, इतना मजा आता रहने में. ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड मजा नहीं आता लेकिन इसका रीजन है क्योंकि न्यूजीलैंड तक कोल्ड कंट्री है, आइसोलेटेड है, लोग कम थे उस वक्त, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, कम थे लोग, नजर नहीं आते थे. तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग बिकॉज हम भीड़ भाड़ से आए हैं ना इंडिया से, तो वो मिसिंग समथिंग, इसलिए हम लोग इंडिया चले जाते थे वहाँ. न्यूजीलैंड में हर दो साल में इंडिया चले जाते थे, दो दो तीन तीन महीने के लिए चले जाते थे क्योंकि वो मिस करते थे ना.
1: करेक्ट.
0: तो यू बिलीव नॉट, जब से मैं सिडनी में शिफ्ट हुआ था 2013 मैं एक बार गया था शॉर्ट पीरियड के लिए.
1: अच्छा.
0: उसके बाद मैं 6.5 साल तक नहीं गया.
1: अरे
0: इच्छा नहीं होती जाने की, सब सब कुछ यहाँ मिलता है, यहाँ गौतम कपिल जी हैं, यहाँ ये दोस्त हैं, या एनवायरमेंट है, यहाँ हैरिस पार्क है जो लिटिल इंडिया बन गया है, तो वो एनवायरमेंट मिल रहा था,
1: मिल रहा है.
0: तो चाहे हम आस पास को जानते नहीं जाए लेकिन लगता है कि नहीं आ रही है
1: जब फैमिली लाइक एक एनवायरमेंट मिल रहा है.
0: हाँ एनवायरमेंट मिल रहा है, एक छोटा सा स्ट्रीट में जाते हैं लोग चलते हुए नजर आते हैं, अपने देश के भी आते हैं दूसरे देश के भी आते हैं, ऐसा लगता है कि समथिंग समथिंग लाइवनेस थी है. तो इसलिए इंडिया फिर हमने मिस
1: चाइल्ड थिएटर का अभी डू यू हैव एनी प्लान के यहाँ पर कुछ धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा कुछ करना, क्योंकि दैट थिंग आई थिंक के वो आपके एक पैशन में से निकली हुई है.
0: हाँ हाँ लेकिन इट्स वेरी हार्ड,
1: यहाँ पर हार्ड
0: है, वेरी हार्ड है. थिएटर इज वेरी हार्ड, आई मीन इट्स वेरी हार्ड नाउ एंड I'm more focused on events,
1: right. चले ठीक है, थैंक यू भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया, बातें की, और वो जो एक साइड मैंने लोगों को बताई है कि वो एक नॉटी साइड भी है भीम जी की, वो रेडियो पर भी नहीं दिखा सकते, वो जो डांस करते हैं, वो जो मस्ती आप में आती है,
0: वो
1: जब आप अपने आप एक जो वो कहते हैं कि अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए, अंदर का बच्चा रहना चाहिए.
0: बिफोर यू स्विच ऑफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच रेडियो हां जी and Kapil ji, Gautam Kapil ji, thank you so much for
1: thank
0: having
1: you,
0: me here and please do come and join us and aapko listeners ko bhi bata deta hu ki we having a Khan saab is Dhurandhar experience is coming on 31st of October in Sydney at Norwest Hub. Please do come, it's amazing show, it's amazing singer, he's singing Punjabi, Bollywood.
1: Sahi
0: so is it, this is not for money this time, it's more like Diwali yaari na,
1: more like
0: Diwali ke dhoom
1: acha Diwali pe dhoom Diwali ke patake
0: phodenge.
1: Thank you so much Bheem ji,
0: bahut bahut
1: shukriya, thank you you came here aur ye gana sunte hain, filhal mujhe dijiye ijazat, dhanyawad.

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना नांजी नांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी, आईएमई एडवाइजर।

0: पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Udhi ek border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Radio Haji, 1674 AM.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: Television is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतने नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
7: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
9: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
10: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
8: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Overseas release by Z Studios.
12: Australia vich immigration da masla, na jao idhar udhar, sidhe aao IME advisor. Apni maan boli vich samjhan tuhadi lod nu. Naale varyan to skill visa 186, 189, 190, 482 te 491. Skill assessment, partner visa, parent visa, cha student visa to PR tak. Har immigration process layi expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parramatta Sydney अते न्यू दिल्ली विच भी IME advisor।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
12: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला, ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME advisor। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू। नाले वरियां तो स्किल वीजा 186, 189, 190, 482 ते 491। स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा चा स्टूडेंट वीजा तो PR तक। हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME advisor। कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME advisor।
0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
13: Haji Radio.
14: रेडियो हांजी 1674 मास करदे हां, दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा, चढ़दी कला दे विच होगे। समा हो चुका अज दी कहानी दा, अज दे विचार दा। कहिंदे ने एक वारी एक व्यक्ति राजे दे कोल शिकायत लैके गया। शिकायत के इहने मेरे को पैसे ले ही ते हुणे पैसे मेरे वापस नहीं करदा। दोवां धरां ने अपनी अपनी पक्ष सुनाया। जिहड़े शाहूकार ने पैसे दिते ही, उहदा कहना सी कि महाराज हर रात हर रोज़ ब्याज वध रहा ते इह बंदा मैनूं कुछ भी वापस नहीं दे रहा। दूसरे नु पुछया गया ते वो कहन लगा जी महाराज पैसे मैं ले ते जरूर सी पर हालात कुछ इदां दे बन गए ने कि हुण मैं वो पैसे वापस नहीं दे पा रहा। दोवां धिरां दीआं सुण के राजे ने कहा भाई फिर तू पैसे कदों दे सकदा किवें दे सकदा। कहन लगा मैं मुकरदा नहीं पैसे मैं दऊंगा जरूर पर हाले मेरे को नहीं है। हाँ इन्ना जरूर कर दो कि जे तुसीं वधिया इंसाफ करना जे तुसीं मेरी मदद करनी है मेरी हालत नूं जानदे होए तुसीं मैनूं आसान जिहियां को किश्तां करवा दो मैं थोड़े थोड़े करके जिदा जिदा मेरे को आउणगे हाड़ी सोहणी मैं दे जाऊंगा। राजे नूं बंदा इमानदार लगा वधिया लगा शाहूकार नूं कहण लगा हाँ भाई की रायत दे सकदा पर शाहूकार कहिंदे ने कि इस चीज़ दे उत्ते अड़िया रहा कि मैं जिन्ने लैने उन्ने ही लैने महाराज जे भोर भोर के पैसे आए तो फायदा की होया मेरी तो सारी रकम ही खराब हो जानी है। अक्सर ही आपां इदां करदे हां जदों सानूं कितों मिलदे नज़र आ जाण ना पैसे तो उदों फिर आपां इह कहिंदे भी नहीं हुण सारे इकट्ठे होने चाहीदे। एक आम शायद आपां इहो जिहा राजीनामिआं दे विच गल सुणी होवे कि चल बंदा मातड़ है हुण दस फिर छड़दा किन्ने आ। राजे ने भी फैसला करदिआं कहा बंदा वाकई मातड़ लगदा नेक लगदा वह तेरे पैसों तो मुकरिया नहीं पर हुण दस तू उहदे लई छड़दा किन्ने आ ते छड़न तो बाद जो बचदा उहदीआं किन्नीआं किश्तां उहनूं आसान करके दे सकदा। शाहूकार ने पहलां तां आड़ी फड़ी कीती कहण लगा जी नहीं जो मेरा हैगा सो हैगा। गल्लां बातां थोड़ियां होर अगे वधियां दूसरे बंदे नूं भी पुछया गया पता लगा कि हैगा तो 10,000 ही पर उस तो बाद फिर व्याज पैंदा पैंदा वध के ये 1,00,000 हो गया वा जिहड़ा उतला 90,000 आ वह तो व्याज ही है। गलबात विगड़दी वेख के शाहूकार कहन लगा जी जिहड़ा मेरा व्याज है ना वह तो छड्डना बड़ा औखा वो 90,000 तो नहीं जे मैं छड्डना तो जे कहिंदे हो तो मैं मूल छड्ड देना वा यानी कि मैं 10,000 विचों घटा दूंगा 90,000 मैं लैणा ते आउंदे 5 सालां दे विच सारे पैसे मेरे पूरे कर देवे उस हिसाब दे नाल तुसीं हाड़ी सोहणी दीआं फसलां च इहनूं वंड के पैसे आप ही दस दिओ। कहिंदे ने राजा जोर जोर दी हस्सिआ ते कहिण लगा शाहूकार जी हुण तुहानूं पैसा एक भी नहीं मिलना। शाहूकार हैरान हो गया ये क्यों जी। राजा कहिण लगा जिहड़ा तूं मूल छड्ड रिहा ना जदों तूं मूल ही छड्ड दित्ता ते फिर व्याज कदा रह गया 10,000 तेरा मूल सी 90,000 तेरा व्याज सी ते व्याज कदे ते बनिया मूल ते बनिया ते जदों तू मूल ही छड्ड दिता अपना फिर हुण उतला व्याज भी तेनू कदा दीए फिर 90,000 भी तेनू कदा दीए। राजे ने फैसला सुनाउंदा कहा कि उहदा सारा लेखा जोखा क्लीयर हुण शाहूकार नूं कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये कहानी शायद आपां अपने आप दे उत्ते भी ला के वेख सकते हैं किसी ने बड़े सोहणे तरीके दे नाल सानूं समझाउण दी गल कीती जे आपां अपने परिवारिक ताने बाणे दे विच वेखीए ते व्याज की है साडा साडे गां धीआं पुत ते साडा मूल की है जिथों साडी उत्पत्ति होई है साडे मां प्यो। कई वारी साडे घरां दे विच साडे मां प्यो दी बड़ी बेकदरी हुंदी है मूल दी बड़ी बेकदरी हुंदी है ते व्याज नूं आपां चुम चुम के रखदे आं इन्ना क चुमदे चटदे आं कि उहनूं आपां विगाड़ ही लैंदे आं। पर एक गल जरूर याद रहे इस कहानी दे हवाले दे नाल एक गल जरूर याद रहे कि जे मूल चला गया तो फिर व्याज भी किसे कम दा नहीं। जे तुसीं मूल दी इज्जत ना कीती जिथों साडी उत्पत्ति है जिथों व्याज आया वा जिथों साडी ये पीढ़ी अगे चली है जे आप कदर ना जानी वह आप माण सत्कार ना किया इज्जत ना की तो याद रहे वह व्याज भी साढ़े किसी काम का नहीं। फिर वह राजा जड़ा जड़ा सानू चला रहा वा वह परमात्मा वह रब जिन्हें सानू पैदा किया फिर उस राजे का भी कुछ फैसला इदा का ही है साढ़े लिए भी फैसला कुछ इदा का ही होगा भी जे ताडे लिए मूल की कोई वैल्यू नहीं ते फिर कल नूं ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh ye border chal rahi hai?
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरिया तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-90-63-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम ई एडवाइजर।

0: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियो प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: दी एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम दी कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: ओवरसीज रिलीज बाय जी स्टूडियोज।
4: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। यू आर लिसनिंग हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो हांजी स्टे ट्यून्ड। स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
1: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
1: Overseas release by Zee Studios.
5: Australia vich immigration da masla. Na jao idhar udhar. Sidhe aao IME advisor. Apni maan boli vich samjhan tuhadi lod nu. Nale varyan to skill visa 186, 189, 190, 482 te 491. Skill assessment, partner visa, parent visa, cha student visa to PR tak. Har immigration process layi expert guidance. Aaj hi parose naal sampark karo. IME advisor. Call 02-9063-1618. Hun Parramatta Sydney ਅਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ।
6: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
7: जुगाड़ नहीं ए है 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਏਟੀ ਅਪੀਲਸ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪੀਆਰ ਯੂਐਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
6: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
7: ਹਾਂਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी हाँ जी।
1: दिला दे घर बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो। हांजी रेडियो दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनों च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: Star Studio 18 and Panorama Studios Production presents.
7: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Overseas release by Zee Studios.

0: जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। और पर ये जुर्म नहीं है, ये एक इत्तफाक है कि भीम सिंह चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिडनी में शोमैन के नाम से जाने जाते जितने भी इवेंट होते हैं, और वो बात बाद में करेंगे। पर भीम जी, सबसे पहले वेलकम सर, क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सो मच गौतम जी, इज अमेजिंग यू नो वी टॉकिंग टुगेदर टुडे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बात करने के लिए रेडियो। हाँ जी, धंधा ठीक चल रहा है?
1: सब बढ़िया है। देखो, धंधा अगर आदमी की नीयत अच्छी हो ना, तो धंधा हमेशा अच्छा चलता है।
0: अरे सही बात है, क्या बात है। तो भीम जी, जैसे वैसे तो सिडनी में बहुत से लोग जानते होंगे, हर एक जितने बड़े इवेंट होते हैं पीछे, राहत फतेह अली खान, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, और फिर अभी खान साहब का जो इवेंट होने जा रहा है, पहले भी जितने भी हुए हैं उनमें भीम सिंह चौहान एक नाम मशहूर होता है। भीम जी, मैं बाकी लोग तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर या एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते होंगे, मुझे भीम सिंह चौहान की एक और साइड पता है, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बातें करने के लिए आज उस साइड को आज
1: okay.
0: निकाल कर लाया जाए। डांस वगैरह नहीं हो सकेगा, एटलीस्ट बाकी फन तो हो सकता है, गाने वगैरह। आई थॉट के भीम सिंह चौहान कोई फिल्मों में, बॉलीवुड में वेटरन एक्टर का पहले किरदार निभा कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिर है। Could it be a truth?
1: ये सच होता तो अच्छी बात होती, अनफॉर्चुनेटली नहीं है सच ये।
0: नहीं, ये सच नहीं है। पर खान साहब का इवेंट करवाने जा रहे हो, सो कैसे, मतलब बड़े इवेंट, काफी बड़े इवेंट, राहत फतेह अली खान, अभिजीत, शान, और ये अभी ये बिग इवेंट्स होते हैं, ये बिग इवेंट्स, बिग लायबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी,
1: यस,
0: बिग रिस्क
1: 100%
0: एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की ये मार्केट नहीं है ना, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर नेटिव्स ऐसे कलाकारों को नहीं जाते।
1: हाँ,
0: एक कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: कम्युनिटी बिजनेस आपके साथ आएगा।
1: इट इज कम्युनिटी बिजनेस।
0: कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे ए से लेकर जी तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना?
1: देखो, इट्स वेरी हार्ड, यू नो, कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। अगर हम नेशनल प्रमोटर बनते हैं तो वी हैव टू हैव अ रिसर्च अबाउट आर्टिस्ट, अनलेस इज आर्टिस्ट ओनली वेन नॉन, लाइक इफ द सोनू जी हैं, राहत साहब हैं, मान साहब हैं, शान हैं, इनका कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि प्लीज कॉल अस, यू नो, गिव अस अ स्टेज, यू नो, देन थोड़ा उसका रिसर्च करते हैं, देन वी टॉक टू देम एज वेल, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है, बिकॉज कम्युनिटी इवेंट्स आल्सो देयर एज वेल, लाइक सम पंजाबी सिंगर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, यू नो, एंड वी हैव नॉर्थ इंडियन एज वेल, व्हिच इज मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, आई वुड से एज वेल, तो दैट्स डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। देन वी डोंट टारगेट द साउथ इंडियन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर देयर एज वेल, सो बट दे आल्सो डू देयर ओन इवेंट्स, यू नो,
0: तेलुगु इवेंट्स,
1: मलयालम इवेंट्स, सो दे डू वेरी वेल, very well, so sare research karne ke baad then just we work out whether it is feasible for us financially or not, and then we negotiate with the artist as well, look, this is our profit and loss, you know, PNL bolte hain, and that's aap yahan kahan fit ho rahe hain dekh liye aap, then we of course we want to have you, but this would be our price, affordable, and most of them they say yes,
0: Let's talk about your history, background के बारे में। इंडिया में आप राजस्थान से?
1: हाँ जी, मैं इंडिया से, मैं राजस्थान से हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शहर है
0: उदयपुर। झीलों का शहर,
1: उसे बोलते झीलों की नगर।
0: हाँ,
1: सिटी ऑफ लेक्स।
0: कितनी झीलें हैं वहाँ पर?
1: अनगिनत, हर एक 25, 30, 40 किलोमीटर एक लेक मिलेगी।
0: अरे वाह, खूबसूरत लोग है, बड़े रॉयल सिटी,
1: रॉयल सिटी, वेरी ग्रीन।
0: सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर?
1: यस।
0: अरे वाह,
1: सो मेरा सौभाग्य की मैं इतनी खूबसूरत सिटी से आया हूँ।
0: क्या बात है,
1: और यू नो, तो इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। ऑफ कोर्स लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों में मेमोरीज है जिनके साथ, वो लोग काफी अच्छे थे। थिएटर से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा,
0: अच्छा,
1: टेलीविजन से जुड़ा, सो सारी ये मेमोरीज, यू नो, इन द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी है, वहाँ से भी मैं काफी।
0: हाँ, राइट, तो वहीं से इस इंडस्ट्री में फिर आना हुआ ऐसे, थोड़ा इवेंट इंडस्ट्री,
1: नो, आई थिंक इट्स बोर्न, पहले से मैं पैदा ऐसे ही हुआ, बचपन से ही कुछ न कुछ करती था, घर पे हो या कहीं भी हो, यू नो, कुछ मस्ती करता।
0: परिवार जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इवेंट इंडस्ट्री?
1: नहीं नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं एक ही बंदा हूँ। बोलता यही मस्तियाँ करता रहता है, यू नो, उसी को स्टेज पसंद है, ये पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पसंद है, यू नो, वो मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कोई भी नहीं आज भी घर में।
0: What was your age when you started organizing events? First event?
1: I attend children theater in Udaipur when I was 9 years old.
0: Kya baat hai?
1: And did children theater with a few, you know, people from Udaipur and a few pass out from National School of Drama.
0: Acting ka keela kaat ke?
1: Acting hi karta tha main. Itna mature nahi tha ki main kuch direction karun ya kuch other... सेक्शन ऑफ द थिएटर में जाऊं। तो जैसे बड़ा होता रहा, थिएटर बड़ा बड़ा करता, पढ़ता भी अच्छा, पढ़ने भी अच्छा था,
0: अच्छा,
1: तो इसलिए कोई बोलता नहीं था कि ये नाटकबाजी क्या करता है।
0: पर हाउ डिड यू चूज इट, मतलब अपने आप क्या स्कूल में कि
1: अपने आप
0: करना
1: है? अपने आप को, स्कूल के फंक्शन होते थे वो करते थे, फिर वो चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया जो कि वहाँ चलता था, तो वो ज्वाइन किया, फिर बड़े हुए, फिर जब तक 16 साल का पहुंचा था, मैंने कहा आई वांट टू डू माय सेल्फ,
0: अच्छा,
1: आई वांट टू डू इट डायरेक्ट प्ले,
0: अच्छा।
1: तो जिस चिल्ड्रन थिएटर में मैं
0: चाइल्ड आर्टिस्ट
1: काम करता था, काम तो क्या करता है, जिसका जुड़ा हुआ था, उनको मैंने बोला आई वांट टू डू, बोले तो छोटा सा है क्या करेगा,
0: अच्छा।
1: मैंने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ सर, जो मैंने जिनसे सीखा था, मैंने कहा आपसे सीखा है और मेरे दिमाग में कोई दो तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आई वांट टू डू इट। बोले नहीं नहीं, छोटा सा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वी वोंट लेट यू नो, वी हैव आवर रेपुटेशन एंड दिस, ऑफ कोर्स सही बात है, मैं छोटा था, उनकी भी रेपुटेशन थी, उनकी संस्था का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम उसके साथ,
0: क्योंकि जो प्ले होते हैं वो वन गो होते हैं, रीटेक का कोई चांस नहीं,
1: चांस नहीं है। देन आई स्टार्टेड, ओके, नो आई स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूशन,
0: अच्छा,
1: चिल्ड्रन थिएटर ऑफ उदयपुर,
0: अरे वाह,
1: एंड आई गेदर सो मेनी पीपल, आई वाज यंगेस्ट पर्सन वाज होल्डिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन,
0: क्या बात है,
1: एंड आई स्टार्टेड and I did back to back 3-4 play,
0: अच्छा,
1: and that was wonderful, अच्छा, successful, wasn't professional, it was amateur theater,
0: but वैसे ही
1: done well,
0: आपको एक play का experience
1: हो गया, then I start having all these grants from government of Rajasthan,
0: right,
1: you know,
0: क्योंकि वहाँ पर promote करते हैं,
1: यहाँ promote करते हैं, then that was my journey started, and then I never looked back, and पढ़ाई भी कर रहे थे, theater भी कर रहे थे, and then yeah, just carry on, since then I never stop until today.
0: फिर वहां से नाटक वगैरह जो आप बोल रहे हैं टीवी इंडस्ट्री, वो कैसे लिंक हुआ फिर? थोड़ा और
1: लिंक बनते गए,
0: अच्छा, उदयपुर में रहते
1: हुए सबसे बड़ी बात है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी,
0: मैं वही पूछने लगा, मैं कहा वो कई बार होता है ना टीनेज लड़का घर से भाग कर
1: नहीं नहीं नहीं
0: बागी होकर मुंबई चला गया,
1: नहीं नहीं वो नहीं था,
0: पहली ट्रेन पकड़ के
1: नहीं वो घर से नहीं भागा, तो सारा लिंक उदयपुर में ही बने, उदयपुर में अपना ऑल इंडिया रेडियो भी था, यू नो, वहां से जुड़ा, युवाणी के उनके कार्यक्रम हुआ थे, तो उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा, मुझे सब्जेक्ट देते थे तो सब्जेक्ट में मैं बोलता था, इट वॉज वंडरफुल, एंड थिएटर भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो वॉज अ फुल ऑफ।
0: And you have done ये जो stage hosting है, more than 300
1: Yes,
0: shows.
1: Yes, yeah. तो उसको वो अच्छी बात है, आवाज़ और नहीं का 18 साल का था मैं उस वक्त, तो वहाँ एक वेस्ट जोन कल्चर सेंटर खुला था,
0: right.
1: जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो दे वर लुकिंग फॉर यू नो सो लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज वन ऑफ देम, आई वाज यंगेस्ट पर्सन देयर, सो दे हैड ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, देन दे गिव मी ए 40 आर्टिस्ट,
0: अच्छा,
1: अराउंड
0: किस लिए?
1: वेस्ट जोन टू परफॉर्म अराउंड राजस्थान, इट तहसील, इट ढाणी, इट सिटी में हमें परफॉर्म करना।
0: सब्जेक्ट क्या होते थे?
1: सब्जेक्ट अपने अपने
0: सोशल इश्यूज,
1: जो ना सोशल इश्यूज नहीं, अपना जो लोक संस्कृति है, जो लोक स्वरूप है,
0: राइट,
1: उसका बीड़ा, उस क्या बोलूंगा, उसको प्रिजर्व करना था हमें, क्योंकि वो लुप्त हो रहा है ना आजकल, हमारी लोक संस्कृति लुप्त हो रही है,
0: right.
1: हम क्या थे क्या नहीं थे, इस लंगा बंधु से आप देखो नाम सुना हो कि कैसे बालम पधारो मारा देश जो गाते हैं लोग, उनको लंगा से बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: तो वो भी बेचारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, क्योंकि
0: थोड़ा सा बताइए राजस्थानी कल्चर के बारे में।
1: तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर क्या करता था कि उसके जोन है,
0: आई नो, तो नॉर्थ जोन हमारे पटियाला में है,
1: आप पटियाला, तो हमारे जोन में आया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव।
0: अरे वाह,
1: सो मेरे पास ये चारों स्टेट के आर्टिस्ट थे, and I was hosting the show, and we have one more person we call program officer above me who can taking care of all of them, you know. To unko le jate har Rajasthan ke har tehsil mein, har dhani mein, har shahar mein, un sab ko le jaake bata ke this is our culture and West Zone culture, and ko har ek shahar mein jate hai.
0: Acha.
1: And it was amazing, amazing. Achha. You know, baki Rajasthani culture to aap jante hain, is a very colorful. Jaise Punjab mein apne kitne singers hote hain,
0: of course,
1: jo you know, us Rajasthan ke andar bhi langas bandhu hain,
0: langas hain,
1: and they are more classical, natural. I think they learn themselves, or maybe unka jo apna gharana hota hai usse apne aap seekhte hain wo log, and jyada log padhe likhe nahi hote hain wo log.
0: Acha.
1: To isliye wo bechare tourism pe hi निर्भर करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो या तो घर के बाहर बजा रहे हैं या किसी महल के बाहर बजा रहे हैं. आई वोंट से दिस इज अ बेगिंग विद दिस, अपनी कला को सेल,
0: इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं,
1: एक तो सारंगी है,
0: सारंगी,
1: हाँ सारंगी से यानी होती है वो टटर करते हैं, खड़ताल,
0: खड़ताल,
1: हाँ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. प्लस
0: आपने म्यूजिक में जाने की कोशिश की
1: नहीं? मैम कान सिंह
0: मैं गाने गवाना चाहता था आपसे.
1: नहीं नहीं ऐसे तो कैजुअल गाने गाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन नहीं नहीं मैं ये क्या एक भगवान की देन होती है,
0: हर कोई गॉड गिफ्ट
1: होते हैं, गॉड गिफ्ट होती है, उसके साथ बोन होता है वो. हाँ ये हो सकता है कि उसके पास वो चीज होती है, उसको तराश हम सकते हैं, ठीक है,
0: वर्क करना पड़ता
1: है, वर्क करना पड़ता है, तराश हम सकते हैं. लेकिन अगर मैं, मुझे अगर संगीत सीखना, अगर मुझे गिटार सीखना फॉर एग्जांपल, आई कांट, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेन नहीं है, यू नो, वो जो एक आई थिंक भगवान देता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान देता है, वो ब्रेन नहीं है, और ब्रेन होती है
0: आपका, ब्रेन चलता उधर ही है, एक्टिंग में चलता है आपका, इवेंट में चलता है,
1: इवेंट
0: में
1: चलता है मेरा ये.
0: मैं आपको थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में लेकर जाना चाहता हूँ. आपने सुना है ये गाना? आपने क्या सुना है? आप ही का गाना है, साथ साथ गुनगुना सकते हो.

0: बॉलीवुड में इस थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, डू यू थिंक, के राजस्थानी कल्चर को, जो राजस्थानी कल्चर की आती है बात, यू नो इट इन एंड आउट, राजस्थान में तो खूब ट्रैवल किया आपने.
1: हाँ देखिए, फिल्मी में तो क्या, थोड़ा सा कॉस्मेटिक देना पड़ता है उनको, थोड़ा सा यू नो जो 100% जो होता है राजस्थान में वो तो बताते नहीं फिल्म में, थोड़ा सा
0: पंजाब की बात है, वही बल्ले बल्ले पाजी, वही साग, वही मक्की दी, बस वही बातें होती रहती हैं
1: बस.
0: और राजस्थान के बारे में भी वही सारंगी बजा रहे हैं, बाहर राजस्थान में एंट्री हो रही है और वो रेतीला इलाका है और बस यही राजस्थान है,
1: बस यही राजस्थान बताते हैं. बाकी तो राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान इस वजह बहुत रंगीला है, इसलिए बोलते रंगीलो राजस्थान, मारो पधारो मारे देश.
0: और बड़ा क्योंकि बड़ी स्टेट है, अगर नॉर्थ वाली साइड देखेंगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ वो साथ थोड़ा पंजाबी टच है, मिड में आएंगे एक थोड़ा वो मेवाड़ी टच है, और साउथ में थोड़ा सा जाएंगे गुजराती टच है, तो राजस्थान में भी एक वेरिएशन
1: yes, देखने को मिलता है. अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर इज नॉट पंजाबी टच.
0: हाँ नहीं, ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह हो सकता है,
1: गंगानगर इज लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी, दे है राजस्थान लेकिन पंजाब से बॉर्डर से है तो पंजाबी कल्चर वहाँ ज्यादा आपको मिलेगा, यानी हनुमानगढ़ इस बार तो वो है. बाकी सब तरफ जो आप बोल रहे हो वो मारवाड़ी आता है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
0: सेंट्रल राजस्थान जो है,
1: हाँ ये मारवाड़ी का इलाका है.
0: डू यू गो ऑफन राजस्थान?
1: मैं एवरी ईयर और एवरी टू ईयर्स में निकलता.
0: फैमिली वहीं पर? अभी
1: मेरे दो ब्रदर वहीं हैं, बाकी सारे बच्चे यहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं वो ना. तो या
0: दैट्स तो ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ फिर?
1: देखिए मैं न्यूजीलैंड से अराउंड 14 इयर्स एगो,
0: पहले न्यूजीलैंड गए?
1: हाँ न्यूजीलैंड था, और देयर फॉर 17 इयर्स.
0: अच्छा, और न्यूजीलैंड में किस सिलसिले में? स्टूडेंट?
1: नो स्टूडेंट, वही अगर वही बात है कि इवेंट्स की वजह से.
0: हाँ
1: तो आई वाज डूइंग द इवेंट्स इन उदयपुर एंड मुझे अपॉर्चुनिटी आई न्यूजीलैंड की.
0: अच्छा,
1: कि वुड यू लाइक टू डू सम थिएटर वर्कशॉप, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप देयर. एंड
0: अरे वाह,
1: ऐसे यार.
0: एंड यू वर अबाउट व्हाट एज?
1: 19 साल का था. 19 इयर्स,
0: ठीक है.
1: यार ये कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ कुछ नहीं. और अच्छा अंग्रेजी आती है, सबको आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूरा अंग्रेजी, पूरा इंग्लिश देश है ना. मैंने कहा यार वहाँ पता नहीं कैसे लोग बोलते होंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उनको वो समझ में आएगा नहीं आएगा मेरा इंडियन एक्सेंट, यू नो. तो हम तो हॉल को भी हॉल बोलते हैं, भले कौन सा भी हॉल हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन से एक ही निकलता है. मैंने कहा यार ये गड़बड़ हो जाएगा. अभी भी अपने वी हैव इंडियन एक्सेंट, यू नो, वी डोंट डिनाई इट. एंड दिस
0: इंडियनिज्म तो नहीं निकल सकता.
1: या, तो इज रियलिटी. एंड यू नो, सो तो हिम्मत करके चला गया.
0: अच्छा,
1: एंड फिर वहाँ वर्कशॉप वगैरह की मैंने वहाँ के, और
0: न्यूजीलैंड में.
1: हाँ, ये
0: कौन सी कंट्री में सॉरी कौन सी सिटी में?
1: वेलिंगटन
0: में.
1: तो मैंने वहाँ वर्कशॉप की दो तीन, और दो प्ले मैंने डायरेक्ट किए वहाँ.
0: एंड यू वर देयर फॉर अबाउट कितने टाइम?
1: 3 months देयर. एंड मैंने वो दो प्ले डायरेक्ट किए एंड दे वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, मुझे निकलना था, तो मैं वापस आ गया. अच्छा। लेकिन मेरे शो चलते रहे वहाँ
0: न्यूजीलैंड.
1: हाँ, और हाँ, परफॉर्म बाय बच्चों, चिल्ड्रन थिएटर था तो चिल्ड्रन थिएटर ही किया मैं, तो आई वाज स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन थिएटर. तो वो शो चलते रहे, प्रोफेशनली चलते रहे, लोग टिकट लेके आते.
0: अरे वाह.
1: हाँ, तो बड़ा सक्सेस चला गया. तो देखो व्हाई नॉट बीम, यू कैन कम बैक. तो बाय टाइम मैं 20 साल का हो गया था तब तक.
0: अच्छा,
1: यू नो, तो एक डेढ़ साल पहले की बात की, 20 साल का हो गया तब तक मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मैं कर रहा था.
0: अच्छा,
1: डिप्लोमा तो कर रहा था. मैंने कहा ये फिनिश हो जाए, उसके बाद आऊंगा. ये मई जून में मेरे एग्जाम्स हैं. कोनी नहीं, वी नीड यू बिफोर.
0: अच्छा,
1: और वहाँ दिल्ली में हो गया यार, ये दो साल से मैं कर रहा हूँ, यू नो, ये करूँ वो करूँ. तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाई तो वापस कर लेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा.
0: राइट,
1: तो आई वेंट बैक. तो डिप्लोमा छोड़ दिया एग्जाम के 3-4 वीक पहले.
0: और ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था?
1: हाँ, ये न्यूजीलैंड फंडेड,
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
1: फंडेड थी. और जो वहाँ एक सिरका थिएटर है, जो कि नथिंग टू डू विद इंडियंस, सिरका थिएटर इज गोरो का थिएटर है, लाइक आई वुड से, यू नो, द लोकल न्यूजीलैंडर्स थिएटर.
0: अरे,
1: सो उनकी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में मेरा प्ले उन्होंने
0: इंग्लिश प्ले था वो.
1: हाँ, इंग्लिश में सारा.
0: वहीं के बच्चों को आपने ट्रेन किया?
1: हाँ, और लेकिन मैंने क्या डिजाइन किया, मैंने उसको इंडियन स्वरूप दिया.
0: अच्छा,
1: पूरे को.
0: ओके
1: जो डिजाइन किया या कोरियोग्राफ किया था मैंने उसको
0: इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल
1: सब इंडियन थे कॉस्ट्यूम सब इंडियन ओनली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हमने
0: क्या बात है
1: तो आई वुड से इंडियन प्ले इन इंग्लिश
0: क्या बात है बाय इंग्लिश किड्स
1: बाय इंग्लिश किड्स एंड सम इंडियन मिक्स
0: अच्छा
1: ऐसे करके किया था तो बड़ा अच्छा लगा उनको फिर वो करते रहे वो सारा काम मेरा 9 मंथ्स में खत्म हो गया मेरे पास 11 महीने और थे मैं क्या करूँ यार यहाँ यू नो खर्चा पानी देना पड़ेगा जेब से मतलब नहीं ना एक्सपेंसिव कंट्री है यू नो आई वांट टू गो बैक
0: अच्छा
1: तो बोला कि यार भाई जस्ट स्टे हियर मैं क्या कैसे स्टे हो सकता हूँ क्योंकि ना घर के अंदर कोई पीआर किसने अप्लाई किया कोई जानते नहीं कैसे रहते हैं ना घर में कोई था नहीं जो एब्रोड गया हो
0: ऑफ कोर्स
1: तो उसको सारी ये ना पीआर होता
0: है
1: पता नॉलेज ही था
0: और ये क्या कौन से साल की बात होगी
1: 1995
0: मिड 90s अरे वाह
1: तो मुझे पता
0: तो वैसे ही बड़े मुश्किल कुछ लोगों को ही पता होगा न्यूजीलैंड भी कोई कंट्री है
1: तो ये जो पीआर शिप वगैरह होती है इसके सॉरी पीआर वगैरह होती है तो मुझे पता नहीं था और
0: अच्छा।
1: कि मैं स्टूपिड था हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं उसकी जानकारी नहीं
0: क्योंकि आप तो काम करने आ रहे
1: काम करने आ रहे थे कभी जानकारी लिए ना कभी ये था कभी सोचा था कि कहीं हम कभी जाके
0: रहना
1: तो आई थिंक मेरी जो मंजिल थी ना मुझे यहाँ बुला रही थी शायद कहते हैं कि वो
0: बार बार नॉक हो रहा था
1: फिर आई वॉज क्वालिफाइड बोला कि हाँ उन सब क्वालिफिकेशन तो पता ही थी कि वाई नो की अप्लाई फॉर पीआर ऐसे हाउ आई कैन अप्लाई फॉर पीआर कोई इंडियन किसी इंडियन को नहीं जानता था उस वक्त में
0: अच्छा
1: सारा मेरा ही पल्टन न्यूजीलैंडर थी सारी तो फिर गया अप्लाई फिर एक दो लोगों से मिलाया उन्होंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द पीआर के पीआर के बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉरएवर
0: राइट
1: किस्मत बुलाती ना आपको
0: दाना पानी बोलती
1: है लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी
0: ऑफकोर्स
1: तो उसके पीछे काफी बहुत मेहनत की मैंने उसके लिए और ऑफकोर्स
0: तो उसके बाद थिएटर चलता रहा न्यूजीलैंड में
1: कुछ था फिर वही जब हम एब्रोड हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं होती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो जो थिएटर्स कमाई होती है वाज़न्ट इनफ
0: अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर के लिए तो नहीं होता
1: फिर आई स्टार्टेड फिर मैं कहा क्या करूं सारी क्वालिफिकेशन तो हो गई आई वाज यंग ओनली 21 बाय देन तो चलो ऐसा करता हूं आईटी करता हूं सो आईटी काफी चल रहा था जस्ट स्टार्टेड यू नो तो मैं फिर आईटी में मैंने डिग्री ली
0: ओके
1: तीन साल की होती है मुझे मैंने 2 साल में कर ली क्योंकि मुझे अपनी इंडियन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एक क्रेडिट मिल गया था एक साल बच गया था
0: राइट राइट
1: तो बेसिक सब्जेक्ट के मिल गया टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं मिले क्रेडिट मिल गया तो मैंने 2 साल में हो गया देन आई स्टार्ट जॉब इन आईटी
0: ओके
1: फॉर वाइल वहाँ फिर मैं सिडनी भी आया था एक प्रोजेक्ट करने उसके बाद
0: अच्छा
1: फिर लेकिन आई एम आर्टिस्ट
0: कीड़ा तो वही है
1: कोडिंग करने में मजे नहीं आ रहा मेरे ना लोगों से मिलने का हो रहा है लेकिन मैं बैठा मैं यार मजे नहीं आ रहा है यार कोडिंग करो ये करो बोला ये फिक्स करो वो करो यू नो मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या करें तो मैंने वो सर वो जॉब ही छोड़ दी
0: ओके
1: मेरा बैडमिंटन खेलता था वो भी छूट गया था उस वजह से तो मैंने जॉब ही छोड़ दी लोगों से मिलना नहीं होता था आप एक कमरे में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हो
0: सिडनी किस वजह से आए थे
1: सिडनी एक्चुअली मेरी बेटी थी उसको डॉक्टर बनना था
0: थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी 21 साल के बाद
1: ओके
0: न्यूजीलैंड में
1: नहीं मैं वाइफ इंडिया से थी उदयपुर
0: अच्छा
1: तो मेरी शादी बहुत
0: जल्दी अच्छा
1: व्हेन आई वाज 21
0: मुझे लगा था कि राजस्थान से वो बाल विवाह किया होगा
1: समझ लो बाल विवाह समझ लो
0: बालिका वधू
1: अच्छा फिर वहां से शुरुआत हुई एंड देन आईटी जैसे बताया आईटी छोड़ दी फिर क्या करें फिर एक छोटा सा बिजनेस लिया टू लर्न माई सेल्फ हाउ टू देखो मैं तो राजस्थान से हूँ मारवाड़ी खून है बिजनेस वाई जाता है कैसे कैसे करके जाना जरूरी है तो मैं गया छोटा सा बिजनेस लिया समझा सारे बिजनेस को 2 साल छोटा सा बिजनेस चलाया देन ऑफ नाउ टाइम फॉर मी टू गेट ए नेक्स्ट देन वी पुट अ बिग बिजनेस एंड देन सिंस देन आई नेवर लुक्ड बैक
0: राइट राइट सो या तो आज भीम जी अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर के द जर्नी वाज इजी न्यूजीलैंड में थे तो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर कंट्री या इट वाज अ डिफरेंट और ऑल
1: टुगेदर नहीं आई वुड से इजी शुरू में तो नहीं बोलूंगा पर आए थे एक बार वी वर वेल एस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड 17 इयर्स वी वर लिविंग वी हैव बिल्ट आवर ओन होम यू नो बच्चे सब वहीं पढ़ रहे थे सब कुछ था बिजनेस वाज रनिंग वेल एंड वी प्रोड्यूस एज आई सेड आई प्रोड्यूस 3 मूवीज देयर एज वेल
0: अच्छा
1: व्हाइल देयर
0: वो इंग्लिश मूवीज थी
1: हां इंग्लिश मूवीज थी नथिंग टू डू इंडियंस एट ऑल
0: बट दे वर शॉर्ट मूवीज
1: नो देयर वाज टू डॉक्यूमेंट्रीज 90 मिनट्स ईच
0: अभी YouTube पर हैं किसी प्लेटफॉर्म?
1: नहीं नहीं, वो हमने राइट्स किसी और को दे रखे हैं।
0: अच्छा, आप दिखा भी नहीं सकते किसी को?
1: दिखा नहीं सकते, हम राइट्स किसी को भेज देते हैं, तो अभी वो एक्सपायर होने वाले राइट्स, वो वी गेट बैक देन। तो वो है, तो एक और एक फीचर मूवी थी एज वेल।
0: अच्छा,
1: उसको स्मॉल लाइफ।
0: It was about?
1: About a child waiting for his father.
0: अरे वाह।
1: And he never come back.
0: Oh,
1: so it's waiting for you.
0: क्या बात है, बड़े ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। कहीं आपने फिल्म बता दी, कहीं बॉलीवुड वाले सुन ले तो उन्होंने बना लेनी है इसके ऊपर।
1: तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है जिंदगी में।
0: तो ऑस्ट्रेलिया आकर के कभी फिर इधर डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर फिल्म मेकिंग इसमें नहीं आता इसमें?
1: They all about passion. You know, अब जब पैशन के साथ अगर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता, देन यू हैव टू थोड़ा
0: एक चीज छोड़नी पड़ती,
1: एक चीज छोड़नी पड़ती। तो फिर मैंने चढ़ा कि छोड़ दिया फिल्म का, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ मनी देयर। यू नो, नाउ डेज यू से ओटीटी देयर, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स देयर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल स्ट्रगल अगेन। अनलेस आप पूछे भीम जी रेडियो हाजी को फिल्म बनानी है, आई एम हैप्पी टू मेक इट, बिकॉज रेडियो हाजी है ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है। रेडियो हाजी कैन distribute his own movie. For me, producing and directing myself and putting in the market, no will come.
0: Right. वो थोड़ी एक limitation है.
1: तो limitation है.
0: तो बात कर रहे थे सिडनी में, फिर आए तो आप?
1: बस सिडनी में आए हम लोग, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, कुछ हिकअप्स आए बिजनेस में, we learned lots and हमने ऐसा बिजनेस किया जो कभी हमने किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आई वॉज वेरी गुड इन पी आर शिप, तो मैं कहा कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें जो पीछे होती ना, पर्दे के पीछे, उसको नजरअंदाज कर दिया शायद। ये मेरी गलती हुई, मानता हूँ मैं।
0: तो इनिशियली आपको घाटे वाले,
1: इनिशियली मैं घाटा हुआ कि वो बिजनेस जो हम नहीं करते थे ना वो किया। तो अगर करना था तो, अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिसनर्स हैं, उनको प्लीज वॉट एवर यू डू, प्लीज डू ए फुल रिसर्च, लर्न अबाउट दैट बिजनेस फर्स्ट, देन यू जंप इन।
0: ठीक है,
1: हमने सोचा कि हमारे हमने बिजनेस किया हुआ, हम ये भी कर लेंगे।
0: हाँ।
1: लेकिन नहीं,
0: सारे बिजनेस एक जैसे,
1: सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते। तो इसमें लॉस वॉस करके हम घर बैठ गए, फिर क्या करें। मैंने कहा वही करो जो आता, उसको हम बोलते हैं हिंदी में जिसका काम उसी को साजे। तो फिर हमने I went back to my supermarket and liquor store back.
0: अच्छा,
1: and since then I never looked back.
0: Okay. तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इवेंट सबसे पहले आपका था?
1: सबसे पहले मैंने किया था सुखिंदर सिंह।
0: ओके,
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: तो उसके अंदर मेरे पार्टनर, उसमें मेरे पार्टनर्स भी थे, I won't say I did myself only, but I was one,
0: पर आपने वो स्टार्ट,
1: I was one of the partner as well.
0: Okay.
1: And but सारी मार्केटिंग वगैरह है इसमें, काफी मैंने एफर्ट्स डाले थे स्पॉन्सरशिप में, मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे, एंड आई पुट सम माय फंड एज वेल इन देयर।
0: तो अच्छा गया इवेंट सिडनी?
1: हां, दैट वाज गुड, इवेंट वाज गुड, फैंटास्टिक।
0: और ये कब की बात है?
1: ये 2023,
0: राइट,
1: माय फर्स्ट इवेंट आई डिड इन एसोसिएशन विद अदर पार्टनर्स
0: के साथ। उसके बाद फिर
1: उसके बाद गुरदास मान किया विद सम अदर पार्टनर्स एज वेल, आई वाज वन ऑफ द पार्टनर एज वेल। देन उसके बाद हमने शान किया,
0: अरे वाह,
1: एंड देन उसके बाद आरिफ लोहर किया, एंड उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य किया, एंड देन फिर खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, 2024 इन जून, आई थिंक 29th ऑफ जून 2024।
0: अच्छा,
1: वी डिड एज वेल, इट वाज अ फैंटास्टिक हाउसफुल शो।
0: क्या बात है,
1: एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड दिस टाइम, 2 months ago, myself, national promoter of Rahat Fateh Ali Khan.
0: Kya baat hai, arre wah.
1: And I have my friend Arun Sharma, you know, joined me as well, and he is a fantastic man. And we executed very well.
0: Abhi business, event, family life, how do you manage? Kaise, kisko kitna time prefer, kisko karte ho ke zyada time idhar?
1: Main sabko deta hu barabar time. Business ko bhi deta hu ki bread and butter hai. Events bhi hai, usme bhi बट रहता है, ऐसी बात
0: ज्यादा टाइम ले जाता है,
1: लेकिन ज्यादा टाइम रहता है। तो यू कांट एक्चुअली, इवेंट में एक चीज बताऊंगा कि या तो आप फुल टाइम कर रहे हो, यू बिकम ब्रेड बटर। अगर आपके पास दूसरे बिजनेस है, इफ यू डूइंग दिस वन, बहुत टाइम देना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप इफ यू डूइंग ओनली फॉर द मनी, देन मत करो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जितना टाइम देते हो उतना पैसा नहीं मिलता है, बट जैसे आप, ये आपका सेटिस्फेक्शन है कि यू फील बेटर, यू फील गुड, यू फील, आपको खुशी होती है इस चीज को करने में, देन यू डू इट।
0: विजन क्या है भीम जी, अभी नेक्स्ट क्या करना, कुछ ऐसा कोई ड्रीम, कोई इवेंट या कुछ ऐसा? और यू हैव डन इट ऑल।
1: टू बी ऑनेस्ट, इंसान को होप छोड़नी चाहिए।

0: नेक्स्ट ईयर के लिए वी आर टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग विद आर्टिस्ट एंड ट्राइंग टू डू फ्यू मोर यू नो अ टूर अराउंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड वी टारगेटिंग एक्चुअली इन सिंगापुर जकार्ता एंड बैंकॉक एज वेल.
1: अरे वाह.
0: या सो दैट्स हाउ बात चल रही है. कितनी सक्सेस होती है वो पता नहीं, बट इन जनरल भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, दोस्तों की शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही है. मेरे सारे बॉक्स टिक कर लिए हमने.
1: अरे वाह.
0: यू नो
1: क्या बात है.
0: देखो पैसा मैंने कहा बहुत पैसा है कमाया, ऐसा भी नहीं. पैसा तो आप
1: उतना जितनी सेटिस्फेक्शन हो
0: उतना है. सभी मेरे सारे बॉक्स से आज जाना है, कपिल भाई से मिलने, चाय पीने, फट से निकल गए. यू नो छुट्टी लेके बॉस को बोलना नहीं पड़ता है, 5 मिनट में आ रहा हूँ.
1: करेक्ट.
0: यू नो
1: करेक्ट.
0: सो
1: उस लेवल पर
0: उस लेवल पे सबके आशीर्वाद से और भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाया.
1: मेरा तीन ये चीज़ें इसलिए मैंने मेंशन की थी कि फैमिली लाइफ एक सोशल लाइफ भी होती है, इनफैक्ट फोर्थ है, इवेंट्स हैं, बिजनेस है. तो इनमें से कब टाइम निकलता है व्हेन यू फील के अभी भीम एक अपना जोन में है, एक मी टाइम में है, तो वो कब निकालते हो या नहीं पॉसिबल होता है?
0: नहीं, मैं निकाल देता हूँ फैमिली के साथ. तो ऑफकोर्स जब भी मौका मिले जितना समय हो अपने फैमिली के साथ निकालें आप, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को जाना है एक दिन.
1: करेक्ट.
0: और मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए कि हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, बट इतने बड़े हो गए कि दे कैन लीव देमसेल्फ.
1: करेक्ट.
0: अभी सभी साथ रहते हैं घर पे, सो दैट्स फाइन. बट उनके साथ जितना आप समय बिता सकें बिताएं. और स्पेशली जो इनके जो भी लिसनर हैं, जिनके यंग किड्स हैं, डोंट इग्नोर देम.
1: ओके.
0: मैं उनको सजेस्ट करूं,
1: लाइफ लेसन है,
0: जितना टाइम उनसे साथ बिता सकते हो आप बिता लो. जैसे 10-12 साल के हो जाएंगे वो अपने कमरे में चले जाएंगे, आप बस वेट करते जाओगे कब अपने कमरे से बाहर निकले.
1: अरे.
0: मैं हेलो करें या हमारे साथ बैठ के खाना.
1: फैमिली बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ऐसा आपको लगता है कि हो जाता है इस कंट्री में?
0: होता है. उनका बच्चों का फॉल्ट नहीं है,
1: कल्चर
0: ऐसा है. इवन दो बैक इन इंडिया में ऐसे ही होता है, यू नो. तो अपने जितना छोटे हैं तब तक कहना मानेंगे, जैसे 12-13 साल के होंगे फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके फोन आ जाते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं. सो ऐसा नहीं कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपको, वो उनकी जिंदगी अलग हो जाती है.
1: करेक्ट.
0: तो आपको लगता है यार बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा है. बच्चा टाइम नहीं, वो बच्चे का कल्चर अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता को आपको समझना होगा कि इज गोइंग डिफरेंट स्टेज नाउ, यू नो कल्चर डिफरेंस एज वेल. हम उसको बनाएंगे ना, हम तो और पंजाबी लुंडा है तो पंजाबी रहेगा, जरूरी ये नहीं है. पंजाबी कल्चर सिखाई है उसे, आपने सारे अदब सिखाई है उसको, जिसमें हम सिखाते ना पंजाबी एग्जाम्पल दिया है. तो हमारे जो राजस्थानी अदब है या भारतीय संस्कृति के जो अदब हैं उनको वो सिखाओ, उनको कैरी ऑन करते रहेंगे. मेरे बच्चे हैं, दे बोर्न इन न्यूजीलैंड, बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं विदाउट एक्सेंट.
1: अरे वाह.
0: रीड राइट नहीं कर सकते हैं,
1: इंडियन जैसे.
0: हाँ, इंडियन जैसे बोलते हो तो सब बोलते सर आर यू फ्रॉम
1: इवेंट्स में कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है कि पापा आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो या ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट, ऐसे कोई फीडबैक उनकी होती है कि ये बढ़िया रहा पापा?
0: आई थिंक बढ़िया रहा. अच्छा, दे आर हैप्पी बिकॉज़ आई एम हैप्पी.
1: बट डू यू टेक देयर फीडबैक एज सीरियस फीडबैक और आपको लगता है?
0: कभी कभी लेते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं कि पापा वहाँ ये हो गया था, ऐसे करना चाहिए थे आपको, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था. देखो हम भी के जोश में बोल जाते हैं, कुछ ना होता नहीं, ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करना आपको, वहाँ वैसा करना चाहिए. तो दे गिव यू लिटिल बिट एडवाइस एज वेल. तो इन या
1: क्या सुनना क्या पसंद करते हो, फेवरेट पास टाइम?
0: मैं किशोर कुमार के
1: अरे
0: गीत सुनता हूँ.
1: क्या बात.
0: और कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ.
1: वो कभी कभी आज क्यों नहीं?
0: अब वो
1: कोई सा भी किशोर कुमार का जो आपको लगता है बेस्ट सॉन्ग, मतलब मूवीज वगैरह देखे ना आप, टाइम लग जाता है?
0: हाँ, नहीं मूवी देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ.
1: आई गेस मेरे पास एक सॉन्ग है आपके लिए, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, बट आपको फिर आगे उसको गाना पड़ेगा. आई थिंक आपको वो गाना पता भी है शायद.

0: से। सुरूर तो नहीं है लेकिन गाने की आदत है।
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अभी जैसे घूमने वगैरह के फेवरेट डेस्टिनेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ घूमने जाना है वहां जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लोगों की डेस्टिनेशन है, वो आप छोड़ करके आ।
0: सबसे अच्छी बात है कि हम न्यूजीलैंड में पूरा न्यूजीलैंड घूम चुके हैं हम लोग।
1: अच्छा,
0: वाइल वी देयर सो ट्रैवल वेरी
1: वेल, जब आ रहे थे
0: ट्रैवल वेरी वेल सो इट इज गुड। अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता है। एंड अभी यूरोप मैं कभी गया नहीं, और यूरोप जाना बहुत पहले से जा रहा था, जाना चाहता था, लेकिन जब भी हम यूरोप का सोचते हैं चलो इंडिया चल लेते हैं तो सब हम तो लोग इंडिया निकल जाते हैं बच्चों के साथ। अब यूरोप का हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर, एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली यूरोप के अंदर में आई वुड लाइक टू गो जर्मन, इटली एंड इटली एंड या इन यूके
1: स्पेशली। का फिर इतना जब घूम लिए सिडनी का, व्हाट डू यू थिंक के कैसा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिटी?
0: ओह, इट्स अमेजिंग सिटी। मुझे इतना मजा आता है यहाँ रहने में, इतना मजा आता रहने में। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड मजा नहीं आता, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि न्यूजीलैंड तक कोल्ड कंट्री है, आइसोलेटेड है, लोग कम थे उस वक्त, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, कम थे लोग, नजर नहीं आते थे। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग, बिकॉज हम भीड़ भाड़ से आए हैं ना इंडिया से, तो अब मिसिंग समथिंग, इसलिए हम लोग इंडिया चले जाते थे। वहाँ न्यूजीलैंड में हर दो साल में इंडिया चले जाते थे, दो दो तीन तीन महीने के लिए चले जाते थे, क्योंकि वो मिस करते थे ना।
1: करेक्ट।
0: तो यू बिलीव नॉट, जब से मैं सिडनी में शिफ्ट हुआ था 2013, मैं एक बार गया था शॉर्ट पीरियड के लिए।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैं 6.5 साल तक नहीं गया।
1: अरे भाई,
0: इच्छा नहीं थी जाने की, मगर सब सब कुछ यहाँ मिलता है, यहाँ गौतम कपिल जी हैं, यहाँ ये दोस्त हैं, यहाँ एनवायरमेंट है, यहाँ हैरिस पार्क है जो लिटिल इंडिया बन गया है, तो वो एनवायरमेंट मिल रहा था,
1: मिल रहा है।
0: तो चाहे हम आस पास को जानते नहीं जाए, लेकिन लगता है कि नहीं आ रही है,
1: जब फैमिली लाइक एक एनवायरनमेंट मिल रहा है,
0: एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक छोटा सा स्ट्रीट में जाते हैं, लोग चलते हुए नजर आते हैं, अपने देश के भी आते हैं, दूसरे देश के भी आते हैं, ऐसा लगता है कि समथिंग समथिंग थोड़ा लाइवनेस थी है। तो इसलिए इंडिया फिर हमने मिस करना ही नहीं है।
1: चाइल्ड थिएटर का अभी डू यू हैव एनी प्लान के यहाँ पर कुछ धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा कुछ करना, क्योंकि दैट थिंग आई थिंक के वो आपके एक पैशन में से निकली हुई है।
0: हाँ हाँ, लेकिन इट्स वेरी हार्ड,
1: यहाँ पर हार्ड है,
0: वेरी हार्ड है, थिएटर इज वेरी हार्ड, आई मीन इट्स वेरी हार्ड नाउ, एंड I'm मोर फोकस ऑन इवेंट्स, यू नो वो है।
1: राइट, चले ठीक है, थैंक यू भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया, बातें की, और वो जो एक साइड मैंने लोगों को बताई है कि वो एक नॉटी साइड भी है भीम जी की, वो रेडियो पर भी नहीं दिखा सकते, वो जो डांस करते हैं, वो जो मस्ती आप में आती है,
0: वो
1: जब आप अपने आप एक जो वो कहते हैं कि अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए,
0: नहीं
1: अंदर का बच्चा रहना चाहिए।
0: बिफोर यू स्विच ऑफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच रेडियो हां जी, and Kapil ji, Gautam Kapil ji, thank you so much for
1: thank
0: having
1: you,
0: me here, and please do come and join us, and aapko listeners ko bhi bata deta hu ki we having a Khan saab is Dhurandhar experience, is coming on 31st of October in Sydney at Norwest Hub. Please do come, it's amazing show, is amazing singer, he's singing Punjabi, Bollywood.
1: Sahi
0: so is it, this is not for money this time, it's more like Diwali yaari na,
1: more like
0: Diwali ke dhoom
1: machayi, Diwali pe dhoom, Diwali ke patake phodegi. Thank you so much Bheem ji,
0: thank you,
1: bahut shukriya, thank you, you came here aur ye gana sunte hain, filhal mujhe dijiye ijazat, dhanyawad.

0: Bottom, Laugh Out Loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aagay.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Oh, ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Diwali, Roshni ka tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand. रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: सतकाल मैं दिन शेरगिल से सूची सुन रहे हैं और रेडियो हांजी 1674 AM.
5: मैं तो अपना गैरी संधु सो ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जब मैं कनेडा में पहली बार गया। मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब लै गया, उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मंगता सी, मैं गाना लै

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: दिन भर के कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जाए, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनों च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स,

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.

हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।

ग्रोवर्स, वीट ग्रोवर्स, हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urta Teer.
1: Ek Pakistani jasus Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Woh ye border chal rahi hai?
0: Nahi ji, ye to Urta Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Mera naam hai Ratan Noora aur kaam karta hu khatam pura be love you all. भावनाओं को समझो
6: दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर। रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना हांजी ना जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: सिमर शास्त्र वेद विचारे
1: हर की भगत करू मन लाए मन बंचत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे धना तू क्या लपटावै मूर्ख मना
1: सुत मीत कुटांबर बनतैन ते कहो तुम कवन सनाथा
0: राजदंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी
0: जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मातू लिहे आने भगत बिना बहु डूबे सियाने
0: हर की पद करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे
0: आप जप हो अवरै नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो
1: सार भूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण गावत त्रि उत्तर समैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल
1: होए अचिंत बसै सुख नाल सांस ग्रासर नाम संभाल
0: छाड़ सियान सगली मना सात संग पावे सजतना
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्त कलेख
1: एको जापे को सालाहे एक सिमर एको मन आहे
0: एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप पूर्ण पूरहे ओ प्राव्याप
0: अनक विस्तार एक ते भय एक अराध पराचित गए
1: मन तन अंतर एक प्रव राता गुर प्रसाद नानक एक जाता
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ उन्नीस श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा दिवो हर नाम
1: साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर
0: सदा सदा प्रभु की गुण गाओ सास सास प्रभु तुम्हें ते आओ
1: चरण कमल सो लागै प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एको आधार नानक मांगै ना प्रभु सार
1: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए
0: जिन चख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने
1: सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग
0: करै शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
1: बड़ भागी जपया प्रसोए नानक नामर ते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभु होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
1: पिछ पुनी शरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
0: जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
1: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे की आ जानै
0: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया
1: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते गाड है जन्म जन्म का टूटा गाड है
1: गुरपुर है ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो हो काम आन त्याग जपो हर नाम
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
0: भग पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार
1: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
0: सगल दुख का हो तनाश नानक नाम जपो गुण तास
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर यही सुहाओ
0: नेत्रो पे दरस होए मन बिकसै साधु चरण तो
1: भक्त जना कै मंतन रंग बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
1: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए
0: प्रभु क्षण दीन दयाल भगत विछल सदा कृपाल
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्ब कटा करत प्रतपाल
0: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
1: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
1: सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग वडे आई हर के नाम की कथा मन भाई
1: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
0: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरु मंत
1: साध संग प्रभु देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
0: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
1: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
0: जब अकार कुछ न दृष्टि पापुन तब कहते होता
1: जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरन चिन्ह जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
1: जब आपन आप पार ब्रह्म तब हो कहां किस होवत परम
0: आपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्राप्त केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
0: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरु को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए
0: जब आपै आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
1: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
0: अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
1: जह निर्मल पुरख पुरख पत सात होता तह बिन मैल कहो क्या तूता।
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस।
0: जय जो स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भू कौन तृप्तावे।
1: कर्ण करावन करन हार नानक करते का नाही सुमार।
0: जापनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई।
1: जय सर्व कला आपह परवीन तह वेदक तेव कहां कोचीन।
0: जब आपने आप उड़तार है तो सगन अपसगन कहां बिचार है।
1: जय आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा।
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप।
1: जय अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया।
0: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश।
1: जय एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।
0: जय आपन आपा पतियारा तह कौन कथे कौन सुन न हारा।
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा।
0: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार।
1: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।
0: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार।
1: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखिया।
0: अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है।
1: जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासार संत प्रताप।
0: पाक का आपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी।
1: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग।
0: जिस भावे तुसी अपन नाय लावे जिस भावे तुस खेल खिलावे।
1: बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम। 8:21 श्लोक।
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
1: जा तिस भावे ता सृष्टो पाए अपने भाणे लय समाए।
0: तुम ते पिने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए।
1: जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए।
0: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता।
1: जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
0: जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे।
1: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए।
0: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार।
0: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप।
0: तत्पाले जी अनुभव पात जो जो रचियो सुत सह त्यार।
1: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया।
1: जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए।
0: सेवक को सेवा बने आई हुक्म बूझ परम पद पाए।
1: इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार।
0: बंधन तोर पै निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर।
1: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले।
0: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद।
1: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार।
0: अमृत वचन हर की गुण गावो प्राण तनन काए हे सुआओ।
1: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंधीरा।
0: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो।
1: हलत पलत दोय लिहो सवार राम नाम अंतर उरतार।
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परीखिया।
1: मनता नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए।
0: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी।
1: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे।
0: रिश्ते दूर कहा को जाए उबरे राखन हार ते आए।
1: निर्भउ जपै सगल भौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।
0: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार।
0: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कह कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट।
0: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल।
1: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया।
0: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भल जना कै मन विश्राम। 8:22 श्लोक।
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी।
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा।
1: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है।
0: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम।
1: सुन समाध अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद।
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक ते संसो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत।
0: करन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे।
1: किसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडूल न कबहु डूले।
0: सर्व करा कर खेले खेल ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਕੀ ਜੋ ਧਾਰ ਹਿਓ ਸਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੀਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
0: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਕੁਮਾਨੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਾ ਮੋਹੀ
0: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
0: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨੈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਲਿਪਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
0: ਅੰਤਰ ਗਜ ਸਿਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਚੰਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨੇ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੇ ਮਦਲ ਪੱਤੋ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
0: ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਿਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤਨੀਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
0: ਆਪ ਸਾਜ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸਾਜ ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਨਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏ
0: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰਹਿ ਭਗਵਾਨ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ
0: ਜਾ ਨਾਮਨ ਕਹੇ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕਹਿ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ
0: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤੇਈ ਸਲੋਕ
1: ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇ
1: ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ
0: ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋ ਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਦੂਰ ਮਨ ਮੰਗ
1: ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ
0: ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਭਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ
1: ਖੇਮ ਕੁਸ਼ਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ
0: ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਰਧਾਰੋ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ
1: ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ
0: ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ
0: ਉੱਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ
1: ਸੰਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਤੋ ਉਧਾਰ ਆਪ ਤਰੈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਨਿਸਤਾਰ
0: ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ
1: ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ
0: ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ
1: ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਸੁਣ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ
0: ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭੈ ਸਵਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ
1: ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ
0: ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਰਸ ਨਾ ਕਹਤੇ
1: ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ
0: ਤਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ
0: ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ
1: ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਨ ਜਾਨ
0: ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੇ ਜਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
1: ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ
0: ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪਵ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾ ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ
0: ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੀਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
1: ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ
0: ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਨ ਤੇ ਛੁਟੈ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ
1: ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
0: ਮਰਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
1: ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ
0: ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਪਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚੌਵੀ

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उस पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट, हमारा एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा
1: आपने वर्क किया, आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस।
0: मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है,
0: हाँ, एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओ दिस इज माय थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स की पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो, जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहां हमें रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना।
0: ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी, नॉट रियली। हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आप जनरेटिंग,
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जेनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया, ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाली है। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ, सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फलां व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहां वहां इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूँ ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही यू नो बात कहनी चाहिए क्योंकि दैट रियली मैटर्स. नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट्स रियली इफेक्ट्स अस.
1: आप देखो पहले जो हम चीजें करते थे ना दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल. पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे. तो इट वॉज साइंटिफिक ना कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन.
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट यू नो लाइक हम सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह.
1: अभी हम क्या करते हैं सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है. So the foundation of the day itself is on a different note. तो फिर उसके ऊपर expect करना कि positive thoughts generate हो, we are looking for the impossible. हमने वो अंदर information भरी ही नहीं. तो हमारी information जो हम भरते हैं और हमारे belief systems.
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम हैज टू बी वेरी राइट. एक्चुअली
1: वेरी राइट. एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सके
0: कि क्या
1: कि हम ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की जरूरत है.
0: अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है. यू नो टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन.
1: टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है.
0: यस,
1: टेंशन होनी ही चाहिए. यू नो टेंशन तो हर एक को है. अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग यू नो
0: टेंशन नहीं है,
1: दैट इज अबनॉर्मल. तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है. तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है. आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को. तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है.
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम?
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना. आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है. आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है. लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है बड़ी. वो बार बार बार बार उसको और होनी ही चाहिए. तो इट्स कंसिडर्ड लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन. यू नो जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं. अगर आप टेंशन के बिना बैठे हैं अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज.
0: आपको कोई टेंशन नहीं है? यू नो लाइक उसको
1: मे बी यू आर गुड फॉर नथिंग, मे बी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है.
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है कुछ, यू नो कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे.
1: जो सबसे पहला रॉन्ग, मतलब रॉन्ग कहे या जो भी या बिलीफ सिस्टम है वो है कि टेंशन नेचुरल है. यू नो किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है. टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है. टेंशन नॉर्मल है. नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है?
0: नो आई डोंट थिंक सो.
1: We accept it as the most common thing.
0: No, but if I think, no, we accept it because it's there.
1: Right.
0: No, but like we have been thinking about it.
1: True.
0: But if we really think about it, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा pause दिया, मैंने सोचा कि it should not be natural.
1: हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक epidemic नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर majority population को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है. लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है. इट इज अननेचुरल और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती. जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो, तो इमीडिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो, एंड द होल एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन.
0: बस छूट गई बच्चे की एग्जाम है, क्या होगा,
1: ट्रैफिक जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: यू नो, बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है. एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or.
0: तो ये tensions हैं.
1: हाँ, मेरा जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural. Natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है. You know, natural means what? जैसे चलना natural है, भागना
0: unnatural है.
1: नेचुरल इज वॉकिंग या तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे. तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग? दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी न किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में. तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कम्फर्टेबल. आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कम्फर्टेबल? अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माई नेचुरल.
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना है, दिस इज रॉन्ग.
1: क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे. आप देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे. सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 पॉइंट समथिंग और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो. सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो. तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है. दैट नॉलेज इज देयर. अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे. कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे. 100 जैसे ही क्रॉस हो गया, आप क्रोसिन लेंगे. यू सी, यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल.
0: आई हैव दैट नॉलेज प्रोसेस. वी हैव एक्चुअली टेकन इट कि टेंशन
1: नॉर्मल है. अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए, आप क्रोसिन लेते हैं. क्यों? रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा. नहीं, मुझे ठीक होना है, क्योंकि कल यू नो आई हैव टू गेट बैक टू वर्क. अब टेंशन है, बढ़ रही है, डे बाय डे इट्स गेटिंग, लेकिन हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे. क्यों? क्योंकि हमने से यही नेचुरल है. तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए, तो एक्सेप्टेंस हो गई. कि ये तो नेचुरल है.
0: अच्छा, उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट.
1: या तो टेंशन. अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया, एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कॉजिंग पेन, आई डोंट वॉन्ट इट.
2: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यू आर लिसनिंग
5: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। रेडियो
4: हांजी, स्टे ट्यून्ड।

हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन, रेडियो हांजी।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
2: ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾ

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। हांजी रेडियो
2: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट्स।
7: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: Overseas release by Z Studios.
10: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी।

0: जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। और पर ये जुर्म नहीं है, ये एक इत्तफाक है कि भीम सिंह चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सिडनी में शोमैन के नाम से जाने जाते जितने भी इवेंट होते हैं, और वो बात बाद में करेंगे। पर भीम जी, सबसे पहले वेलकम सर, क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सो मच गौतम जी, इज अमेजिंग यू नो वी टॉकिंग टुगेदर टुडे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बात करने के लिए रेडियो। हाँ जी, आए धंधा ठीक चल रहा
1: है? सब बढ़िया है। देखो धंधा, अगर आदमी की नीयत अच्छी हो ना, तो धंधा हमेशा अच्छा चलता है।
0: अरे सही बात है, क्या बात है। तो भीम जी, जैसे वैसे तो सिडनी में बहुत से लोग जानते होंगे, हर एक जितने बड़े इवेंट होते हैं पीछे, राहत फतेह अली खान, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, और फिर अभी खान साहब का जो इवेंट होने जा रहा है, पहले भी जितने भी हुए हैं उनमें भीम सिंह चौहान एक नाम मशहूर होता है। भीम जी, मैं बाकी लोग तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर या एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते होंगे, मुझे भीम सिंह चौहान की एक और साइड पता है, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बातें करने के लिए आज उस साइड को आज
1: ओके
0: निकाल कर लाया जाए। डांस वगैरह नहीं हो सकेगा, बैड लिस्ट बाकी फन तो हो सकता है, गाने वगैरह। आई थॉट के भीम सिंह चौहान कोई फिल्मों में, बॉलीवुड में वेटरन एक्टर का पहले किरदार निभा कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिर है। Could it be a truth?
1: ये सच होता तो अच्छी बात होती, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सच ही है।
0: नहीं, ये सच नहीं है। पर खान साहब का इवेंट करवाने जा रहे हो, सो कैसे, मतलब बड़े इवेंट, काफी बड़े इवेंट, राहत फतेह अली खान, अभिजीत, शान, और ये अभी ये बिग इवेंट्स होते हैं, ये बिग इवेंट्स, बिग लायबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी,
1: यस,
0: बिग रिस्क
1: 100%
0: एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की ये मार्केट नहीं है ना, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर नेटिव्स ऐसे कलाकारों को नहीं जाते।
1: हाँ।
0: एक कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: कम्युनिटी बिजनेस आपके साथ आएगा।
1: इट इज कम्युनिटी बिजनेस।
0: कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे ए से लेकर जी तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना?
1: देखो इट्स वेरी हार्ड, यू नो, कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। अगर हम नेशनल प्रमोटर बनते हैं तो वी हैव टू हैव अ रिसर्च अबाउट आर्टिस्ट, अनलेस इज आर्टिस्ट ओनली वेन नोन, लाइक इफ द सोनू जी हैं, राहत साहब हैं, मान साहब हैं, शान हैं, इनका कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि प्लीज कॉल अस, यू नो, गिव अस अ स्टेज, यू नो, देन थोड़ा उसका रिसर्च करते हैं, देन वी टॉक टू देम एज वेल, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है, कम्युनिटी इवेंट्स आल्सो देयर एज वेल, लाइक सम पंजाबी सिंगर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, यू नो, एंड वी हैव नॉर्थ इंडियन एज वेल, व्हिच इज मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, आई वुड से एज वेल, तो वो दैट्स डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। देन वी डोंट टारगेट द साउथ इंडियन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर देयर एज वेल, सो बट दे आल्सो डू देयर ओन इवेंट्स, यू नो,
0: तेलुगु इवेंट्स,
1: मलयालम, सो दे डू वेरी वेल, दे डू वेरी वेल, सो सारे रिसर्च करने के बाद देन जस्ट वी वर्क आउट वेदर इट इज फिजिबल फॉर अस फाइनेंशियली और नॉट, एंड देन वी नेगोशिएट विद द आर्टिस्ट एज वेल, लुक दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो, पीएनएल बोलते हैं, एंड दिस आप यहाँ कहाँ फिट हो रहे हैं देख लीजिए आप, एंड वी ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव यू, बट दिस वुड बी आवर प्राइस, अफोर्डेबल, एंड मोस्ट ऑफ देम दे से यस,
0: आ जाते हैं। Talk about your history, background के बारे में। इंडिया में आप राजस्थान से?
1: हाँ जी, मैं इंडिया से, मैं राजस्थान से हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शहर है
0: उदयपुर।
1: उदयपुर
0: झीलों का शहर,
1: उसे बोलते झीलों की नगर, सिटी ऑफ लेक्स।
0: कितनी झीलें हैं वहां पर?
1: अनगिनत अनगिनत, हर एक 25 30 40 किलोमीटर एक लेक मिलेगी।
0: अरे वाह, खूबसूरत लोग है, बड़े रॉयल सिटी,
1: रॉयल सिटी, वेरी ग्रीन।
0: सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर?
1: यस यस।
0: अरे वाह,
1: सो मेरा सौभाग्य कि मैं इतनी खूबसूरत सिटी से आया हूँ।
0: क्या बात है,
1: और यू नो, तो इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। ऑफ कोर्स लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चों में मेमोरीज है जिनके साथ, वो लोग काफी अच्छे थे। थिएटर से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा,
0: अच्छा,
1: टेलीविजन से जुड़ा, सो सारी ये मेमोरीज, यू नो, इन द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी है, वहां से भी मैं काफी,
0: हाँ, राइट, तो वहीं से इस इंडस्ट्री में फिर आना हुआ ऐसे, थोड़ा इवेंट इंडस्ट्री,
1: नो नो नो, आई थिंक इट्स बोर्न, पहले से मैं पैदा ऐसे ही हुआ, बचपन से ही कुछ न कुछ करती था, घर पे हो या कहीं भी हो, यू नो, कुछ मस्ती करता।
0: परिवार जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इवेंट इंडस्ट्री?
1: नहीं नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं एक ही बंदा हूँ। बोलता यही मस्तियाँ करता रहता है, यू नो, उसी को स्टेज पसंद है, ये पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पसंद है, यू नो, वो मैं हूँ, आज भी मैं हूँ, कोई भी नहीं आज भी घर में।
0: What was your age when you started organizing events? First event?
1: I attend children theater.
0: अरे?
1: In Udaipur when I was 9 years old.
0: क्या बात है?
1: And did children theater with a few, you know, people from Udaipur and a few pass out from National School of Drama.
0: Acting का कीड़ा काट के?
1: उस वक्त acting ही करता था मैं। इतना mature नहीं था कि मैं कुछ direction करूँ या कुछ other सेक्शन ऑफ द थिएटर में जाऊं। तो जैसे बड़ा होता रहा, थिएटर बड़ा बड़ा करता, पढ़ता भी अच्छा, पढ़ने भी अच्छा था,
0: अच्छा,
1: तो इसलिए कोई बोलता नहीं था कि ये नाटकबाजी क्या करता है।
0: हाउ डिड यू चूज इट? मतलब अपने आप क्या स्कूल में कि
1: अपने आप
0: करना
1: है? नहीं, अपने आप को, स्कूल के फंक्शन होते थे वो करते थे, फिर वो चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया जो कि वहाँ चलता था, तो वो ज्वाइन किया, फिर बड़े हुए, फिर जब तक 16 साल का पहुंचा था, मैंने कहा आई वांट टू डू माय सेल्फ,
0: अच्छा,
1: आई वांट टू डू इट डायरेक्ट प्ले,
0: अच्छा।
1: तो जिस चिल्ड्रन थिएटर में मैं
0: चाइल्ड आर्टिस्ट
1: काम करता था, काम तो क्या करता है, जिसला जुड़ा हुआ था, उनको मैंने बोला आई वांट टू डू, बोले तो छोटा सा है क्या करेगा,
0: अच्छा।
1: मैंने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ सर, जो मैंने जिनसे सीखा था, मैंने कहा आपसे सीखा है और मेरे दिमाग में कोई दो तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आई वांट टू डू इट। बोले नहीं नहीं, छोटा सा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वी वोंट लेट यू नो, वी हैव आवर रेपुटेशन एंड दिस, ऑफ कोर्स सही बात है, मैं छोटा था, उनकी भी रेपुटेशन थी, उनकी संस्था का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम उसके साथ,
0: क्योंकि जो प्ले होते हैं वो वन गो होते हैं,
1: रीटेक का कोई चांस नहीं है। देन आई स्टार्टेड, ओके, नो आई स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूशन,
0: अच्छा,
1: चिल्ड्रन थिएटर ऑफ उदयपुर,
0: अरे वाह,
1: एंड आई गेट सो मेनी पीपल, आई वाज यंगेस्ट पर्सन वाज होल्डिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन,
0: क्या बात है,
1: एंड आई स्टार्टेड and I did back to back 3-4 play,
0: अच्छा,
1: and that was wonderful, अच्छा, successful, wasn't professional, it was amateur theater,
0: but वैसे ही
1: done well,
0: आपको एक play का experience
1: हो गया, then I start having all these grants from government of Rajasthan,
0: right,
1: you know,
0: क्योंकि वहाँ पर promote करते हैं,
1: यहाँ promote करते हैं, then that was my journey started, and then I never looked back, and पढ़ाई भी कर रहे थे, theater भी कर रहे थे, and then yeah, just carry on, since then I never stop until today.
0: फिर वहां से नाटक वगैरह जो आप बोल रहे हैं टीवी इंडस्ट्री, वो कैसे लिंक हुआ फिर? थोड़ा और
1: लिंक बनते गए,
0: अच्छा, उदयपुर में रहते
1: हुए सबसे बड़ी बात है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी,
0: मैं वही पूछने लगा, मैं कहा वो कई बार होता है ना टीनेज लड़का घर से भागकर
1: नहीं
0: बागी होकर मुंबई चला गया, पहली ट्रेन पकड़ के,
1: नहीं वो घर से नहीं भागा, तो सारा लिंक उदयपुर में ही बने, उदयपुर में अपना ऑल इंडिया रेडियो भी था, यू नो, वहां से जुड़ा, युवाणी के उनके कार्यक्रम हुआ थे, तो उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा, मुझे सब्जेक्ट देते थे तो सब्जेक्ट में मैं बोलता था, इट वॉज वंडरफुल, एंड थिएटर भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो वॉज अ फुल ऑफ,
0: एंड यू हैव डन ये जो स्टेज होस्टिंग है मोर देन 300,
1: यस यस, या उसका वो अच्छी बात है, आवाज़ ओनली का 18 साल का था मैं उस वक्त, तो वहाँ एक वेस्ट जोन कल्चर सेंटर खुला था,
0: राइट,
1: जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो दे वर लुकिंग फॉर, यू नो, सो लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज वन ऑफ देम, आई वाज यंगेस्ट पर्सन देयर, सो दे हैड ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, देन दे गिव मी ए 40 आर्टिस्ट,
0: अच्छा,
1: अराउंड
0: किस लिए?
1: वेस्ट जोन टू परफॉर्म अराउंड राजस्थान, इट तहसील, इट ढाणी, इट सिटी में हमें परफॉर्म करना था।
0: सब्जेक्ट क्या होते थे?
1: सब्जेक्ट अपने अपने
0: सोशल इश्यूज,
1: जो ना सोशल इश्यूज नहीं, अपना जो लोक संस्कृति है, जो लोक स्वरूप है,
0: राइट,
1: उसका बीड़ा, उस क्या बोलूंगा, उसको प्रिजर्व करना था हमें, क्योंकि वो लुप्त हो रहा है ना, आजकल हमारी लोक संस्कृति लुप्त हो रही है,
0: right.
1: हम क्या थे क्या नहीं थे, इस लंगा बंधु से, आप देखो नाम सुना हो कि कैसे बालम पधारो हमारा देश, जो गाते हैं लोग उनको लंगा से बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: तो वो भी बेचारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, क्योंकि
0: थोड़ा सा बताइए राजस्थानी कल्चर के बारे में।
1: तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर क्या करता था कि उसके जोन है,
0: आई नो, तो नॉर्थ जोन हमारे पटियाला में,
1: आप तो हमारे जोन में आया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव,
0: अरे वाह,
1: सो मेरे पास ये चारों स्टेट के आर्टिस्ट थे, and I was hosting the show, and we have one more person we call program officer above me who can taking care of all of them. तो उनको ले जाते हर हर राजस्थान के हर तहसील में, हर ढाणी में, हर शहर में, उन सबको ले जाके बताते दिस इज आवर कल्चर एंड वेस्ट जोन कल्चर. इनको हर एक शहर में जाते हैं.
0: अच्छा.
1: And it was amazing, amazing. Achha. You know, baki Rajasthani culture to aap jante hain, is a very colorful. Jaise Punjab mein apne kitne singers hote hain,
0: of course,
1: jo you know, us Rajasthan ke andar bhi langas bandhu hain,
0: langas hain,
1: and they are more classical, natural. I think they learn themselves, or maybe unka jo apna gharana hota hai usse apne aap seekhte hain wo log. And jyada log padhe likhe nahi hote wo log.
0: Acha.
1: To isliye wo bechare tourism pe hi निर्भर करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो या तो घर के बाहर बजा रहे हैं या किसी महल के बाहर बजा रहे हैं. आई वोंट से दिस इज अ बेगिंग, वो अपनी कला को सेल,
0: इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं,
1: एक तो सारंगी है.
0: सारंगी.
1: हाँ, सारंगी से एन होती है वो टटर करते हैं, खड़ताल.
0: खड़ताल.
1: हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. प्लस
0: आपने म्यूजिक में जाने की कोशिश की
1: नहीं? मैम, आई कांट सिंग.
0: मैं गाने गवाना चाहता था आपसे.
1: नहीं नहीं, ऐसे तो कैजुअल गाने गाते हैं, ऐसी बात नहीं. लेकिन नहीं नहीं, मैं ये क्या, एक भगवान की देन होती है.
0: हर कोई गॉड गिफ्ट होते हैं.
1: गॉड गिफ्ट होती है, उसके साथ बोन होता है वो. हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास वो चीज होती है, उसको तराश हम सकते हैं. ठीक है.
0: वर्क करना पड़ता है
1: तराश हम सकते हैं. लेकिन अगर मैं, मुझे अगर संगीत सीखना, अगर मुझे गिटार सीखना फॉर एग्जांपल, आई कांट, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेन नहीं है. यू नो, वो जो एक आई थिंक भगवान देता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान देता है, वो ब्रेन नहीं है. और ब्रेन होती है,
0: उस ब्रेन को तलाश कर सकते हैं. एक्टिंग में चलता है आपका, इवेंट में चलता है.
1: मेरा इवेंट भी चलता है मेरा, ये यू नो.
0: मैं आपको थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में लेकर जाना चाहता हूँ. आपने सुना है ये गाना? आपने क्या सुना है? आप ही का गाना है. साथ साथ गुनगुना सकते हो.

0: बॉलीवुड में इस थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, डू यू थिंक, के राजस्थानी कल्चर को, जो राजस्थानी कल्चर की आती है बात, यू नो इट इन एंड आउट, राजस्थान में तो खूब ट्रैवल किया आपने.
1: हाँ देखिए, फिल्मी में तो क्या, थोड़ा सा कॉस्मेटिक देना पड़ता है उनको, थोड़ा सा यू नो जो 100% जो होता है राजस्थान में वो तो बताते नहीं फिल्म में, थोड़ा सा
0: पंजाब की बात है, वही बल्ले बल्ले पाजी, वही साग, वही मक्की दी, बस वही बातें होती रहती हैं
1: बस.
0: और राजस्थान के बारे में भी वही सारंगी बजा रहे हैं, बाहर राजस्थान में एंट्री हो रही है और वो रेतीला इलाका है और बस यही राजस्थान है,
1: बस यही राजस्थान बताते हैं. बाकी तो राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान इस वजह बहुत रंगीला है, इसलिए बोलते रंगीलो राजस्थान, मारो पधारो मारे देश.
0: और बड़ा क्योंकि बड़ी स्टेट है, अगर नॉर्थ वाली साइड देखेंगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ वो साथ थोड़ा पंजाबी टच है, मिड में आएंगे एक थोड़ा वो मेवाड़ी टच है, और साउथ में थोड़ा सा जाएंगे गुजराती टच है, तो राजस्थान में भी एक वेरिएशन
1: yes, देखने को मिलता है. अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर इज नॉट पंजाबी टच.
0: हाँ नहीं, ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह हो सकता है,
1: गंगानगर इज लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी, दे है राजस्थान लेकिन पंजाब से बॉर्डर से है तो पंजाबी कल्चर वहाँ ज्यादा आपको मिलेगा, यानी हनुमानगढ़ इस बार तो वो है. बाकी सब तरफ जो आप बोल रहे हो वो मारवाड़ी आता है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
0: सेंट्रल राजस्थान जो है,
1: हाँ ये मारवाड़ी का इलाका है.
0: डू यू गो ऑफन राजस्थान?
1: मैं एवरी ईयर और एवरी टू ईयर्स में निकलता.
0: फैमिली वहीं पर? अभी
1: मेरे दो ब्रदर वहीं हैं, बाकी सारे बच्चे यही पैदा हुए हैं वो ना. तो या
0: तो ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ फिर?
1: देखिए मैं न्यूजीलैंड से अराउंड 14 इयर्स एगो,
0: पहले न्यूजीलैंड गए,
1: न्यूजीलैंड था और 17 इयर्स.
0: अच्छा, और न्यूजीलैंड में किस सिलसिले में? स्टूडेंट?
1: नो स्टूडेंट, वही अगर वही बात है कि इवेंट्स की वजह से.
0: हाँ.
1: तो आई वाज डूइंग द इवेंट्स इन उदयपुर एंड मुझे अपॉर्चुनिटी आई न्यूजीलैंड की.
0: अच्छा.
1: कि वुड यू लाइक टू डू सम थिएटर वर्कशॉप, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप देयर. एंड
0: अरे वाह,
1: ऐसे यार.
0: एंड यू वर अबाउट व्हाट एज?
1: 19 साल का था. 19 इयर्स.
0: ठीक है.
1: यार ये कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ कुछ नहीं. और अच्छा अंग्रेजी आती है, सबको आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूरा अंग्रेजी, पूरा इंग्लिश देश है ना. मैंने कहा यार वहाँ पता नहीं कैसे लोग बोलते होंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उनको वो समझ में आएगा नहीं आएगा मेरा इंडियन एक्सेंट, यू नो. तो हम तो हॉल को भी हॉल बोलते हैं, भले कौन सा भी हॉल हो, हमारे से एक ही निकलता है. ये गड़बड़ हो जाएगा. अभी भी अपने वी हैव इंडियन एक्सेंट, यू नो, डोंट डिनाई इट.
0: इंडियनिज्म तो नहीं निकल सकता.
1: या, तो इज रियलिटी एंड यू नो. सो तो हिम्मत करके चला गया.
0: अच्छा.
1: एंड फिर वहाँ वर्कशॉप वगैरह की मैंने वहाँ के, और
0: न्यूजीलैंड में.
1: हाँ, ये
0: कौन सी कंट्री में सॉरी कौन सी सिटी में?
1: वेलिंगटन
0: में.
1: तो मैंने वहाँ वर्कशॉप की दो तीन, और दो प्ले मैंने डायरेक्ट किए वहाँ.
0: एंड यू वर देयर फॉर अबाउट
1: थ्री मंथ्स देयर. एंड मैंने वो दो प्ले डायरेक्ट किए एंड दे वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, मुझे निकलना था, तो मैं वापस आ गया. अच्छा. लेकिन मेरे शो चलते रहे वहाँ
0: न्यूजीलैंड.
1: हाँ, और हाँ, परफॉर्म बाय बच्चों, चिल्ड्रन थिएटर था तो चिल्ड्रन थिएटर ही किया मैं, तो आई वाज स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन थिएटर. तो वो शो चलते रहे, प्रोफेशनली चलते रहे, लोग टिकट लेके आते.
0: अरे वाह.
1: हाँ, तो बड़ा सक्सेस चला गया. तो देखो व्हाई नॉट बीम, यू कैन कम बैक. तो बाय टाइम मैं 20 साल का हो गया था तब तक.
0: अच्छा.
1: यू नो, तो एक डेढ़ साल पहले की बात की, 20 साल का हो गया तब तक मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मैं कर रहा था.
0: अच्छा.
1: डिप्लोमा मास्टर तो कर रहा था. मैंने कहा ये फिनिश हो जाए, उसके बाद आऊंगा. ये मई जून में मेरे एग्जाम्स हैं. उन्हें नहीं, वी नीड यू बिफोर.
0: अच्छा.
1: और वहाँ डिले हो गया यार, ये दो साल से मैं कर रहा हूँ, यू नो, ये करूँ
0: पढ़ाई छोड़ दूँ बीच में.
1: तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाई तो वापस करेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा.
0: राइट.
1: तो आई वेंट बैक, तो डिप्लोमा छोड़ दिया एग्जाम के 3-4 वीक पहले.
0: और ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था?
1: हाँ, ये न्यूजीलैंड फंडेड,
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
1: फंडेड थी. और जो वहाँ एक सिरका थिएटर है, जो कि नथिंग टू डू इंडियंस, सिरका थिएटर इज गोरो का थिएटर है, लाइक आई वुड से, यू नो, द लोकल न्यूजीलैंडर्स थिएटर.
0: अरे.
1: सो उनकी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में मेरा प्ले उन्होंने
0: इंग्लिश प्ले था वो.
1: हाँ, इंग्लिश में सारा.
0: वहीं के बच्चों को आपने ट्रेन किया?
1: हाँ, और लेकिन मैंने क्या रीजन किया, मैंने उसको इंडियन स्वरूप दिया.
0: अच्छा.
1: पूरे को
0: ओके
1: जो डिजाइन किया या कोरियोग्राफ किया था मैंने उसको
0: इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल
1: सब इंडियन थे कॉस्ट्यूम सब इंडियन ओनली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हमने
0: क्या बात है
1: तो आई वुड से इंडियन प्ले इन इंग्लिश
0: क्या बात है बाय इंग्लिश किड्स
1: बाय इंग्लिश किड्स एंड सम इंडियन मिक्स
0: अच्छा
1: ऐसे करके किया था तो बड़ा अच्छा लगा उनको फिर वो करते रहे वो सारा काम मेरा 9 मंथ्स में खत्म हो गया मेरे पास 11 महीने और थे मैं क्या करूंगा यार यहाँ यू नो खर्चा पानी देना पड़ेगा जेब से मतलब नहीं ना एक्सपेंसिव कंट्री है यू नो आई वांट टू गो बैक
0: अच्छा
1: तो बोला कि यार भाई जस्ट स्टे हियर मैं क्या कैसे स्टे हो सकता हूँ क्योंकि ना घर के अंदर कोई पीआर किसने अप्लाई किया कोई जानते नहीं कैसे रहते हैं ना घर में कोई था नहीं जो एब्रोड गया हो
0: ऑफ कोर्स
1: तो उसको सारी ये ना पीआर होता
0: है
1: पता नॉलेज ही था
0: और ये क्या कौन से साल की बात होगी
1: 1995
0: मिड 90s अरे वाह
1: तो मुझे पता
0: तो वैसे ही बड़े मुश्किल कुछ लोगों को ही पता होगा न्यूजीलैंड भी कोई कंट्री है
1: तो ये जो पीआर शिप वगैरह होती है इसके सॉरी ये पीआर वगैरह होती है तो मुझे पता नहीं था और
0: अच्छा।
1: कि मैं स्टूपिड था हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं उसकी जानकारी नहीं
0: क्योंकि आप तो काम करने आ रहे
1: काम करने आ रहे थे कभी जानकारी लिए ना कभी ये था कभी सोचा था कि कहीं हम कभी जाके
0: रहेंगे
1: तो आई थिंक मेरी जो मंजिल थी ना मुझे यहाँ बुला रही थी शायद कहते हैं कि वो
0: बार बार नॉक हो रहा था
1: फिर आई वॉज क्वालिफाइड बोला कि हाँ उन सब क्वालिफिकेशन तो पता ही थी कि वन अप्लाई फॉर पीआर ऐसे हाउ आई कैन अप्लाई फॉर पीआर कोई इंडियन किसी इंडियन को नहीं जानता था उस वक्त में
0: अच्छा
1: सारा मेरा ही पल्टन न्यूजीलैंडर थी सारी तो फिर गया अप्लाई फिर एक दो लोगों से मिलाया उन्होंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द पीआर के पीआर के बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉरएवर
0: राइट
1: किस्मत बुलाती ना आपको
0: दाना पानी बोलते
1: हैं लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी
0: ऑफकोर्स
1: तो उसके पीछे काफी बहुत मेहनत की मैंने उसके लिए और ऑफकोर्स
0: तो उसके बाद थिएटर चलता रहा न्यूजीलैंड में
1: कुछ था फिर वही जब हम एब्रोड हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं होती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो जो थिएटर्स कमाई होती है वाज़न्ट इनफ
0: अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर के लिए तो नहीं होता
1: फिर आई स्टार्टेड फिर मैं कहा क्या करूं सारी क्वालिफिकेशन तो हो गई आई वाज यंग ओनली 21 बाय देन तो चलो ऐसा करता हूं आईटी करता हूं सो आईटी काफी चल रहा था जस्ट स्टार्टेड यू नो तो मैं फिर आईटी में मैंने डिग्री ली
0: ओके
1: तीन साल की होती है मैंने 2 साल में कर ली क्योंकि मुझे अपनी इंडियन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एक क्रेडिट मिल गया था एक साल बच गया था
0: राइट
1: तो बेसिक सब्जेक्ट के मिल गया टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं मिले थे क्रेडिट मिल गया तो मैंने 2 साल में हो गया देन आई स्टार्ट जॉब इन आईटी
0: ओके
1: फॉर वाइल वहाँ फिर मैं सिडनी भी आया था एक प्रोजेक्ट करने उसके बाद
0: अच्छा
1: फिर लेकिन आई एम आर्टिस्ट
0: कीड़ा तो वही है
1: कोडिंग करने में मजे नहीं आ रहा मेरे ना लोगों से मिलने का हो रहा है लेकिन मैं बैठा मैं यार मजे नहीं आ रहा है यार कोडिंग करो ये करो बोला ये फिक्स करो वो करो यू नो मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या करें तो मैंने वो सर वो जॉब ही छोड़ दी
0: ओके
1: मेरा बैडमिंटन खेलता था वो भी छूट गया था उस वजह से तो मैंने जॉब ही छोड़ दी लोगों से मिलना नहीं होता था आप एक कमरे में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हो
0: सिडनी किस वजह से आए थे
1: सिडनी एक्चुअली मेरी बेटी थी उसको डॉक्टर बनना था
0: थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी 21 साल के बाद
1: ओके
0: न्यूजीलैंड में
1: नहीं मैं वाइफ इंडिया से थी उदयपुर
0: अच्छा
1: तो मेरी शादी बहुत
0: जल्दी अच्छा
1: व्हेन आई वाज 21
0: मुझे लगा था कि राजस्थान से वो बाल विवाह किया होगा
1: समझ लो बाल विवाह समझ लो
0: बालिका वधू
1: अच्छा फिर वहां से शुरुआत हुई एंड देन आईटी जैसे बताया आईटी छोड़ दी फिर क्या करें फिर एक छोटा सा बिजनेस लिया टू लर्न माई सेल्फ हाउ टू देखो मैं तो राजस्थान से हूँ मारवाड़ी खून है बिजनेस वाई जाता है ना कैसे कैसे करके जाना जरूरी है तो मैं गया छोटा सा बिजनेस लिया समझा सारे बिजनेस को 2 साल छोटा सा बिजनेस चलाया देन ओह नाउ टाइम फॉर मी टू गेट ए नेक्स्ट देन वी पुट अ बिग बिजनेस एंड देन सिंस देन आई नेवर लुक्ड बैक
0: राइट राइट तो आज भीम जी अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर के द जर्नी वाज इजी न्यूजीलैंड में थे तो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर कंट्री या इट वाज अ डिफरेंट और
1: ऑल्टरनेटिव नहीं आई वुड से इजी शुरू में तो नहीं बोलूंगा पर आए थे एक बार वी वर वेल एस्टैब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड 17 इयर्स वी वर लिविंग वी हैव बिल्ट आवर ओन होम यू नो बच्चे सब वहीं पढ़ रहे थे सब कुछ था बिजनेस वाज रनिंग वेल एंड वी प्रोड्यूस एज आई सेड आई प्रोड्यूस 3 मूवीज देयर एज वेल
0: अच्छा
1: व्हाइल देयर
0: वो इंग्लिश मूवीज थी
1: हां इंग्लिश मूवीज थी नथिंग टू डू इंडियंस एट ऑल
0: एंड दे वर शॉर्ट मूवीज
1: नो देयर वाज टू डॉक्यूमेंट्रीज 90 मिनट्स ईच
0: अभी YouTube पर हैं किसी प्लेटफॉर्म?
1: नहीं नहीं, वो हमने राइट्स किसी और को दे रखे हैं।
0: अच्छा, आप दिखा भी नहीं सकते किसी को?
1: दिखा नहीं सकते, हम राइट्स किसी को भेज देते हैं, तो अभी वो एक्सपायर होने वाले राइट्स, वो वी गेट बैक, तो वो है। तो एक और एक फीचर मूवी थी एज वेल।
0: अच्छा,
1: उसको स्मॉल लाइफ।
0: It was about?
1: About a child waiting for his father.
0: अरे वाह।
1: And he never come back.
0: Oh,
1: so it's waiting for you.
0: क्या बात है, बड़े original concepts हैं। कहीं आपने फिल्म बता दी, कहीं बॉलीवुड वाले सुन ले तो उन्होंने बना दी है इसके ऊपर।
1: तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है जिंदगी में।
0: तो ऑस्ट्रेलिया आकर के कभी फिर इधर डॉक्यूमेंट्रीज फीचर फिल्म मेकिंग इसमें नहीं आता इसमें?
1: They all about passion. You know, अब जब पैशन के साथ अगर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता, देन यू हैव टू थोड़ा
0: एक चीज छोड़नी पड़ती,
1: एक चीज छोड़नी पड़ती। तो फिर मैंने चढ़ा कि छोड़ दिया फिल्म का, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ मनी देयर। यू नो, नाउ डेज यू से ओटीटी देयर, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स देयर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल स्ट्रगल अगेन। अनलेस आप पूछे भीम जी रेडियो हाजी को फिल्म बनानी है, आई एम हैप्पी टू मेक इट, बिकॉज रेडियो हाजी है ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है। रेडियो हाजी कैन distribute his own movie. But me producing and directing myself and putting in the market, no will come.
0: Right. वो थोड़ी एक limitation है.
1: तो limitation है.
0: तो बात कर रहे थे सिडनी में, फिर आए तो आप?
1: बस सिडनी में आए हम लोग, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, कुछ हिकअप्स आए बिजनेस में, we learned lots and हमने ऐसा बिजनेस किया जो कभी हमने किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आई वॉज वेरी गुड इन पीआरशिप, तो मैं कहा कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें जो पीछे होती ना, पर्दे के पीछे, उसको नजरअंदाज कर दिया शायद। ये मेरी गलती हुई, मानता हूँ मैं।
0: तो इनिशियली आपको घाटे वाले?
1: इनिशियली मैं घाटा हुआ कि वो बिजनेस जो हम नहीं करते थे ना वो किया। तो अगर करना था तो अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिसनर्स हैं, उनको प्लीज व्हाट एवर यू डू, प्लीज डू ए फुल रिसर्च, लर्न अबाउट दैट बिजनेस फर्स्ट, देन यू जंप इन।
0: ठीक है,
1: हमने सोचा कि हमने बिजनेस किया हुआ, हम ये भी कर लेंगे।
0: हाँ।
1: लेकिन नहीं,
0: सारे बिजनेस एक जैसे,
1: सारे बिजनेस एक जैसे नहीं होते। तो इसमें लॉस वॉस करके हम घर बैठ गए, फिर क्या करें। मैंने कहा वही करो जो आता, उसको हम बोलते हैं हिंदी में जिसका काम उसी को साजे। तो फिर हमने I went back to my supermarket and liquor store back.
0: अच्छा,
1: and since then I never looked back.
0: Okay. तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इवेंट सबसे पहले आपका था?
1: सबसे पहले मैंने किया था सुखिंदर सिंह।
0: ओके,
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: तो उसके अंदर मेरे पार्टनर, उसमें मेरे पार्टनर्स भी थे, I won't say I did myself only, but I was one,
0: पर आपने वो स्टार्ट पहले इवेंट,
1: I was one of the partner as well.
0: ओके,
1: and but सारी मार्केटिंग वगैरह है इसमें, काफी मैंने एफर्ट्स डाले थे स्पॉन्सरशिप में, मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे, एंड आई पुट सम माय फंड एज वेल इन देयर।
0: तो अच्छा गया इवेंट सिडनी?
1: हां, दैट वाज गुड, इवेंट वाज गुड, फैंटास्टिक, यू
0: नो। और ये कब की बात है?
1: ये 2023,
0: राइट,
1: माय फर्स्ट इवेंट आई डिड इन एसोसिएशन विद द अदर पार्टनर्स
0: के साथ। उसके बाद फिर
1: उसके बाद गुरदास मान किया विद सम अदर पार्टनर्स एज वेल, आई वाज वन ऑफ द पार्टनर एज वेल। देन उसके बाद हमने शान किया,
0: अरे वाह,
1: एंड देन उसके बाद आरिफ लोहर किया, एंड उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य किया, एंड देन फिर खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, 2024 इन जून, आई थिंक 29th ऑफ जून 2024।
0: अच्छा,
1: वी डिड एज वेल, इट वाज अ फैंटास्टिक हाउसफुल शो।
0: क्या बात है,
1: एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड दिस टाइम, 2 मंथ्स अगो माय सेल्फ नेशनल प्रमोटर ऑफ राहत फतेह अली खान।
0: क्या बात है, अरे वाह,
1: एंड आई हैव माय फ्रेंड अरुण शर्मा, यू नो, जॉइन मी एज वेल, एंड ही इज अ फैंटास्टिक मैन, एंड वी एग्जीक्यूट वेरी वेल।
0: अभी बिजनेस, इवेंट, फैमिली लाइफ, हाउ डू यू मैनेज, कैसे, किसको कितना टाइम प्रेफर, किसको करते हो कि ज्यादा टाइम इधर?
1: मैं सबको देता हूँ बराबर टाइम, बिजनेस को भी देता हूँ कि ब्रेड एंड बटर है, इवेंट्स भी है उसमें भी बटर आता है, ऐसी बात,
0: ज्यादा टाइम ले जाता है,
1: लेकिन ज्यादा टाइम लेता है। तो यू कांट एक्चुअली, इवेंट में एक चीज बताऊंगा कि या तो आप फुल टाइम कर रहे हो, यू बिकम ब्रेड बटर, अगर आप में, अगर आपके पास दूसरे बिजनेस हैं, इफ यू डूइंग दिस वन, बहुत टाइम देना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप, इफ यू डूइंग ओनली फॉर द मनी, देन मत करो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जितना टाइम देते हो उतना पैसा नहीं मिलता है, बट जैसे आप, ये आपका सेटिस्फेक्शन है कि यू फील बेटर, यू फील गुड, यू फील, आपको खुशी होती है इस चीज को करने में, देन यू डू इट।
0: विजन क्या है भीम जी, अभी नेक्स्ट क्या करना, कुछ ऐसा कोई ड्रीम, कोई इवेंट या कुछ ऐसा और यू हैव डन इट ऑल?
1: टू बी ऑनेस्ट, इंसान को होप छोड़नी चाहिए. अगर मैं सोचूंगा यहाँ सब कुछ हो गया है यू नो, तो फिर मेरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी. आपको सीखना हमेशा है यू नो, हर चीज हर वक्त कुछ ना कुछ आपको सीखना है.
0: Right.
1: तो सीखना छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को. किसी भी उम्र हो के यार मैंने इतने सारे इवेंट कर लिए, आई नो एवरीथिंग. नो, यू विल मेक द मिस्टेक, स्टिल यू मेक द मिस्टेक. तो सीखना है, आगे भी सीखते हैं, सीखता रहूंगा. और यू नहीं कहूंगा कि मेरा ये बस ही हो गया, अच्छे को एक आर्टिस्ट आएगा और कैरी ऑन यू नो. अभी दो चार प्रोजेक्ट आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए. वी आर टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग विद द आर्टिस्ट and trying to do few more you know a tour around New Zealand and Australia, and we targeting actually in Singapore, Jakarta and in Bangkok as well.
0: Are wow.
1: Yeah, so that's how baat chal rahi hai. Kitni success hoti hai wo pata nahi, but in general bhagwan ka aashirwad, ma ka aashirwad, doston ki shubhkamnaen hamesha mere saath rahi hai. Mere sare box tick kar liye humne.
0: Are wow.
1: You know,
0: क्या बात है.
1: देखो पैसा, मैं नहीं कहूंगा बहुत पैसा है कमाया, ऐसा भी नहीं. पैसा तो आप
0: उतना जितनी सेटिस्फेक्शन हो
1: उतना है. सॉरी, मेरे सारे बॉक्स से आज जाना है, कपिल भाई से मिलने, चाय पीनी, फट से निकल गए. यू नो, छुट्टी लेके बॉस को बोलना नहीं पड़ता है, पांच मिनट में आ रहा हूँ.
0: करेक्ट,
1: यू नो,
0: करेक्ट.
1: सो
0: उस लेवल पर,
1: उस लेवल पे सबके आशीर्वाद से और भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाया.
0: मेरा तीन ये चीजें इसलिए मैंने मेंशन की थी कि फैमिली लाइफ, एक सोशल लाइफ भी होती है, इनफैक्ट फोर्थ है, इवेंट्स हैं, बिजनेस है. तो इनमें से कब टाइम निकलता है व्हेन यू फील के अभी भीम एक अपना जोन में है, एक मी टाइम में है, तो वो कब निकालते हो? निकालते हो या नहीं, पॉसिबल होता है?
1: नहीं, मैं निकाल देता हूँ फैमिली के साथ. तो ऑफ कोर्स जब भी मौका मिले, जितना समय हो अपने फैमिली के साथ निकालें आप, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को जाना है एक दिन.
0: करेक्ट.
1: और मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए कि हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, बट इतने बड़े हो गए कि दे कैन लीव देमसेल्फ.
0: करेक्ट.
1: अभी सभी साथ रहते हैं घर पे, सो इट्स फाइन. बट उनके साथ जितना आप समय बिता सकें बिताएं, और स्पेशली जो उनके जो भी लिसनर हैं, जिनके यंग किड्स हैं, डोंट इग्नोर देम.
0: ओके,
1: मैं उनको से इसको
0: लाइफ लेसन है,
1: जितना टाइम उनसे साथ बिता सकते हो आप बिता लो. जैसे 10-12 साल के हो जाएंगे, वो अपने कमरे में चले जाएंगे, आप बस वेट करते जाओगे कब आप कमरे से बाहर निकले.
0: अरे,
1: मैं हेलो करें, हमारे साथ बैठ के खाना.
0: फैमिली बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ऐसा आपको लगता है कि हो जाता है इस कंट्री में?
1: होता है. उनका बच्चों का फॉल्ट नहीं है,
0: कल्चर ही ऐसा,
1: कल्चर ऐसा है. इवन दो बैक इन इंडिया में ऐसे ही होता है, यू नो. तो अपने जितना छोटे हैं तब तक कहना मानेंगे, जैसे 12-13 साल के होंगे फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके फोन आ जाते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं. सो ऐसा नहीं कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपको, वो उनकी जिंदगी अलग हो जाती है.
0: करेक्ट.
1: तो आपको लगता है यार बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा है, बच्चा टाइम नहीं, वो बच्चे का कल्चर अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता को आपको समझना होगा कि इज गोइंग डिफरेंट स्टेज नाउ, यू नो, कल्चर डिफरेंस एज वेल. हम उसको बनाएंगे ना, हम तो और पंजाबी लुंडा है तो पंजाबी रहेगा, ये नहीं है. पंजाबी कल्चर सिखाई है उसे, आपने सारे अदब सिखाई है उसको, जिसमें हम सिखाते ना पंजाबी, तो एग्जाम्पल दिया है. तो हमारे जो राजस्थानी अदब है या हमारे भारतीय संस्कृति के जो अदब हैं, उनको वो सिखाओ, उनको कैरी ऑन करते रहेंगे. जैसे मेरे बच्चे हैं, दे बोर्न इन न्यूजीलैंड, बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं विदाउट एक्सेंट.
0: अरे वाह.
1: रीड राइट नहीं कर सकते हैं,
0: इंडियन जैसे.
1: हाँ, इंडियन जैसे बोलते हो तो सब बोलते, सर आई फ्रॉम
0: इवेंट्स में कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है कि पापा आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो या ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट, ऐसे कोई फीडबैक उनकी होती है कि ये बढ़िया रहा पापा?
1: आई थिंक बढ़िया रहा, अच्छा, दे आर हैप्पी बिकॉज़ आई एम हैप्पी.
0: बट डू यू टेक देयर फीडबैक एज सीरियस फीडबैक और आपको लगता
1: है? कभी-कभी लेते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं कि पापा वहाँ ये हो गया था, ऐसे करना चाहिए थे आपको, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था. देखो हम भी के जोश में बोल जाते हैं, कुछ ना होता नहीं, ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करना आपको, वहाँ वैसा करना चाहिए. तो दे गिव यू लिटिल बिट एडवाइस एज वेल. तो इन या
0: क्या सुनना क्या पसंद करते हो, फेवरेट पास टाइम?
1: मैं किशोर कुमार के
0: अरे
1: गीत सुनता हूँ.
0: क्या बात.
1: और कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ.
0: वो कभी कभी आज क्यों नहीं?
1: अब वो
0: कोई सा भी किशोर कुमार का जो आपको लगता है बेस्ट सॉन्ग, मतलब मूवीज वगैरह देखे ना आप, टाइम लग जाता है?
1: हाँ, नहीं, मूवी देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ.
0: आई गेस मेरे पास एक सॉन्ग है आपके लिए, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, बट आपको फिर आगे उसको गाना पड़ेगा. आई थिंक आपको वो गाना पता भी है शायद.

0: से सुरूर तो नहीं है लेकिन गाने की आदत है.
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है. अभी जैसे घूमने वगैरह के फेवरेट डेस्टिनेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ घूमने जाना है वहां जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लोगों की डेस्टिनेशन है, वो आप छोड़ करके आ.
0: सबसे अच्छी बात है कि हम न्यूजीलैंड में पूरा न्यूजीलैंड घूम चुके हैं हम लोग.
1: अच्छा,
0: वाइल वी देयर सो ट्रैवल वेरी
1: वेल, जापान रह रहे थे,
0: ट्रैवल वेरी वेल सो इट्स गुड. अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता है. एंड अभी यूरोप मैं कभी गया नहीं और यूरोप जाना बहुत पहले से जा रहा था, जाना चाहता था, लेकिन जब भी हम यूरोप का सोचते हैं चलो इंडिया चल लेते हैं तो सब हम तो लोग इंडिया निकल जाते थे बच्चों के साथ. अब यूरोप का हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली यूरोप के अंदर में आई वुड लाइक टू गो जर्मन इटली एंड इटली एंड या इन यूके
1: स्पेशली का. फिर इतना जब घूम लिए सिडनी का, व्हाट डू यू थिंक के कैसा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिटी?
0: ओह इट्स अमेजिंग सिटी. मुझे इतना मजा आता है यहाँ रहने में, इतना मजा आता रहने में. ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड मजा नहीं आता, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि न्यूजीलैंड था कोल्ड कंट्री है, आइसोलेटेड है, लोग कम थे उस वक्त, अब तो बहुत ज्यादा होंगे, कम थे लोग, नजर नहीं आते थे. तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग बिकॉज हम भीड़ भाड़ से आए हैं ना इंडिया से, तो मिसिंग समथिंग. इसलिए हम लोग इंडिया चले जाते थे, वहाँ न्यूजीलैंड में हर दो साल में इंडिया चले जाते थे, दो दो तीन तीन महीने के लिए चले जाते थे क्योंकि वो मिस करते थे ना.
1: करेक्ट.
0: तो यू बिलीव नॉट, जब से मैं सिडनी में शिफ्ट हुआ था 2013, मैं एक बार गया था शॉर्ट पीरियड के लिए.
1: अच्छा.
0: उसके बाद मैं 6.5 साल तक नहीं गया.
1: अरे
0: इच्छा नहीं होती जाने की, मतलब सब सब कुछ यहाँ मिलता है, यहाँ गौतम कपिल जी हैं, यहाँ ये दोस्त हैं, यहाँ एनवायरमेंट है, यहाँ ये हैरिस पार्क है जो अब लिटिल इंडिया बन गया है, तो वो एनवायरमेंट मिल रहा था,
1: मिल रहा है.
0: तो चाहे हम आसपास को जानते नहीं जाए लेकिन लगता है कि नहीं यार ये है
1: जब फैमिली लाइक एक एनवायरमेंट मिल रहा है,
0: एनवायरमेंट मिल रहा है. एक छोटा सा स्ट्रीट में जाते हैं, लोग चलते हुए नजर आते हैं, अपने देश के भी आते हैं, दूसरे देश के भी आते हैं, ऐसा लगता है कि समथिंग समथिंग थोड़ा लाइवनेस थी. तो इसलिए इंडिया फिर हमने मिस
1: चाइल्ड थिएटर का अभी डू यू हैव एनी प्लान के यहाँ पर कुछ धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा कुछ करना, क्योंकि दैट थिंग आई थिंक के वो आपके एक पैशन में से निकली हुई
0: है. हाँ हाँ, लेकिन इट्स वेरी हार्ड.
1: यहाँ पर हार्ड
0: है, वेरी हार्ड है. थिएटर इज वेरी हार्ड. आई मीन इट्स वेरी हार्ड नाउ एंड I'm more focused on events,
1: Right. चले ठीक है, थैंक यू भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया, बातें की. और वो जो एक साइड मैंने लोगों को बताई है कि वो एक नॉटी साइड भी है भीम जी की, वो रेडियो पर भी नहीं दिखा सकते. वो जो डांस करते हैं, वो जो मस्ती आप में आती है,
0: वो तो मस्ती, वो तो
1: वो जब आप अपने आप एक एक जो वो कहते हैं कि अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए,
0: नहीं
1: अंदर का बच्चा रहना चाहिए.
0: बिफोर यू स्विच ऑफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच रेडियो हां जी एंड कपिल जी, गौतम कपिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड प्लीज डू कम एंड जॉइन अस. एंड आपको लिसनर्स को भी बता देता हूँ कि वी हैविंग ए खान साहब इज धुरंधर एक्सपीरियंस इज कमिंग ऑन 31st of October इन सिडनी एट नॉर्वेस्ट हब. प्लीज डू कम, इज अमेजिंग शो, इज अमेजिंग सिंगर, ही सिंगिंग पंजाबी बॉलीवुड.
1: सही बात.
0: इज इट दिस इज नॉट फॉर मनी दिस टाइम, इज मोर लाइक दिवाली आ रही ना,
1: मोर लाइक
0: दिवाली की धूम धूम मचा,
1: दिवाली पे धूम, दिवाली के पटाखे फोड़
0: जी.
1: थैंक यू सो मच भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यू केम हियर. और ये गाना सुनते हैं, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद.

0: Crossing, very be Toyota, the smart choice.
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Deshbhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
6: Udhe ek border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
7: Radio Haji.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आई एम

0: जुर्म सिर्फ इतना है कि उनको प्यार करते हैं, और जिनको हम प्यार करते हैं वो आज हमारे स्टूडियो में है, और पर ये जुर्म नहीं है, ये एक इत्तफाक है कि भीम सिंह चौहान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सिडनी में शोमैन के नाम से जाने जाते हैं जितने भी इवेंट होते हैं, और वो बात बाद में करेंगे। पर भीम जी, सबसे पहले वेलकम सर, क्या हाल चाल है?
1: थैंक यू सो मच गौतम जी, इज अमेजिंग यू नो वी टॉकिंग टुगेदर टुडे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और बात करने के लिए रेडियो। हाँ जी, आए धंधा ठीक चल रहा
1: है? सब बढ़िया है। देखो धंधा, अगर आदमी की नीयत अच्छी हो ना, तो धंधा हमेशा अच्छा चलता है।
0: अरे सही बात है, क्या बात है। तो भीम जी, जैसे वैसे तो सिडनी में बहुत से लोग जानते होंगे, हर एक जितने बड़े इवेंट होते हैं पीछे, राहत फतेह अली खान, अभिजीत भट्टाचार्य, शान, और फिर अभी खान साहब का जो इवेंट होने जा रहा है, पहले भी जितने भी हुए उनमें भीम सिंह चौहान एक नाम मशहूर होता है। भीम जी, मैं बाकी लोग तो आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर या एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते होंगे, मुझे भीम सिंह चौहान की एक और साइड पता है, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो में बातें करने के लिए आज उस साइड को आज निकाल कर लाया जाए। डांस वगैरह नहीं हो सकेगा, बाकी फन तो हो सकता है, गाने वगैरह। आई थॉट के भीम सिंह चौहान कोई फिल्मों में, बॉलीवुड में वेटरन एक्टर का पहले किरदार निभा कर आ चुके हैं और अब यहाँ पर फिर हैं। Could it be a truth?
1: ये सच होता तो अच्छी बात होती, unfortunately नहीं है, सच ही है।
0: नहीं, ये सच नहीं है। पर खान साहब का इवेंट करवाने जा रहे हो, सो कैसे, मतलब बड़े इवेंट, काफी बड़े इवेंट, राहत फतेह अली खान, अभिजीत, शान, और ये अभी ये बिग इवेंट्स होते हैं, ये बिग इवेंट्स, बिग लायबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी,
1: यस,
0: बिग रिस्क
1: 100%
0: एंड दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की ये मार्केट नहीं है ना, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर नेटिव्स ऐसे कलाकारों को नहीं जाते।
1: हाँ,
0: एक कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ेगा।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: कम्युनिटी बिजनेस आपके साथ आएगा।
1: इट इज कम्युनिटी बिजनेस।
0: कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे ए से लेकर जी तक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना?
1: इट इज वेरी हार्ड, यू नो, कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। अगर हम नेशनल प्रमोटर बनते हैं तो वी हैव टू हैव अ रिसर्च अबाउट आर्टिस्ट, अनलेस इज आर्टिस्ट ओनली वेन नॉन, लाइक इफ सोनू जी हैं, राहत साहब हैं, मान साहब हैं, शान हैं, इनका कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अदर आर्टिस्ट जो होते हैं उनके थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि प्लीज कॉल अस, यू नो, गिव अस अ स्टेज, यू नो, देन थोड़ा उसका रिसर्च करते हैं, देन वी टॉक टू देम एज वेल, एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी है, बिकॉज कम्युनिटी इवेंट्स आल्सो देयर एज वेल, लाइक सम पंजाबी सिंगर्स कमिंग फ्रॉम पंजाब, यू नो, एंड वी हैव नॉर्थ इंडियन एज वेल, व्हिच इज मोस्टली हिंदी स्पीकिंग और हिंदी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, आई वुड से एज वेल, तो वो दैट्स डिफरेंट ऑडियंस एज वेल। देन वी डोंट टारगेट द साउथ इंडियन कम्युनिटी बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कल्चर देयर एज वेल, सो बट दे आल्सो डू देयर ओन इवेंट्स, यू नो,
0: तेलुगु इवेंट्स,
1: मलयालम, सो दे डू very well. So sare research karne ke baad then just we work out whether it is feasible for us financially or not, and then we negotiate with the artist as well, look, this is our profit and loss, you know, PNL bolte hain, and that's aap yahan kahan fit ho rahe hain dekh liye aap, then we of course we want to have you, but this would be our price, affordable, and most of them they say yes,
0: aa jaate hain. Let talk about your history, background के बारे में। इंडिया में आप राजस्थान से?
1: हाँ जी, मैं इंडिया से, मैं राजस्थान से हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शहर है
0: उदयपुर। झीलों का शहर,
1: उसे बोलते झीलों की नगर। सिटी ऑफ लाइट्स,
0: कितनी झीलें हैं वहाँ पर?
1: अनगिनत अनगिनत, हर एक 25, 30, 40 किलोमीटर एक लेक मिलेगी।
0: अरे वाह, खूबसूरत लोग है, बड़े रॉयल सिटी,
1: रॉयल सिटी, वेरी ग्रीन।
0: सो यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर?
1: यस।
0: अरे वाह,
1: सो मेरा सौभाग्य कि मैं इतनी खूबसूरत सिटी से आया हूँ।
0: क्या बात,
1: और यू नो, तो इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। ऑफ कोर्स लोग तो सभी जगह के अच्छे होते हैं, लेकिन जो मेरे मेमोरीज है जिनके साथ, वो लोग काफी अच्छे थे। थिएटर से जुड़ा, रेडियो से जुड़ा,
0: अच्छा,
1: टेलीविजन से जुड़ा, सो सारी ये मेमोरीज, यू नो, इन द वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी है, वहाँ से भी मैं काफी,
0: हाँ, राइट, तो वहीं से इस इंडस्ट्री में फिर आना हुआ ऐसे थोड़ा इवेंट इंडस्ट्री।
1: आई थिंक इज अ बोर्न, मैं पैदा ऐसे ही हुआ, बचपन से ही कुछ करती था, घर पे हो या कहीं भी हो, यू नो, कुछ मस्ती करता
0: है। पारिवारिक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इवेंट इंडस्ट्री?
1: नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, मैं एक ही बंदा हूँ। बोलता है यही मस्तियाँ करता रहता है, यू नो, उसी को स्टेज पसंद है, ये पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना पसंद है, यू नो, वो मैं आज भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं आज भी घर में।
0: What was your age when you started organizing events? First event?
1: I attend children theater in Udaipur when I was 9 years old.
0: Kya baat hai?
1: And did children theater with a few, you know, people from Udaipur and a few pass out from National School of Drama.
0: So acting ka keela kaat ke?
1: Usko acting hi karta tha main. Itna mature nahi tha ki main kuch direction karun ya kuch other... सेक्शन ऑफ द थिएटर में जाऊं। तो जैसे बड़ा होता रहा, थिएटर बड़ा करता, पढ़ता भी अच्छा, पढ़ने भी अच्छा था।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए कोई बोलता नहीं था कि ये नाटकबाजी क्या करता है।
0: पर हाउ डिड यू चूज इट, मतलब अपने आप स्कूल में के
1: अपने आप
0: करना
1: ही? नहीं, अपने आप को स्कूल के फंक्शन होते थे वो करते थे, फिर वो चिल्ड्रन थिएटर ज्वाइन कर लिया जो कि वहाँ चलता था, तो वो ज्वाइन किया। फिर बड़े हुए जब तक 16 साल का पहुंचा था, मैंने कहा आई वांट टू डू माय सेल्फ,
0: अच्छा
1: आई वांट टू डू इट डायरेक्ट प्ले।
0: अच्छा,
1: तो जिस चिल्ड्रन थिएटर में मैं
0: चाइल्ड आर्टिस्ट
1: काम करता था, काम तो क्या करता है, जुड़ा हुआ था, उनको मैंने बोला आई वांट टू डू, बोले तो छोटा सा है क्या करेगा।
0: अच्छा,
1: मैंने कहा लेकिन मैं करना चाहता हूँ सर, जो मैंने सीखा था, मैंने कहा आपसे सीखा है और मेरे दिमाग में कोई दो तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आई वांट टू डू इट। बोले नहीं नहीं, छोटा सा है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वी वोंट लेट यू नो, वी हैव आवर रेपुटेशन एंड दिस, ऑफकोर्स सही बात है, मैं छोटा था, उनकी भी रेपुटेशन थी, उनकी संस्था का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम उसके साथ,
0: क्योंकि जो प्ले होते हैं वो वन गो होते हैं, रीटेक का कोई चांस
1: नहीं है। देन आई स्टार्टेड, ओके, नाउ आई स्टार्ट माय ओन इंस्टीट्यूशन।
0: अच्छा,
1: द चिल्ड्रन थिएटर ऑफ उदयपुर।
0: अरे वाह।
1: एंड आई गेट सो मेनी पीपल, आई वाज द यंगेस्ट पर्सन वाज होल्डिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन।
0: क्या बात है।
1: एंड आई स्टार्टेड and I did back to back 3-4 play.
0: Achha.
1: And that was wonderful. Achha, successful. It wasn't professional, it was amateur theater.
0: But done well. Aapko ek play ka experience
1: ho gaya, then I start having all these grants from government of Rajasthan,
0: right.
1: You know,
0: kyunki wahan par promote karte hain,
1: yeah, promote karte hain, then that was this, my journey started and then I never looked back. And padhai bhi kar rahe the, theater bhi kar rahe the, and then yeah, just carry on since then. I never stop until today.
0: फिर वहां से नाटक वगैरह जो आप बोल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री, वो कैसे लिंक हुआ फिर? थोड़ा और
1: लिंक बनते गए।
0: अच्छा, उदयपुर में रहते
1: हुए सबसे बड़ी बात है मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: मैं वही पूछने लगा, मैं कहा वो कई बार होता है ना, टीनेज लड़का घर से भागकर
1: नहीं
0: बागी होकर मुंबई चला गया।
1: नहीं, वो नहीं था।
0: पहली ट्रेन पकड़ के
1: नहीं, वो घर से नहीं भागा, तो सारा लिंक उदयपुर में ही बने। उदयपुर में अपना ऑल इंडिया रेडियो भी था, यू नो, वहां से जुड़ा, युवाणी के उनके कार्यक्रम हुआ थे, तो उस कार्यक्रम से मैं जुड़ा, मुझे सब्जेक्ट देते थे तो सब्जेक्ट में मैं बोलता था, इट वॉज वंडरफुल, एंड थिएटर भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो वॉज अ फुल।
0: And you have done ये जो stage hosting है, more than 300
1: yes shows. Yes, yeah, उसको वो अच्छी बात है। आवाज़ ओली का 18 साल का था मैं उस वक्त, तो वहाँ एक वेस्ट जोन कल्चर सेंटर खुला था,
0: राइट,
1: जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो दे वर लुकिंग फॉर, यू नो, सो लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज वन ऑफ देम, आई वाज यंगेस्ट पर्सन देयर, सो दे हैड ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ मेरा, देन दे गिव मी ए 40 आर्टिस्ट।
0: अच्छा,
1: अराउंड
0: किस लिए?
1: वेस्ट जोन टू परफॉर्म अराउंड राजस्थान, इट तहसील, इट ढाणी, इट सिटी में हमें परफॉर्म करना।
0: सब्जेक्ट क्या होते थे?
1: सब्जेक्ट अपने अपने
0: सोशल इश्यूज,
1: जो ना सोशल इश्यू नहीं, अपना जो लोक संस्कृति है, जो लोक स्वरूप है,
0: राइट,
1: उसका बीड़ा, उस क्या बोलूंगा, उसको प्रिजर्व करना था हमें, क्योंकि वो लुप्त हो रहा है ना आजकल, हमारी लोक संस्कृति लुप्त हो रही है। हम क्या थे, क्या नहीं थे, लंगा बंधू से, आप देखो नाम सुना हो कि कैसे बालम पधारो मारा देश, जो गाते हैं लोग उनको लंगा से बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: तो वो भी बेचारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, क्योंकि
0: थोड़ा सा बताइए राजस्थानी कल्चर के बारे में।
1: तो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर क्या करता था कि उसके जोन है,
0: आई नो, नॉर्थ जोन हमारे पटियाला में,
1: आप तो हमारे जोन में आया था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड दमन एंड दीव।
0: अरे वाह।
1: सो मेरे पास ये चारों स्टेट के आर्टिस्ट थे। and was hosting the show. And we have one more person we call program officer above me, who can taking care of all of them. You know, तो उनको ले जाते हर राजस्थान के हर तहसील में, हर ढाणी में, हर शहर में, उन सबको ले जाके बताते दिस इज आवर कल्चर एंड वेस्ट जोन कल्चर. एंड उनको हर एक शहर में जाते हैं.
0: अच्छा.
1: And it was amazing, amazing. Achha. You know, बाकी राजस्थानी कल्चर तो आप जानते हैं, इसे वेरी कलरफुल. जैसे पंजाब में अपने कितने सिंगर्स होते हैं,
0: of course.
1: जो यू नो उस राजस्थान के अंदर भी लंगास बंधु हैं,
0: लंगास हैं.
1: एंड दे आर मोर क्लासिकल नेचुरल. आई थिंक दे लर्न देम सेल्फ और मे बी उनका जो अपना घराना होता है उससे अपने आप सीखते हैं वो लोग. एंड ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए वो बेचारे टूरिज्म पे ही निर्भर करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो या तो घर के बाहर बजा रहे हैं या किसी महल के बाहर बजा रहे हैं. आई वोंट से दिस इज अ बेगिंग, वो अपनी कला को सेल,
0: इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं,
1: एक तो सारंगी है.
0: सारंगी.
1: हाँ, सारंगी से यानी होती है वो खड़ताल.
0: खड़ताल.
1: हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है. प्लस
0: आपने म्यूजिक में जाने की कोशिश की थी?
1: नहीं मैम, कान सिंह ये ना.
0: मैं गाने गवाना चाहता था आपसे.
1: नहीं नहीं, ऐसे तो कैजुअल गाने गाते हैं, ऐसी बात नहीं. लेकिन नहीं नहीं, मैं ये क्या एक भगवान की देन होती है.
0: हर कोई गॉड गिफ्ट होते हैं.
1: गॉड गिफ्ट होती है, उसके साथ बोन होता है वो. हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास वो चीज होती है, उसको तराश हम सकते हैं. ठीक है.
0: वर्क करना पड़ता है.
1: वर्क करना पड़ता है, तराश हम सकते हैं. लेकिन अगर मैं मुझे अगर संगीत सीखना, अगर मुझे गिटार सीखना फॉर एग्जांपल, आई कांट, क्योंकि मेरे पास वो ब्रेन नहीं है. यू नो, वो जो एक आई थिंक भगवान देता है, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भगवान देता है, वो ब्रेन नहीं है. और ब्रेन होती है
0: उस ब्रेन को तलाश करते
1: हैं. मेरा ये
0: मैं आपको थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में लेकर जाना चाहता हूँ. आपने सुना है ये गाना? आपने क्या सुना है? आप ही का गाना है. साथ साथ गुनगुना सकते हो.

0: बॉलीवुड में इस थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, डू यू थिंक, के राजस्थानी कल्चर को, जो राजस्थानी कल्चर की आती है बात, यू नो इट इन एंड आउट, राजस्थान में तो खूब ट्रैवल किया आपने.
1: हाँ देखिए, फिल्मी में तो क्या, थोड़ा सा कॉस्मेटिक देना पड़ता है उनको, थोड़ा सा यू नो जो 100% जो होता है राजस्थान में वो तो बताते नहीं फिल्म में, थोड़ा सा
0: पंजाब की बात है, वही बल्ले बल्ले पाजी, वही साग, वही मक्की दी, बस वही बातें होती जाती हैं
1: बस.
0: और राजस्थान के बारे में भी वही सारंगी बजा रहे हैं, बाहर राजस्थान में एंट्री हो रही है और वो रेतीला इलाका है और बस यही राजस्थान,
1: बस यही राजस्थान बताते हैं. बाकी तो राजस्थान अगर आप जाते हैं तो राजस्थान इस वजह बहुत रंगीला है, इसलिए बोलते रंगीलो राजस्थान, मारो पधारो मारे देश.
0: और बड़ा क्योंकि बड़ी स्टेट है, अगर नॉर्थ वाली साइड देखेंगे जो बीकानेर हनुमानगढ़ वो साथ थोड़ा पंजाबी टच है, मिड में आएंगे एक थोड़ा वो मेवाड़ी टच है, और साउथ में थोड़ा सा जाएंगे गुजराती टच है, तो राजस्थान में भी एक वेरिएशन देखने को मिलता है.
1: अगर मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर इज नॉट अ पंजाबी टच.
0: हाँ नहीं, ऊपर हनुमानगढ़ वगैरह हो सकता है,
1: गंगानगर
0: सॉरी,
1: गंगानगर इज लाइक मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी, है राजस्थान लेकिन पंजाब से बॉर्डर से है तो पंजाबी कल्चर वहाँ ज्यादा आपको मिलेगा, यानी हनुमानगढ़ इस बार तो वो है. बाकी सब तरफ जो आप बोल रहे हो वो मारवाड़ी आता है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर,
0: सेंट्रल राजस्थान जो है,
1: हाँ ये मारवाड़ी का इलाका है.
0: डू यू गो ऑफन राजस्थान?
1: मैं एवरी ईयर और एवरी टू ईयर्स में निकल.
0: फैमिली वहीं पर? अभी
1: मेरे दो ब्रदर वहीं हैं, बाकी सारे बच्चे यहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं वो ना. तो या
0: दैट्स दैट्स. तो ऑस्ट्रेलिया कैसे आना हुआ फिर?
1: देखिए मैं न्यूजीलैंड से अराउंड 14 इयर्स एगो,
0: पहले न्यूजीलैंड गए.
1: हां न्यूजीलैंड था, आई वाज देयर फॉर 17 इयर्स.
0: अच्छा, और न्यूजीलैंड में किस सिलसिले में? स्टूडेंट?
1: नो स्टूडेंट वही, अगर वही बात है इवेंट्स की वजह से.
0: हाँ.
1: तो आई वॉज डूइंग द इवेंट्स इन उदयपुर एंड मुझे अपॉर्चुनिटी आई न्यूजीलैंड की.
0: अच्छा.
1: कि वुड यू लाइक टू डू सम थिएटर वर्कशॉप, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप देयर.
0: एंड यू वर अबाउट व्हाट एज?
1: 19 साल का था. 19 इयर्स.
0: ठीक है.
1: यार ये कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ कुछ नहीं. और अच्छा अंग्रेजी आती है, सबको आती है थोड़ी बहुत. हाँ. लेकिन मैंने कहा वहाँ तो पूरा अंग्रेजी, पूरा इंग्लिश देश है ना. मैंने कहा यार वहाँ पता नहीं कैसे लोग बोलते होंगे, समझ में आएगी नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उनको वो समझ में आएगा नहीं आएगा मेरा इंडियन एक्सेंट. यू नो तो हम तो हॉल को भी हॉल बोलते हैं, भले कौन सा भी हॉल हो, हमारे प्रोनाउंसिएशन एक ही निकलता है. ये गड़बड़ हो जाएगा. अभी भी हमने अभी भी अपने वी हैव इंडियन एक्सेंट, यू नो
0: डोंट डिनाइट एंड दैट्स इंडियनिज्म तो नहीं निकल सकता.
1: तो इज रियलिटी एंड यू नो. सो तो हिम्मत करके चला गया.
0: अच्छा.
1: एंड फिर वहाँ वर्कशॉप वगैरह की मैंने वहाँ के. और
0: न्यूजीलैंड में?
1: हाँ. ये
0: कौन सी कंट्री में सॉरी कौन सी सिटी में?
1: वेलिंगटन.
0: वेलिंगटन में
1: तो मैंने वहाँ वर्कशॉप की दो तीन, और दो प्ले मैंने डायरेक्ट किए वहाँ.
0: एंड यू वर देयर फॉर अबाउट
1: थ्री मंथ्स देयर एंड मैंने वो दो प्ले डायरेक्ट किए एंड दे वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल. तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, मुझे निकलना था, तो मैं वापस आ गया. अच्छा. लेकिन मेरे शो चलते रहे वहाँ
0: न्यूजीलैंड.
1: और हाँ, परफॉर्म बाय बच्चों, चिल्ड्रन थिएटर था तो चिल्ड्रन थिएटर ही किया मैं, तो आई वाज स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन थिएटर. तो वो शो चलते रहे, प्रोफेशनली चलते रहे, लोग टिकट लेके आते.
0: अरे वाह.
1: हाँ. तो बड़ा सक्सेस चला गया. तो देखा व्हाई नॉट बीम, यू कैन कम बैक. तो बाय टाइम मैं 20 साल का हो गया था तब तक.
0: अच्छा.
1: यू नो तो एक डेढ़ साल पहले की बात की, 20 साल का हो गया तब तक मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में मैं कर रहा था.
0: अच्छा.
1: डिप्लोमा मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो कर रहा था. मैंने कहा ये फिनिश हो जाए, उसके बाद आऊंगा. ये मई जून में मेरे एग्जाम्स हैं. उन्हें नहीं, वी नीड यू बिफोर.
0: अच्छा.
1: और वहाँ डिले हो गया यार, ये दो साल से मैं कर रहा हूँ, यू नो ये करूँ वो करूँ. तो फिर मैंने कहा यार पढ़ाई तो वापस कर लेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा.
0: राइट.
1: तो आई वेंट बैक. तो डिप्लोमा छोड़ दिया एग्जाम के 3-4 वीक पहले.
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था?
1: हाँ, ये न्यूजीलैंड फंडेड.
0: न्यूजीलैंड गवर्नमेंट
1: फंडेड थी. और जो वहाँ एक सिरका थिएटर है जो कि नथिंग टू डू इंडियंस, सिरका थिएटर इज गोरों का थिएटर है, लोकल न्यूजीलैंडर्स थिएटर.
0: अरे.
1: सो उनकी ओपनिंग थी, तो ओपनिंग में मेरा प्ले उन्होंने
0: इंग्लिश प्ले था वो.
1: हाँ, इंग्लिश में सारा.
0: वहीं के बच्चों को आपने ट्रेन किया?
1: और लेकिन मैंने क्या डिजाइन किया, मैंने उसको इंडियन स्वरूप दिया.
0: अच्छा.
1: पूरे को.
0: ओके
1: जो डिजाइन किया या कोरियोग्राफ किया था मैंने उसको
0: इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल
1: सब इंडियन थे कॉस्ट्यूम सब इंडियन ओनली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी हमने
0: क्या बात है
1: तो आओ से इंडियन प्ले इन इंग्लिश
0: क्या बात है
1: बट बाय इंग्लिश किड्स बाय इंग्लिश किड्स एंड सम इंडियन मिक्स
0: अच्छा
1: ऐसा करके किया था तो बड़ा अच्छा लगा उनको फिर वो करते रहे वो सारा काम मेरा 9 months में खत्म हो गया मेरे पास 11 महीने और थे मैं क्या करूँगा यार यहाँ यू नो मैं वो खर्चा पानी देना पड़ेगा जेब से मतलब नहीं ना एक्सपेंसिव कंट्री है यू नो आई वांट टू गो बैक
0: अच्छा
1: तो बोला कि यार भाई जस्ट स्टे हियर भाई मैं क्या कैसे स्टे हो सकता हूँ क्योंकि ना घर के अंदर कोई पीआर किसने अप्लाई किया कोई जानते नहीं कैसे रहते हैं ना घर में कोई था ही नहीं जो एब्रॉड गया हो
0: ऑफ कोर्स
1: तो उसको सारी ये ना जो पीआर होता
0: है
1: पता हो पता को नॉलेज ही था
0: और ये कौन कौन से साल की बात होगी
1: 1995
0: मिड 90s अरे वाह
1: तो मुझे पता
0: तो वैसे ही बड़े मुश्किल कुछ लोगों को ही पता होगा न्यूजीलैंड भी कोई कंट्री है
1: तो ये जो पीआर शिप वगैरह होती है इसके सॉरी ये पीआर वगैरह होती है तो मुझे पता ही नहीं था और
0: अच्छा।
1: नहीं कि मैं स्टूपिड था हमने कभी उस तरफ देखा ही नहीं उसकी जानकारी नहीं
0: क्योंकि आप तो काम करने आ रहे
1: काम करने आ रहे थे कभी जानकारी लिए और ना कभी ये था कभी सोचा था कि कहीं हम कभी जाके
0: रहेंगे रहना
1: तो आई थिंक मेरी जो मंजिल थी ना मुझे यहाँ बुला रही थी शायद कहते हैं कि वो
0: बार बार नॉक हो रहा था
1: फिर आई वॉज क्वालिफाइड उठमला कि हाँ उन सब क्वालिफिकेशन तो पता ही थी वन कि अप्लाई फॉर पी आर ऐसे हाउ आई कैन अप्लाई फॉर पी आर कोई इंडियन किसी इंडियन को नहीं जानता था उस वक्त में
0: अच्छा
1: सारा मेरे ही पल्टन न्यूजीलैंडर थी सारी तो फिर गया अप्लाई फिर एक दो लोगों से मिलाया उन्होंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द पी आर के पी आर के बाद यू हैव टू स्टे हियर फॉरएवर
0: राइट
1: How I got the PR.
0: और आपने घर पे बताया कि अब मैं permanent resident हो गया
1: और जो plan ही नहीं था wasn't a plan at all
0: wasn't a plan
1: वो देखो किस्मत बुलाती है ना आपको ठीक है
0: दाना पानी बोलते हैं
1: हाँ दाना पानी लेकिन उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी
0: ऑफ कोर्स
1: हाँ तो उसके पीछे काफी बहुत मेहनत की मैंने उसके लिए और ऑफ कोर्स
0: तो उसके बाद थिएटर चलता रहा न्यूजीलैंड में ही
1: कुछ काम करते रहे फिर वही जब हम एब्रॉड हो जाते हैं तो बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं होती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो जो थिएटर्स कमाई होती है वाज़न्ट इनफ
0: अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर के लिए तो नहीं होता
1: फिर आई स्टार्टेड फिर मैं कहा क्या करूं सारी क्वालिफिकेशन तो हो गई आई वाज यंग ओनली 21 बाय देन तो चलो ऐसा करता हूं आईटी करता हूं सो आईटी काफी चल रहा था जस्ट स्टार्टेड यू नो तो मैं फिर आईटी में मैंने डिग्री ली
0: ओके
1: तीन साल के होते हैं मुझे मैंने 2 साल में कर ली क्योंकि मुझे अपनी इंडियन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा एक क्रेडिट मिल गया था एक साल बच गया था
0: राइट राइट
1: तो बेसिक सब्जेक्ट के मिल गया टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं मिले थे क्रेडिट मिल गया तो मैंने 2 साल में हो गया देन आई स्टार्ट जॉब इन आईटी
0: ओके
1: फॉर वाइल वहाँ फिर मैं सिडनी भी आया था एक प्रोजेक्ट करने उसके बाद
0: अच्छा
1: फिर लेकिन आई एम आर्टिस्ट
0: कीड़ा तो वही है
1: कोडिंग करने में मजे नहीं आ रहा मेरे ना लोगों से मिलने का हो रहा है लेकिन मैं बैठा मैं यार मजे नहीं आ रहा है यार कोडिंग करो ये करो बोला ये फिक्स करो वो करो यू नो मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या करें तो मैंने वो सर वो जॉब ही छोड़ दी मेरा बैडमिंटन खेलता था वो भी छूट गया था उस वजह से तो मैंने जॉब ही छोड़ दी लोगों से मिलना नहीं होता था आप एक कमरे में ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठे हो
0: सिडनी किस वजह से आए थे
1: सिडनी एक्चुअली मेरी बेटी थी उसको डॉक्टर बनना था
0: थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा फैमिली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी 21 साल के बाद
1: ओके
0: न्यूजीलैंड में
1: नहीं मैं वाइफ इंडिया से थी उदयपुर
0: अच्छा
1: तो मेरी शादी बहुत
0: जल्दी अच्छा
1: व्हेन आई वाज 21
0: मुझे लगा था कि राजस्थान से वो बाल विवाह किया होगा
1: समझ लो बाल विवाह समझ लो आप
0: बालिका वधु
1: अच्छा फिर वहां से शुरुआत हुई एंड देन आईटी जैसे बताया आईटी छोड़ दी फिर क्या करें फिर एक छोटा सा बिजनेस लिया टू लर्न मायसेल्फ हाउ टू देखो मैं तो राजस्थान से हूँ मारवाड़ी खून है बिजनेस वाई जाता है ना कैसे कैसे करके जाना जरूरी है तो मैं गया छोटा सा बिजनेस लिया समझा सारे बिजनेस को 2 साल छोटा सा बिजनेस चलाया देन ऑफ नाउ टाइम फॉर मी टू गेट ए नेक्स्ट देन वी पुट अ बिग बिजनेस एंड देन सिंस देन आई नेवर लुक्ड बैक
0: राइट राइट सो या तो आज भीम जी अच्छे बिजनेस में चल रहे हैं साथ साथ इवेंट्स भी कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर के द जर्नी वाज इजी न्यूजीलैंड में थे तो थोड़ा सा वैसा ही सिमिलर कंट्री या इट वाज अ डिफरेंट और
1: नहीं नहीं आई वुड से इजी शुरू में तो नहीं बोलूंगा भला आए थे एक बार वी वर वेल एस्टेब्लिश इन न्यूजीलैंड 17 इयर्स वी वर लिविंग वी हैव बिल्ट आवर ओन होम यू नो बच्चे सब वहीं पढ़ रहे थे सब कुछ था बिजनेस वाज रनिंग वेल एंड वी प्रोड्यूस एज आई सेड आई प्रोड्यूस 3 movies देयर एज वेल
0: अच्छा
1: व्हाइल देयर
0: वो इंग्लिश मूवीज थी
1: हां इंग्लिश मूवी थी नथिंग टू डू इंडियंस एट ऑल
0: एंड दे वर शॉर्ट मूवीज
1: नो दे वाज टू डॉक्यूमेंट्रीज 90 minutes each
0: अभी YouTube पर हैं किसी प्लेटफॉर्म?
1: नहीं नहीं, वो हमने राइट्स किसी और को दे रखे हैं।
0: अच्छा, आप दिखा भी नहीं सकते किसी को?
1: दिखा नहीं सकते, हम राइट्स किसी बेच देते हैं, तो अभी वो एक्सपायर होने वाले राइट्स, वो गेट बैक, तो वो है। तो एक और एक फीचर मूवी थी एज वेल,
0: अच्छा,
1: उसको स्मॉल लाइफ,
0: it was about
1: a child waiting for his father,
0: अरे वाह,
1: and he never come back,
0: oh
1: so it's waiting for you,
0: क्या बात है, बड़े ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। कहीं आपने फिल्म बता दी, कहीं बॉलीवुड वाले सुन ले तो उन्होंने बना ले नहीं है इसके ऊपर।
1: तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है जिंदगी में।
0: तो ऑस्ट्रेलिया आकर के कभी फिर इधर डॉक्यूमेंट्रीज या फीचर फिल्म मेकिंग इसमें नहीं आता इसमें?
1: दे ऑल अबाउट पैशन, यू नो, अब जब पैशन के साथ अगर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता देन यू हैव टू थोड़ा
0: एक चीज छोड़नी पड़ती,
1: एक चीज छोड़नी पड़ती। तो फिर मैंने छोड़ा कि छोड़ दिया फिल्म का, क्योंकि नीड अ लॉट ऑफ मनी देयर, यू नो, आई सेड नाउ डेज यू से ओटीटी देयर, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स देयर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल स्ट्रगल अगेन अनलेस आप पूछे भीम जी रेडियो हाजी को फिल्म बनानी है, आई एम हैप्पी टू मेक इट बिकॉज रेडियो हाजी है ब्रांड है, प्लेटफॉर्म है, रेडियो हाजी कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज ऑन मूवी, फॉर मी producing and directing myself and putting in the market, no will come.
0: Right. वो थोड़ी एक limitation है.
1: तो limitation है.
0: तो बात कर रहे थे सिडनी में, फिर आए तो आप?
1: बस सिडनी में आए हम लोग, थोड़ा बिजनेस वगैरह किया, कुछ हिकअप्स आए बिजनेस में, we learned lots and हमने ऐसा बिजनेस किया जो कभी हमने किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आई वॉज वेरी गुड इन पी आर शिप, तो मैं कहा कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पीछे होती ना, पर्दे के पीछे, उसको नजरअंदाज कर दिया शायद, ये मेरी गलती हुई, मानता हूँ मैं।
0: तो इनिशियली आपको घाटे वाले?
1: इनिशियली मैं घाटा हुआ कि वो बिजनेस जो हम नहीं करते थे ना वो किया। तो अगर करना था तो अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं आपके लिसनर्स हैं उनको प्लीज वॉट एवर यू डू प्लीज डू ए फुल रिसर्च, लर्न अबाउट दैट बिजनेस फर्स्ट एंड देन यू जंप इन।
0: ठीक है,
1: हमने सोचा कि हमारे हमने बिजनेस किया हुआ हम ये भी कर लेंगे, लेकिन नहीं,
0: सारे बिजनेस
1: एक जैसे नहीं होते। तो इसमें लॉस वॉस करके हम घर बैठ गए, फिर क्या करें। मैंने कहा वही करो जो आता, उसको हम बोलते हैं हिंदी में जिसका काम उसी को साजे। तो फिर हमने I went back to my supermarket and liquor store back.
0: अच्छा,
1: and since then I never looked back.
0: Okay. तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा इवेंट सबसे पहले आपका था?
1: सबसे पहले मैंने किया था सुखिंदर सिंह।
0: ओके,
1: हाँ,
0: अच्छा।
1: तो उसके अंदर मेरे पार्टनर्स भी थे, I won't say I did myself only, but I was one.
0: पर आपने वो स्टार्ट पहले इवेंट?
1: I was one of the partner as well.
0: Okay.
1: And but सारे मार्केटिंग वगैरह है इसमें, काफी मैंने एफर्ट्स डाले थे स्पॉन्सरशिप में, मैंने काफी एफर्ट्स डाले थे एंड आई पुट सम माय फंड एज वेल इन देयर।
0: तो अच्छा गया इवेंट सिडनी?
1: हां, दैट वाज गुड, इवेंट वाज गुड, फैंटास्टिक,
0: यू नो। और ये कब की बात है?
1: ये 2023,
0: राइट,
1: माय फर्स्ट इवेंट आई डिड इन एसोसिएशन विद अदर पार्टनर्स
0: के साथ। उसके बाद फिर
1: उसके बाद गुरदास मान किया विद सम अदर पार्टनर्स एज वेल, आई वाज वन ऑफ द पार्टनर एज वेल, देन उसके बाद हमने शान किया,
0: अरे वाह,
1: एंड देन उसके बाद आरिफ लोहर किया, एंड उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य किया, एंड देन फिर खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, 2024 इन जून, आई थिंक 29th ऑफ जून 2024,
0: अच्छा,
1: वी डिड एज वेल, इट वाज अ फैंटास्टिक हाउसफुल शो,
0: क्या बात है,
1: एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड दिस टाइम 2 months ago myself national promoter of Rahat Fateh Ali Khan.
0: Kya baat hai, are wah.
1: And I have my friend Arun Sharma, you know, joined me as well, and he is a fantastic man. And we executed very well.
0: Abhi business, event, family life, how do you manage? Kaise kisko kitna time prefer, kisko karte ho ke zyada time idhar?
1: Main sabko deta hu barabar time. Business ko bhi deta hu ki bread and butter hai. Events bhi hai, usme bhi बट रहता है, ऐसी बात
0: ज्यादा टाइम ले जाता है,
1: लेकिन ज्यादा टाइम रहता है। तो यू कांट एक्चुअली द इवेंट में एक चीज बताऊंगा कि या तो आप फुल टाइम कर रहे हो, यू बिकम ब्रेड बटर, अगर आप में अगर आपके पास दूसरे बिजनेस है, इफ यू डूइंग दिस वन बहुत टाइम देना पड़ता है इसके अंदर। अगर आप इफ यू डूइंग ओनली फॉर द मनी देन फॉरगेट अबाउट
0: इट, मत करो
1: ठीक है। उसके बाद ठीक है, जितना टाइम देते हो उतना पैसा नहीं मिलता है, बट जैसे आप, ये आपका सेटिस्फेक्शन है कि यू फील बेटर, यू फील गुड, यू फील, आपको खुशी होती है इस चीज को करने में, देन यू डू इट।
0: विजन क्या है भीम जी, अभी नेक्स्ट क्या करना, कुछ ऐसा कोई ड्रीम? कोई इवेंट या कुछ ऐसा और यू हैव डन इट ऑल?
1: टू बी ऑनेस्ट, इंसान को होप छोड़नी चाहिए. अगर मैं सोचूंगा यहाँ सब कुछ हो गया है यू नो, तो फिर मेरी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी. आपको सीखना है हमेशा है यू नो, हर चीज हर वक्त कुछ ना कुछ आपको सीखना है.
0: Right.
1: तो सीखना छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को. किसी भी उम्र हो के यार मैंने इतने सारे इवेंट कर लिए, आई नो एवरीथिंग. नो, यू विल मेक द मिस्टेक, स्टिल यू मेक द मिस्टेक. तो सीखना है, आगे भी सीखते हैं, सीखता रहूंगा. और ये नहीं कहूंगा कि मेरा ये बस ही हो गया, अच्छे को एक आर्टिस्ट आएगा और कैरी ऑन यू नो. अभी दो चार प्रोजेक्ट आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए. वी आर टॉकिंग एंड नेगोशिएटिंग विद आर्टिस्ट एंड ट्राइंग टू डू फ्यू मोर यू नो अ टूर अराउंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड वी टारगेटिंग एक्चुअली इन सिंगापुर जकार्ता एंड बैंकॉक एज वेल.
0: अरे वाह,
1: या सो दैट्स हाउ बात चल रही है. कितनी सक्सेस होती है वो पता नहीं, बट इन जनरल भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, दोस्तों की शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही है. मेरे सारे बॉक्स टिक कर लिए हमने.
0: अरे वाह,
1: यू नो
0: क्या बात है.
1: देखो पैसा मैं नहीं कहूंगा बहुत पैसा है कमाया, ऐसा भी नहीं. पैसा तो आप
0: उतना जितनी सैटिस्फेक्शन हो
1: उतना है. सभी मेरे सारे बॉक्स से आज जाना है, कपिल भाई से मिलने, चाय पीनी, फट से निकल गए. यू नो छुट्टी लेके बॉस को बोलना नहीं पड़ता है, 5 मिनट में आ रहा हूँ.
0: करेक्ट,
1: यू नो
0: करेक्ट.
1: सो
0: उस लेवल पर,
1: उस लेवल पे सबके आशीर्वाद से और भगवान का बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचाया.
0: मेरा तीन ये चीजें इसलिए मैंने मेंशन की थी कि फैमिली लाइफ, एक सोशल लाइफ भी होती है, इनफैक्ट फोर्थ है, इवेंट्स हैं, बिजनेस है. तो इनमें से कब टाइम निकलता है व्हेन यू फील के अभी भीम एक अपना जोन में है, एक मी टाइम में है, तो वो कब निकालते हो? निकालते हो या नहीं पॉसिबल होता है?
1: नहीं, मैं निकाल देता हूँ फैमिली के साथ. तो ऑफकोर्स जब भी मौका मिले, जितना समय हो अपने फैमिली के साथ निकालें आप, स्पेशली बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को जाना है एक दिन.
0: करेक्ट.
1: और मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए कि हालांकि वो छोड़ के जाने वाले नहीं है, बट इतने बड़े हो गए कि दे कैन लीव देमसेल्फ.
0: करेक्ट.
1: अभी सभी साथ रहते हैं घर पे, सो दैट्स फाइन. बट उनके साथ जितना आप समय बिता सकें बिताएं. और स्पेशली जो उनके जो भी लिसनर हैं, जिनके यंग किड्स हैं, डोंट इग्नोर देम.
0: ओके,
1: मैं उनको से इसको
0: लाइफ लेसन है,
1: जितना टाइम उनसे साथ बिता सकते हो आप बिता लो. जैसे 10-12 साल के हो जाएंगे वो अपने कमरे में चले जाएंगे, आप बस वेट करते जाओगे कब आप कमरे से बाहर निकले, मैं हेलो करें, हमारे साथ बैठ के खाना.
0: फैमिली बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ऐसा आपको लगता है कि हो जाता है इस कंट्री में?
1: होता है. उनका बच्चों का फॉल्ट नहीं है,
0: कल्चर
1: ऐसा है. इवन दो बैक इन इंडिया में ऐसे ही होता है यू नो. तो अपने जितना छोटे हैं तब तक कहना मानेंगे, जैसे 12-13 साल के होंगे फिर उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनके फोन्स आ जाते हैं, उनके ग्रुप बन जाते हैं. सो ऐसा नहीं कि वो मिस यूज कर रहे हैं आपको, वो उनकी जिंदगी अलग हो जाती है.
0: करेक्ट.
1: तो आपको लगता है यार बच्चा हमें टाइम नहीं दे रहा है, बच्चा टाइम नहीं, बच्चे का कल्चर अलग है. यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको उसकी साइकोलॉजी, उसकी मानसिकता को आपको समझना होगा कि इज गोइंग डिफरेंट स्टेज नाउ, यू नो कल्चर डिफरेंस एज वेल. हम उसको बनाएंगे ना, मतलब और पंजाबी लुंडा है तो पंजाबी रहेगा, ये नहीं है. पंजाबी कल्चर सिखाई है उसे, आपने सारे अदब सिखाई है उसको, जिससे हम सिखाते ना पंजाबी एग्जाम्पल दिया है. तो हमारे जो राजस्थानी अदब है या भारतीय संस्कृति के जो अदब हैं उनको वो सिखाओ, उनको कैरी ऑन करते रहेंगे. जैसे मेरे बच्चे हैं, दे बोर्न इन न्यूजीलैंड, बहुत प्यारी हिंदी बोलते हैं विदाउट एक्सेंट.
0: अरे वाह,
1: रीड राइट नहीं कर सकते
0: इंडियन जैसे.
1: इंडियन जैसे बोलते हो तो सब बोलते, सर आर यू फ्रॉम
0: इवेंट्स में कैसे उनका रिएक्शन क्या होता है कि पापा आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो या ये आर्टिस्ट या वो आर्टिस्ट, ऐसे कोई फीडबैक उनकी होती है कि ये बढ़िया रहा पापा?
1: आई थिंक बढ़िया रहा, अच्छा, दे हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी.
0: बट डू यू टेक देयर फीडबैक एज सीरियस फीडबैक और आपको लगता है?
1: कभी कभी लेते हैं, उनका फीडबैक भी लेते हैं कि पापा वहाँ ये हो गया था, ऐसे करना चाहिए थे आपको, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था. देखो हम भी जोश में बोल जाते हैं, ऐसा नहीं आपको ऐसे बोलना चाहिए, तो ऐसे करना आपको, वहाँ वैसा करना चाहिए. तो दे गिव यू लिटिल बिट एडवाइस एज वेल. तो इन या
0: राइट, क्या सुनना क्या पसंद करते हो, फेवरेट पास टाइम?
1: मैं किशोर कुमार के
0: अरे
1: गीत सुनता हूँ.
0: क्या बात
1: है, कभी कभी गुनगुना भी देता हूँ.
0: वो कभी कभी आज क्यों नहीं?
1: अब वो
0: कोई सा भी किशोर कुमार का जो आपको लगता है बेस्ट सॉन्ग, मतलब मूवीज वगैरह देखे ना आप, टाइम लग जाता है?
1: हाँ नहीं, मूवी देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ.
0: आई गेस मेरे पास एक सॉन्ग है आपके लिए, वो मैं आपको शुरू करवा देता हूँ, बट आपको फिर आगे उसको गाना पड़ेगा. आई थिंक आपको वो गाना पता भी है शायद.

0: से सुरूर तो नहीं है लेकिन गाने की आदत है.
1: क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है. अभी जैसे घूमने वगैरह के फेवरेट डेस्टिनेशन वगैरह ऐसा कुछ रहता है कि यहाँ घूमने जाना है वहां जाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो लोगों की डेस्टिनेशन है, वो आप छोड़ करके आ.
0: सबसे अच्छी बात है कि हम न्यूजीलैंड में पूरा न्यूजीलैंड घूम चुके हैं हम लोग.
1: अच्छा,
0: वाइल वी देयर सो ट्रैवल वेरी
1: वेल, जापान रह रहे थे,
0: ट्रैवल वेरी वेल सो इट इज गुड. अब ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब भी मौका मिलता है. एंड अभी यूरोप मैं कभी गया नहीं, और यूरोप जाना बहुत पहले से जा रहा था, जाना चाहता था, लेकिन जब भी हम यूरोप का सोचते चलो इंडिया चल लेते हैं तो सब हम लोग इंडिया निकल जाते थे बच्चों के साथ. अब यूरोप का हम बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर. एंड आई वुड लाइक टू एक्चुअली यूरोप के अंदर में आई वुड लाइक टू गो जर्मन, इटली एंड इटली एंड या इन यूके.
1: सिडनी का फिर इतना जब घूम लिए, सिडनी का व्हाट डू यू थिंक, के कैसा, हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस सिटी?
0: ओह इट्स अमेजिंग सिटी. मुझे इतना मजा आता है यहाँ रहने में, इतना मजा आता रहने में. ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड मजा नहीं आता, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि न्यूजीलैंड तक कोल्ड कंट्री है, आइसोलेटेड है, लोग कम थे उस वक्त, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, कम थे लोग, नजर नहीं आते थे. तो कई बार ऐसा लगता है कि यार वी आर मिसिंग, बिकॉज हम भीड़ भाड़ से आए हैं ना इंडिया से, तो मिसिंग समथिंग. इसलिए हम लोग इंडिया चले जाते थे वहाँ न्यूजीलैंड में, हर दो साल में इंडिया चले जाते थे, दो दो तीन तीन महीने के लिए चले जाते थे, क्योंकि वो मिस करते थे ना.
1: करेक्ट.
0: तो यू बिलीव नॉट, जब से मैं सिडनी में शिफ्ट हुआ था 2013, मैं एक बार गया था शॉर्ट पीरियड के लिए.
1: अच्छा.
0: उसके बाद मैं 6.5 साल तक नहीं गया.
1: अरे भाई,
0: इच्छा नहीं होती जाने की, मगर सब सब कुछ यहाँ मिलता है. यहाँ गौतम कपिल जी हैं, यहाँ ये दोस्त हैं, या एनवायरमेंट है, यहाँ हैरिस पार्क है जो लिटिल इंडिया बन गया है, तो वो एनवायरमेंट मिल रहा था,
1: मिल रहा है.
0: तो चाहे हम आस पास को जानते नहीं जाए, लेकिन लगता है कि नहीं आ रही है. एक छोटा सा स्ट्रीट में जाते हैं, लोग चलते हुए नजर आते हैं, अपने देश के भी आते हैं, दूसरे देश के भी आते हैं, ऐसा लगता है कि समथिंग थोड़ा लाइवनेस थी है. तो इसलिए इंडिया फिर हमने मिस करने
1: नहीं
0: किया ही नहीं.
1: चाइल्ड थिएटर का अभी डू यू हैव एनी प्लान के यहाँ पर कुछ धीरे धीरे आगे चल के थोड़ा कुछ करना, क्योंकि दैट थिंग आई थिंक के वो आपके एक पैशन में से निकली हुई.
0: हाँ हाँ, लेकिन इट्स वेरी हार्ड.
1: यहाँ पर हार्ड
0: है, वेरी हार्ड है. थिएटर इज वेरी हार्ड. आई मीन इट्स वेरी हार्ड नाउ एंड I'm मोर फोकस ऑन इवेंट्स, यू नो वो है.
1: राइट. चले ठीक है, थैंक यू भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया, बातें की. और वो जो एक साइड मैंने लोगों को बताई है कि वो एक नॉटी साइड भी है भीम जी की, वो रेडियो पर भी नहीं दिखा सकते. वो जो डांस करते हैं, वो जो मस्ती आप में आती है,
0: वो
1: जब आप अपने आप एक जो वो कहते हैं कि अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए,
0: नहीं
1: अंदर का बच्चा रहना चाहिए.
0: बिफोर यू स्विच ऑफ, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच रेडियो हां जी and Kapil ji, Gautam Kapil ji, thank you so much for
1: thank
0: having
1: you,
0: me here
1: ji.
0: And please do come and join us and aapko listeners ko bhi bata deta hu ki we having a Khan saab is Dhurandhar experience is coming on 31st of October in Sydney at Norwest Hub. Please do come. It's amazing show, it's amazing singer, he's singing Punjabi, Bollywood.
1: Sahi
0: so is it, this is not for money this time, it's more like Diwali yaari na,
1: more like
0: Diwali ke dhoom
1: acha, Diwali pe dhoom, Diwali ke patake
0: phodenge.
1: Thank you so much Bheem ji,
0: bahut
1: bahut shukriya. Thank you, you came here, aur ye gana sunte hain, filhal mujhe dijiye ijazat, dhanyawad.

0: यो हाँ जी 1674।
1: आजा प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.